मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 47 सेकंड हुए हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम शुरू हो रहा है, नमस्कार लखनऊ। स्वीकार करें अनुमेहा गुप्ता का सादर अभिवादन। शुरुआत करते हैं हिंदी समाचारों से, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3रे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़।

0: पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में फलदार वृक्षों में सामयिक विषय पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, फलदार वृक्षों की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां हानिकारक कीट और बीमारियों के चलते कुछ नुकसान होता है जिससे आपको वांछित लाभ नहीं मिलता है, तो इन हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो भी फलदार वृक्ष इस समय बागों में हैं तो उनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन?
2: नमस्कार किसान भाइयों। इस समय किसान भाई, जैसे हमारा अमरूद की खेती किसान भाई कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि आज का जो हमारा अमरूद की फसल आ रही है, उसमें सबसे पहले किसान भाई देखते हैं कि उसमें एक डांसी मक्खी का प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसमें किसान भाई जब देखते हैं कि पहले उनका अमरूद जो है देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन जब उसको हम काटते हैं तब अंदर में देखते हैं तो छोटी छोटी कीड़ी जो है उसमें दिखाई देती है। तो ये जो कीड़ी होती है, ये जो डासी मक्खी होती है, उसी डासी मक्खी का जो है एक छोटा मैगेट, इसको लार्वा हम लोग बोलते हैं
1: ये
2: कि
1: क्या फल मक्खी है क्या?
2: हाँ, फल मक्खी भी इसको बोलते हैं, इसको
1: जी
2: किसान भाई डासी मक्खी या फल मक्खी भी बोलते हैं।
1: जी
2: तो इसको क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं, जैसे एडवांस जो है थाई गुआवा का खेती कर रहे हैं, अमरूद
1: हाँ
2: की जो है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, उसमें कम फल लेते हैं तो क्या है, बैगिंग कर देते हैं इसे बचने के लिए जो शुरू
1: जी
2: में ही। लेकिन क्या है कि जो हमारे का इधर उन्नाव का बेल्ट है या हमारा इधर आपका इलाहाबाद का है, तो यहाँ पे जो किसान भाई अमरूद की खेती करते हैं, तो उसमें जो प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या काम करते हैं कि इसका मिथाइल यूजिनाल का ट्रैप लगाते हैं।
1: जी
2: तो जब उनके अमरूद की साइज थोड़ा सा मटर से थोड़ा बड़ी हो जाती है, तभी किसान भाई क्या है उसमें जो आपका 8 से 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई लगाते हैं,
1: यानी लुभावना चारा एक तरह।
2: लुभावना चारा है। इसमें लुभावने चारे में क्या होता है कि इसमें जो कि इथेनॉल एक केमिकल होता है और प्लस मिथाइल यूजिनॉल होता है और एक मैलाथियन जो है जहर होता है, इसको मिला करके हम लोग जो है इसको जो रेशियो होता है, कहने का मतलब अनुपात जो होता है 6:4 और 2 के अनुपात में जो है बना करके, इसमें चाहे लकड़ी का गुटका डुबो देते हैं या कोई जो है रस्सी होती है हमारी, जो सूती रस्सी होती है मोटी,
1: जी
2: उसको हम 48 से 72 घंटे अगर हम उसमें डुबो देते हैं, फिर उसके बाद में क्या है कि कोई भी हम अपना ले लेते हैं, चाहे ट्रैप खरीद लेंगे मार्केट से, नहीं तो किसान भाई क्या है कि जो पानी की बोतल आती है उसमें 4 छेद कर देते हैं आमने सामने,
1: जी
2: और उसी में अगर इसको लटका देंगे जो है, तो इससे किसान भाइयों को कहने का मतलब देसी तरीके से बहुत ही अच्छी जो डासी मक्खी या फल मक्खी का कहने का मतलब किसान भाई प्रबंधन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना है कि जो इसमें कहने का मतलब कि उसमें वो लगाएंगे लुभावना ट्रैप
1: जी
2: कैप्सूल, उसमें
1: हाँ,
2: इसको हर 1 महीने के बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा जो है।
1: यानी परिवर्तन
2: जी जी
1: करते
2: जी
1: रहें।
2: तभी वो अच्छा काम करेगा।
1: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है फल मक्खी का,
2: जी
1: तो उसका क्या सुरक्षात्मक छिड़काव भी कर सकते हैं?
2: इसमें क्या है कि छिड़काव किसान भाई जब पता चलता है कि इसका अधिक स्तर होता है, तो छिड़काव तो हम नहीं इसमें रिकमेंड करेंगे किसान भाई, इसलिए क्या है कि इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो हमने बताया कि आपका मिथाइल यूजिनॉल और जो आपका मैलाथियन है, इसका बना करके घोल जगह जगह ऐसे ही आपका
1: लटका
2: लटका देते हैं, या जो टब होता है छोटा उसमें रख देते हैं जगह जगह पर भी, तो इससे भी कहने का मतलब उनका पूरा नियंत्रण इससे हो जाता है। जो उनको लग रहा है उनके जो बाग में ऐसे फल गिरे हुए हैं कि जिसमें फ्रूट फ्लाई का या इसका डांसी मक्खी का प्रकोप हो गया है,
1: तो उसको
2: उनको
1: इकट्ठा
2: एकत्र
1: करके
2: करके नीचे जमीन में अगर दफना देंगे
1: हाँ।
2: तो फिर उनको आगे कोई छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, अमरूद की बागवानी में एक समस्या और है उकठा की,
2: जी
1: तो इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका प्रबंधन बागवान भाई बहन कैसे कर?
2: शुरू में क्या होगा कि ऊपर पत्तियां पहले जो है हल्का सा जो है मुरझाती हैं, हल्का लाल पड़ के फिर जो है नीचे गिर जाती हैं, और डंठल क्या ऊपर से सूखने लगता है, और साथ में कि उसमें जड़ जो है अगर उठा के देखेंगे तो जड़ में हड़का सड़न उनको महसूस होती है, और जब जड़ को उसको फाड़ के देखते हैं तो उसमें काले काले रंग की धारी दिखाई देती है। तो जो पौधा ग्रसित है तो उसको तो तुरंत वहां से हटा देना चाहिए जड़ सहित,
1: हाँ।
2: और 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी तरीके से उसमें मिला दें थाले में, उसकी अगर गुड़ाई कर देते हैं, अगर नमी रहेगी तो बहुत अच्छा फायदा इससे किसान भाइयों को होगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके क्षेत्रीय केंद्रीय IPM केंद्र लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: उसके लिए किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल

0: नंबर है 9919-953-951, 9919-953-951, 9919-953-951।
1: डॉक्टर जी पी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर सुशील कुमार राय की डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से फलदार वृक्षों में सामयिक कार्य विषय पर भेंटवार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन की शुरुआत गांधी जी के एक सुंदर विचार के साथ, आइए सुने गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा के लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूँ और सारी मानवता से विलग होकर मैं समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीतराग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है। जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को छोड़ देता है, जो जितेंद्रिय है, वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा और व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को यह सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावना

उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज को सुनना और समझना।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह सुबह प्रभु की वंदना हो तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। आइए करते हैं प्रभु वंदना कार्यक्रम आराधना में।

जिनके मन में राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है, उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका ही कल्याण है।

तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस राम से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी।

मन को निराश न कर, बस ईश्वर पर विश्वास कर। हर पल साथ है वो तेरे, इस बात का तो एहसास कर।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और सुरेश वाडकर की आवाज और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान भाग 290। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब आप सुनिए संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
5: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीये शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम् ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दिल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षी बलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडा वार्तासु महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्य चक्रे गतरात्रो भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता इति वार्ताः।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ स्वास्थ्य की बात कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज का विषय है स्वास्थ्य के लिए गुणकारी बिच्छू घास और जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ उसके चुभने वाले स्पर्श के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके भीतर छिपे हुए औषधीय गुणों को पहचानते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं बिच्छू घास की, जिसे अंग्रेजी में नेटल्स कहा जाता है। बचपन में अगर कभी आप गांव देहात के रास्तों या खेतों की मेंड पर चले हों तो शायद आपने इसका अनुभव लिया होगा। जरा सी छू जाने पर जैसे करंट सा लगता है, त्वचा में जलन और सूजन हो जाती है। उस पल में कोई भी कहे कि ये घास लाभकारी है तो शायद हंसी आ जाए, लेकिन आज जब विज्ञान और आयुर्वेद दोनों इसकी तरफ दोबारा देख रहे हैं तो हमें भी ये समझना होगा कि जो प्रकृति कभी चुपती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा उपचार भी देती है। श्रोताओं बिच्छू घास को आयुर्वेद में कृष्णाजिनी या अंताक्षेपणी जैसे नामों से जाना गया है। ये पहाड़ी इलाकों में विशेषकर

0: उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। ये घास देखने में तो साधारण लगती है, लेकिन इसके पत्ते, तने, बीजों और जड़ों में अनेक स्वास्थ्यवर्धक तत्व पाए जाते हैं। ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और सी तथा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसका सबसे बड़ा गुण है रक्त को शुद्ध करना और खून की कमी को दूर करना, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें एनीमिया की समस्या रहती है या जो बार बार थकान महसूस करती हैं। उनके लिए बिच्छू घास से बना काढ़ा या सूप रामबाण का काम कर सकता है। पहाड़ों में इसे सिसौड़ कहा जाता है और इससे बना साग गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की माताओं को विशेष रूप से खिलाया जाता है ताकि उनके शरीर की ताकत लौटे और खून की मात्रा संतुलित रहे। इसके अलावा बिच्छू घास को संधि रोग, जोड़ों के दर्द, गठिया या सूजन में भी बहुत प्रभावी माना गया है। ये शरीर में जमी सूजन को कम करने, मूत्र की मात्रा बढ़ाने और अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायक है। यही कारण है कि यूरोप में अब इसे डिटॉक्सिफाइंग टी यानी शरीर को शुद्ध करने वाली चाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि बिच्छू घास के रेशे बेहद मजबूत होते हैं और इनसे कपड़ा भी बनाया जाता रहा है। यानी ये पौधा सिर्फ औषधि नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल संसाधन भी है जिसमें पर्यावरण से जुड़ने की भी प्रेरणा है। अब बात करें इसके सीधे स्वास्थ्य लाभ की। अगर आप अक्सर एलर्जी, त्वचा की खुजली या एक्जिमा जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो बिच्छू घास का प्रयोग बहुत मददगार हो सकता है। इसमें प्राकृतिक एंटी हिस्टामिन गुण होते हैं जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करते हैं। इसके पत्तों का रस या सूखे पत्तों का पाउडर त्वचा पर लगाने से पुराने दाग धब्बों और फंगल संक्रमण में राहत मिलती है। साथ ही ये घास पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करती है। इसके बीज या सूखे पत्तों का चूर्ण अगर गर्म पानी के साथ लिया जाए तो ये पेट की सफाई करता है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और भूख को संतुलित करता है। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो बार बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से गट फ्लोरा यानी आंतों के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बिच्छू घास में एक अनोखी विशेषता है, ये शरीर के हार्मोन संतुलन को भी सुधार सकती है। ये थायराइड और महिलाओं के हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए भी सहायक मानी गई है। जो महिलाएं रजोनिवृत्ति के दौर में हैं या पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, उनके लिए ये प्राकृतिक रूप से उपयोगी हो सकती है। श्रोताओं, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिच्छू घास हमें सिखाती है जो चीजें बाहर से थोड़ी तीखी, थोड़ी कठिन लगती हैं, वे भीतर से उतनी ही लाभकारी भी होती हैं। ये पौधा भी हमें सहनशीलता, स्वावलंबन और प्राकृतिक चिकित्सा की राह दिखाता है। जब हम प्रकृति के इन अद्भुत उपहारों को समझते हैं, उन्हें अपनाते हैं तो हमारी जीवन शैली भी बदलती है और हमारी सोच में एक सकारात्मकता आती है। आज जब हम जैव विविधता और स्थानीय भोजन की बात करते हैं तो बिच्छू घास जैसे पौधों की ओर लौटना जरूरी हो जाता है। ये हमारे आसपास उगते हैं बिना किसी रासायनिक छेड़छाड़ के और हमें पोषण, सुरक्षा और उपचार तीनों एक साथ प्रदान करते हैं। यही तो है प्रकृति की पूर्णता। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ी यात्रा पर जाएं या गांव की मिट्टी में चलें तो कहीं बिच्छू घास दिख जाए तो डरिए मत, उसे पहचानिए, उसका आदर कीजिए। हो सकता है वही चुभन किसी दिन आपको आरोग्य का रास्ता दिखा दे। आज की चर्चा को श्रोताओं यही विराम देते हैं। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं, आपको बता दें, आज शाम 7:31 से सुनिए वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से, जो मैच की समाप्ति तक जारी रहेगा।

प्रातः 9:15 पर सुनिए जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की खबरें। 9:30 से समय रहेगा उर्दू कार्यक्रम का। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का समय रहेगा प्रातः 9:50 से और दोपहर 2:45 से। आज आपको सुनवाएंगे शीलू श्रीवास्तव के गाए कुछ अवधि लोक गीत। बहनें अपना कार्यक्रम उदिता का आनंद ले सकेंगी दोपहर 1:15 से। आज सुनिए अलका पांडे प्रमोद की लघु कथाएं और व्यंजना शुक्ला का काव्य पाठ। संचालन होगा ममता उपाध्याय का। कार्यक्रम विज्ञान और किसान लेकर हम हाजिर होंगे दोपहर 2:30 पर। आज सुनिए खरीफ फसलों की सामयिक देखभाल विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुने शाम 5:10 से।

शाम 5:45 से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नई उड़ान। शाम 6:30 से आप सुनिए कार्यक्रम लोक आयतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अतीक रहमान सिद्दीकी की वार्ता विकसित भारत और स्मार्ट गांव। 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती की जानी, जिसमें किसान डायरी का आलेख व वाचन प्रदीप उपाध्याय का होगा और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। विविध जानकारियों और रंगों से भरा कार्यक्रम विविधा सुनिए बस कुछ ही पलों में। प्रेजेंटर है अनुमेहा गुप्ता और विषय है अति सर्वत्र वर्जयेत।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुमेहा विविधा के आज के अंक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी ने कबीर का ये दोहा तो जरूर पढ़ा होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात हर चीज की अति से बचना चाहिए, और यही है आज की विविधा का विषय, अति सर्वत्र वर्जयेत। दोस्तों, हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है भोजन, और स्वादिष्ट भोजन किसे पसंद नहीं। कई बार जब पेट कहता है बस हो गया, लेकिन मन कहता है थोड़ा और यही थोड़ा और कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन जाता है।

दोस्तों, आज हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की चाहता है और इसके लिए मेहनत भी करता है, लेकिन काम इतना बढ़ जाए कि स्वास्थ्य, परिवार और स्वयं के लिए समय ही न बचे, तो हमें रुक कर सोचना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, काम जीवन का हिस्सा है, पूरा काम नहीं, पूरा जीवन नहीं। लेकिन काम की अति जहाँ ठीक नहीं, वहीं आराम की अति भी ठीक नहीं। आराम शरीर को पुनः ऊर्जा देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आराम धीरे धीरे आलस्य में बदल जाता है। इसलिए न लगातार भागते रहिए और न लगातार रुकिए। जीवन में गति भी चाहिए और विराम भी चाहिए।

और अब बात करते हैं इच्छाओं की। इच्छाएं हमें सपने देखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। समस्या तब होती है जब इच्छा आवश्यकता पर हावी हो जाती है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी, इससे बड़ी इच्छा का जन्म हो जाता है और इसके पूरा होते ही फिर कोई और इच्छा, और यह कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ भी वही सूक्त लागू होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत और संतोषम परम सुखम।

इच्छा के समान ही क्रोध और प्रेम भी स्वाभाविक भावनाएं हैं। अन्याय देखकर क्रोध आना गलत नहीं, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर निर्णय लेना गलत हो सकता है। क्रोध के उलट प्रेम सबसे सुंदर भावना है, जिसका हर रिश्ते में होना अनिवार्य है, लेकिन दूसरे की निजता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।

दोस्तों, कभी कभी हम हर बात पर अपनी राय देना चाहते हैं और ये होती है बोलने की अति। हर चर्चा में बोलना, हर बात का जवाब देना क्या जरूरी है? कभी कभी मौन भी उत्तर होता है। कम शब्द, सही समय, यही प्रभावी संवाद की पहचान है।

वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे बड़ी परेशानी का कारण है तकनीक और मोबाइल की अति। यदि आज परिवार पास भी है तो भी वो संवाद से दूर है, कारण मोबाइल। दोस्तों, तकनीक को जीवन का साधन बनाइए, जीवन का केंद्र नहीं। और दोस्तों, इस अति से अगर बचना है तो हमें प्रकृति से सीखना होगा। प्रकृति हमें हर दिन संतुलन का पाठ पढ़ाती है। दिन के बाद रात आती है, तो धूप के बाद छांव और वर्षा के बाद खुला आकाश। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन है, लेकिन एक संतुलन के साथ। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरण प्रभावित होता है। उसी तरह हमारे जीवन का संतुलन बिगड़े तो स्वास्थ्य, मन, रिश्ते और कार्य सब प्रभावित होते हैं।

दोस्तों, अंत में आपसे इतना ही कहूंगी कि हमें जीवन चाहिए, लेकिन जीवन में किसी एक चीज की इतनी अति नहीं कि बाकी सुंदर चीजें सभी पीछे छूट जाएं, और यही है अति सर्वत्र वर्जयेत। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन को संतुलित रूप से आनंद लेते

रहें। बस यही हमारी अभिलाषा है। इसी शुभ कामना के साथ विविधा का आज का अंक समाप्त करने की मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल TET, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में अभियान

0: की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: सेवा संकल्प अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला पंचायत प्रशासकों सहित नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की।
2: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर की शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में लाभार्थी परिवारों के साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं से बने प्रमुख भवनों और विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करें। समाचार कक्ष से रितेश।
0: उधर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहाँ के चिकित्सक आकर के यहाँ पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कल बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जन सुनवाई की। साथ ही उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित भी किया।
4: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
0: सरकार ने दो जिलों के जिलाधिकारियों सहित 5 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं।

0: जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं समीर अब जालौन के नए जिलाधिकारी होंगे। चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं का आगमन कल से ही होने लगा था। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं।
1: हमारे इस मेले की सुरक्षा में डिप्टी एसपी रैंक के 14 अफसर हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 उप निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, पीएसी की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून है।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार कल 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 4 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने अधिकाधिक पात्र वादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की।
2: मेरी जनता से ये अपील है कि उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आके करवा सकते हैं, ना उनसे हमको लगते छूट लें, और यदि पहले से उनके कोई जुबानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है।
0: सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरि की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का गायन राग तोड़ी में।

0: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके साथ ही आज का नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन के लिए

0: तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में

0: खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में सम्पन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली

0: वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है। लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद। वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग
4: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
5: मैं जया प्रियदर्शिनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली, आकाशवाणी बरेली के श्रोताओं से अपील करती हूँ कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बरेली की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2026 शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। श्रोताओं, लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है। मुकदमे में जमा प्रूफ फीस

0: भी वापस मिल जाती है और लोक अदालत में किया गया फैसला अंतिम होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो रिश्ते बचाइए, वैमनस्य से मिटाइए, अपने मुकदमे को लोक अदालत में लाइए। 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाइए। इस बार विवाद को नहीं समाधान को चुनें। धन्यवाद।
1: मैं उमा शंकर कहार, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली, आकाशवाणी बरेली के सभी प्रिय श्रोतागणों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश एवं माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के दिशा निर्देशन में दिनांक 12 सितंबर 2026 शनिवार को प्रातः 10 बजे से बरेली न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम और समनीय अपराध मामलों का त्वरित और निःशुल्क निस्तारण किया जाएगा। यदि आपका कोई ऐसा मामला लंबित है जो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करवाइए तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर मुकदमेबाजी से निजात पाइए। मुकदमेबाजी से नहीं, मिल बैठकर आपसी सहमति से मामला निपटाइए। धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन IR ऐप तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के वीकली शो फिल्मी फ्राइडे में। और हम हाजिर हो चुके ढेर सारी फिल्मी बातें करने के लिए। जिंदगी भी कई बार लगती है फिल्मों की जैसी, लेकिन सोचिए फिल्में इल्म के साथ भी आते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में हम चाहते हैं कि दोबारा हो जाए। हाँ, कुछ कड़वी यादों को छोड़कर अगर बात की जाए पास्ट की, उसमें बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम चाहते हैं कि आज के इस दौर में भी हो। भाई, हर कोई चाहता है बदलाव, नया कुछ देखने को मिले, लेकिन कई बार नया मिलने के बाद भी दिल है और इंसानी फितरत भी अपने पास्ट, अपनी माजी की ओर देखते हुए दिल कहता है काश हम पुराने वाले दौर में चले जाएं, बहुत अच्छा था। ऐसे ही इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है 1980s का। भैया, ये जो सोशल मीडिया जो ना करा दे वो थोड़ा है, मगर बड़ा सोच समझ कर। कई बार क्या होता है कि हम गाहे बगाहे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उन पर अपनी बहुत सारी जानकारी साझा कर देते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करें, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, देखिए वो क्या क्या आपसे चाहता है, आपके फोन पर किन किन चीजों पर कंट्रोल रखना चाहता है, या कौन सा डेटा है जो वो आपके डेटा को असेस कर लेगा। अगर आपको लगता है कि उसके नियम और शर्तों में जो डेटा वो एक्सेस करने की बात कर रहा है वो आपके लिए सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, तो फिर उन शर्तों को मत मानिए। और ऐप, ऐसे ऐप को तो आप बिल्कुल भी अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो है जानकारी के अभाव में अपने मोबाइल फोन में ढेर सारे डैशबोर्ड पर बहुत सारे

एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं। होता क्या है, कई बार आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कोई भी विज्ञापन आप देखते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है और बहुत सस्ती मिल रही है, आप ऑर्डर कर बैठते हैं। देखिए, शॉपिंग करने के ऑनलाइन दो तरीके हैं। पहला, जो विश्वसनीय शॉपिंग साइट्स हैं आप उन पर खरीदारी कीजिए, और कुछ ऐसे नए पेज और ऐसे लिंक भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिनकी विश्वसनीयता पर शक होता है, तो ऐसी साइट से बचिए। कई बार अगर आप खरीदारी करेंगे उनसे तो वो आपके लिए जो आपने आइटम चूज किया है वो भेज भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल अगर वो प्रोडक्ट हुआ तो उस पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। कई बार तो लोगों के पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, कोई भी आइटम नहीं मिलता। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, ये बाकायदा आपके ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, उसके बाद ट्रांजिट दिखाएंगे कि आपका ऑर्डर इस समय ऑन द वे है, चल रहा है, यहाँ से शिप कर दिया गया है। फिर 8 दिन या 10 दिन बाद आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी और आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑर्डर किया हुआ सामान है वो रिटर्न हो गया, वापस हो गया। कारण कि जो कस्टमर है उसने कॉल रिसीव नहीं की या फिर दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया देखो, फ्रॉड तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है। कई सारी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें बहुत सारा फ्रॉड होता है, मिस्टर नटवरला या और भी है, कई फिल्में हैं। आपके जहन में कौन सी ऐसी फिल्म है जो इस तरह के फ्रॉड को उजागर करती है, या कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब है जिसमें धोखेबाजी को, हाँ धोखेबाजी का मतलब ये ना है कि वो दिल तोड़ने वाला धोखेबाजी, ना ना ना ना ना, ना। अरे उपभोक्ताओं से संबंधित ऐसी कोई फिल्म जो आपके जहन में है तो मुझे अभी भेज दो, बता दो अपने नाम के साथ कौन सी है वो फिल्म। हाँ, दिल के मामले में धोखेबाजी नहीं चलेगी, है ना, ये तो हर फिल्म में होता है थोड़ा बहुत। ऐसी जो उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए, यानी किसी चीज को किसी ने खरीदा और उसके साथ फ्रॉड किया गया, ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपने देखी है आज तक आपको याद है? अगर है तो आप मुझे अभी फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू बताओ अपने नाम और पते के साथ। खैर, फिल्मी फ्राइडे में हम ढेरों बातें करते हैं, टोटल फिल्मी होती हैं, और जिंदगी में एक तमन्ना रहती है कि काश हम भी हीरो बन जाते, एक्टर बन जाते, स्टार बन जाते। और तो और, सुपरस्टार बनने की भी हमें से बहुतों की तमन्ना थी, लेकिन वो तमन्ना पूरी ना हुई। तो आकाशवाणी बरेली ये कर आता है ना आपके लिए प्रत्येक शुक्रवार सुबह 8:15 से वो कार्यक्रम जिसका नाम फिल्म माई फ्राइडे, ओहो फिल्मी फ्राइडे है। तो इस कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का सबसे पहले सही जवाब दो, सुपरस्टार बन जाओ, बाकी के जितने भी राइट आंसर होते हैं वो सब स्टार कहलाते हैं। कार्यक्रम में हम सबसे पहले याद करते हैं अपने स्टार्स को, नाम पढ़ते हैं उनके, और सुपरस्टार से तो बतियाते हैं, उनकी एक पसंद का गाना भी सुनवाते हैं। तो फिलहाल तैयार हो जाओ मेरे प्यारो फिल्मी फ्राइडे के सितारों, कान खोल लो, मतलब अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा लो, कान तो ऑलरेडी सबके खुले हुए होते हैं, चौकन्ने होते हैं उसे। तो पहला सही जवाब जिन्होंने भेजा वो तो सुपरस्टार हैं, उन्हें हम कॉल करेंगे अपने स्टूडियो से, मतलब स्टूडियो से। लेकिन उनके बाद जिनके भी राइट आंसर मिले वो सब यूं हैं, एटा रोड गंजवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, हमें सही जवाब भेजा है शमा सैफी ने कस्बा जादवपुर से, और ये कौन सा थी, ये हैं शबनम सैफी कस्बा जादवपुर से ही हैं। एम फारूक शेख साहब आए हैं, कहां से आए हैं, एटा रोड गणेशपुर गंज चंडवारा से। अच्छा तो चलिए कुछ और दोस्तों को भी साथ लेते हैं, अब साथ कह लेंगे भाई सही जवाब जब आपने भेजे तो सबको पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी साहब ऊपरकोट बुलंदशहर से, हमें राइट आंसर मोहम्मद कलीम जख्मी साहब ने भी रेलवे रोड गंज डंडवारा से भेजा है। और भी कोई दोस्त आए हैं, बिल्कुल आए हैं, जरा गौर से सुनिएगा। सलीम सेठ सैफी साहब जादवपुर जिला बदायूं से, जिला बरेली से क्षमा कीजिए, सलीम सेठ सैफी साहब कस्बा जादवपुर जिला बरेली से हैं। और कौन है, डॉक्टर डी एच बच्चन साहब गणेशपुर गंजवारा से, राइट आंसर भेजा है, मगर दूसरी बार जवाब भेजा है, पहली बार गलत लिखा था, दूसरी बार सही जवाब भेजा है मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तराना अंसारी ने, चूंकि हमें लास्ट वाला ही शो होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, और अगला जो

कौन कौन है? आप है कासगंज यूपी से पवन गौड़ जी, इट्स राइट आंसर। ऑलराइट, क्या बात है। मगर छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी ने भी हमें राइट आंसर भेजा है। यहीं से है लुबना खुसरो और राइट आंसर के साथ शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम में धानबी लूट कासगंज से अब्दुल बारी अंसारी जी। वाओ क्या बात है, इश्तियाक अहमद इदरीसी साहब हैं बाहेड़ी से, शुक्रिया आपका भी भाई। शुक्रिया तो सबका जिन्होंने कार्यक्रम सुना, जिन्होंने जवाब भेजे। हाँ तूबा खुशो भी आई है छपर वाली मस्जिद कासगंज से, और कौन है? ओहो ये मैसेज ओपन में बड़ा टाइम गया। मोहन मोहम्मद जोहान सभी साहब हैं, कहाँ से हैं? यहीं से हैं, छप्पर वाली मस्जिद। आओ राइट आंसर के साथ हमारे ये जो साथी आए हैं वो हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव जी, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। मगर आप एक नंबर पीछे कैसे रह गए? यह है लीवा मलिक छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से, और आपके बाद ये हमारे जो साथी यहीं से हैं मास्टर उस्मान खान साहब, मुनव्वर लल्ला जी भी आए हैं पश्चिम थोक गंजनवाना से, और हमें राइट आंसर भेजा है आवाद खान साहब ने परी महल कासगंज से। मगर बीडीए कॉलोनी कर गए ना बरेली वाले पन्नी लाल सागर जी भी पीछे कैसे रहेंगे, उन्होंने भी राइट आंसर भेजा। सवाल को सुन के जवाब भेजा बिल्लाम गेट कासगंज से अहम असलम सैफी जी ने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थारो जी। हाँ इब आगे बढ़ेंगे, यो मैसेज हमें बिल्लाम गेट कासगंज से सोनी सैफी जी ने भेजो बिल्कुल राइट आंसर के साथ। मगर खुर्जा यूपी से चंदन अरोड़ा जी ने भी अपना जवाब हमें भेजा, लेकिन साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया जी भी आ चुके हैं, और आ चुके हैं सुबोध चौरसिया जी, कहां से आए हैं आप? मोहल्ला सदवाड़ा फरुखाबाद से हैं। संजय चौरसिया जी भी आए हैं, आप मोहल्ला नाला मचरट्टा वहीं फरुखाबाद से हैं। हमें सलोनी चौरसिया जी ने भी राइट आंसर भेजा है। आप कहां से हैं भाई? आप मोहल्ला छावनी से हैं। और कोई साथी रहे क्या? चलिए एक बार पुनः सर्च कर लेते हैं। ये देखिए तिलक राज अरोड़ा जी ने भी हमें राइट आंसर भेजा था। कहां से? आपने खुर्जा उत्तर प्रदेश से सही जवाब भेजा। बाकी और दोस्तों ने हमें कुछ और भेजा है, वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे भैया सही जवाब भेजने के लिए। आप सबका बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा तो यही कहना है कि आप इसी तरह सुनते रहें आकाशवाणी बरेली से थारो आपणों शो फिल्म माय फ्राइडे विद द डोज ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स एंड एंटरटेनमेंट।

0: 100.4 FM.
1: यह 100.4 FM आकाशवाणी बरेली है और आप हमें कई जगह सुन रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर। वैसे जो हमारे अधिकृत 3 प्लेटफॉर्म है वो है हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM, इसके अलावा प्रसार भारती का ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप, और इसके अलावा प्रसार भारती का ही OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। इसके अलावा भी कई सारे सर्वर हैं जो हमारी स्ट्रीमिंग को आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको बता दें, फिल्मी फ्राइडे में बात ही टोटल फिल्मी होती है, मगर कुछ इल्मी भी होती है। हमने पूछा था कि आपने कौन सी ऐसी फिल्म देखी है जो उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड करने वाली घटना को दिखाने वाली है। इस पर हमें बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अपनी पसंद की वो फिल्में उनके नाम हमें लेकर भेजे जो उन्होंने देखी है। बंटी और बबली अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या वगैरह के अभिनय से सजी हुई फिल्म है, इसके बारे में बता रहे हैं बीपी गौतम साहब। अजीत भावसार जी ने भी हमें बताया कि श्री 420 इन्होंने देखी जो इनको बहुत पसंद आई, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन तिलक राज अरोड़ा जी ने रोटी फिल्म के जिक्र करते हुए कहा है कि इस फिल्म में राशन की कालाबाजारी को उजागर किया गया है। हाँ, पवन गौड़ जी भी आए कार्यक्रम में बताने के लिए कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो उन्होंने देखी और जो फ्रॉड पर आधारित है, घटना पर आधारित है। फिल्म का नाम बताया इन्होंने, घोसला का घोसला। प्रॉपर्टी डीलर पार्टी के साथ फ्रॉड करता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से पार्टी के बेटों ने प्रॉपर्टी डीलर को भी गच्चा दे दिया और अपनी जमीन हासिल कर ली। तो बात सही है, आपने देखी थी फिल्म ये? वैसे मैंने तो देखी। हाँ, अजनबी इन्होंने देखी जिसमें फ्रॉड होता है, लेकिन ये मोहम्मद सईद अब्बासी साहब है ऊपरकोट बुलंदशहर से। हाँ, ये जो हमारे साथी हैं कौन हैं, मौलागढ़ नई बस्ती से तरन्नुम अंसारी कहते हैं कि हमने खाकी फिल्म देखी, उसमें धोखा करती है ऐश्वर्या, इसीलिए लोगों से विश्वास हट गया था प्यार।
2: हमने कहा था ना भैया, दिल और प्यार वाली बात ना करना है, आपको तो बताना है कौन सी ऐसी फिल्म है जो उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड करने वाली है। अरे दिल के तो छोड़िए, ये तो दिल का मामला है, ये तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 के साथ होता है।
1: चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने विचारों को शेयर करने के लिए।
2: बाकी ओहो, आपकी लैंग्वेज बहुत पसंद आ रही है, पर कुछ आए या ना आए क्या मतलब? ये तो बात बड़ा असमंजस वाली हो गई, पसंद भी आ रही है, आए भी या ना आए, जनाब ये क्लियर कीजिएगा वरना हम बड़े चक्कर में पड़ गए। सोचिए, किसी को अगर आपको चक्कर में डालना है या घन चक्कर बनाना है उसके दिमाग का, तो फिर उसको बोल दीजिए एक बात कहना चाहते थे तुमसे, और फिर उसके बाद चुप हो जाइए। सच मानिए, 2-3 दिन तक सोचता रहेगा बंदे ने कहा क्या था, क्या कहना चाहता था। ऐसा होता है हमारे और आपके साथ। फिलहाल कोई बात ना, अब हम बढ़ेंगे वहां।
3: कहां बढ़ेंगे? बढ़ेंगे तो वहीं जहां हमारे पिछले हफ्ते के कौन है भैया, वही है सुपरस्टार। तो सुपरस्टार को अभी कॉल लगा रहे हैं, देखते हैं वो कितनी देर में हमसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे कॉल तो जा रही है। वेलकम जी। हेलो।
4: हाँ जी, नमस्कार।
3: अजी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दोस्तों को बता दें कि इस समय हमारे साथ पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के जी, बहुत बहुत बधाई आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की।
4: हाँ जी,
3: और कैसे हैं जनाब?
4: कौन है जो सपनों में आया?
3: अरे ये तो हमने सवाल पूछा ही ना, आपने अपना नाम बता दीजिए पहले।

0: जिस बॉस था जुलम खान से। हाँ
1: अच्छा, कौन है जो सपनों में आया से था वो ट्रैक?
0: ट्रैक उसका था।
1: बड़ा जल्दी जवाब ढूंढ लेते हैं, क्या
0: नहीं,
1: क्या ढूंढ?
0: सोशल मीडिया है ना आजकल।
1: हाँ चलिए, सोशल मीडिया कई बार गच्चा दे जाती है। हाँ,
0: कभी गच्चा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ
1: आज के सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा।
0: जी, हाँ जी, ठीक है,
1: और बताइए कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है। जरा अस्वस्थ था,
1: अरे क्या हुआ?
0: थोड़ी वो बीपी की बीमारी ज्यादा रहती है।
1: ओहो, तो अपना खान पान थोड़ा सही रखिए और अपने माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए।
0: हाँ जी,
1: बाकी मौसम क्या कह रहा है आपकी तरफ?
0: मौसम तो ठीक है अभी।
1: मौसम का जादू चल रहा है।
0: हाँ जी,
1: अच्छा, आपने बताया था कि आपने श्री 420 फिल्म जो है वो देखी और उसमें फ्रॉड के बारे में, क्या फ्रॉड दिखाया गया?

0: रुपीज फिल्म जो है वो देखी, और
1: हाँ
0: उसमें फ्रॉड के बारे में क्या फ्रॉड दिखाया गया था इसमें?
1: उसने वो 1,000 रुपये में 100 रुपये में मकान, फिर मकान नहीं देते और 100 रुपये सबका ले लेता है।
0: अच्छा
1: हाँ वो फ्रॉड होता है। फिर वो चौपाटी पे मंजन बेचने जाता है, उसने चौपाटी की रेती मिलाता है, बोले तो साला रेती मिला के मंजन बना रही है
0: ये तो
1: उसको बार
0: है।
1: बार। ये सब फ्रॉड वाला ही पिक्चर था।
0: अच्छा,
1: क्या
0: ऐसी
1: होती
0: ऐसी घटनाएं हमारे आसपास बहुत होती हैं।
1: होती है।
0: अच्छा, पहले का दौर और था, लेकिन आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, तो हमारे पास जो फोन है उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, लोगों को ठग लिया जाता है।
1: ऑनलाइन में ऐसा ही होता है, कभी मोबाइल मंगा तो कोई दूसरी चीज आ जाती है।
0: हाँ, लेकिन जो
1: चलते
0: जो विश्वसनीय शॉपिंग साइट्स हैं उन पर अगर हम खरीदारी करेंगे तो ये फ्रॉड होने की संभावना कम होती है।
1: कम होती होती है।
0: अच्छा, कभी भी कई बार क्या होता है कि अगर आपके कोई खरीदा हुआ प्रोडक्ट खराब निकलता है, या उसे कंपनी के बारे में उनके कस्टमर केयर से बात करनी है, तो कभी भी गूगल पर कंपनी का केयर नंबर सर्च नहीं करना चाहिए।
1: नहीं, उस पर नहीं करते हम, तो खाली उसके अंदर जो दिया होता है
0: जी
1: फोन नंबर दिया होता है, क्लिक करते हैं तो वहां से फोन उठाते हैं लोग, या तो
0: जी
1: मैसेज से फिर वो सामने से बात करते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए, कई बार क्या है कि अभी जो जितने भी शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने भी अपने नंबर को वो उजागर नहीं करते, वो आपको एक लिंक देते हैं, उस लिंक के थ्रू वो खुद कॉल करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके नंबर, उनके लिंक पर क्लिक कीजिए और वो आपको बता देंगे कितनी देर में हमारे सपोर्ट वाले जो कस्टमर केयर हैं, अधिकारी हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे।
1: उसके ऊपर हेल्प लिखा हुआ था, उसके ऊपर
0: जी
1: टच
0: जी जी
1: करते हैं तो
0: बिल्कुल
1: उसका
0: बिल्कुल
1: फोन वहां पहुंच जाता समाचार,
0: जी जी
1: फिर सामने से कॉल करते हैं।
0: हाँ, ये तो है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की। और अब हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: फिल्म अदालत,
0: हाँ
1: अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर फिल्म का गाना है,
0: हाँ हाँ
1: तुमसे दूर रहकर हमने जाना है प्यार किया है।
0: ठीक है, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और
1: धन्यवाद
0: आपको सुपरस्टार बनने की बधाई।

0: दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.4 FM बोले तो आकाशवाणी पर रिलीज। इस समय हम बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे सुन रहे हैं। बातें फिल्मों की, बातें इल्मों की। ओह गोलमाल है, सब गोलमाल है। लेकिन सच्ची बताएं यहाँ
1: सब गोलमाल,
0: अरे यहाँ कुछ गोलमाल न, या तो सब कुछ ओरिजिनल है,
1: गोलमाल है।
0: अरे नहीं नहीं बिल्कुल गोलमाल नहीं है, लेकिन इस गोलमाल को बहुत जल्दी भांप लिया किन्होंने, जिन्होंने भांपा है वो बता रहे हैं। सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल किन के साथ चली गई, पता है वीरेश कुमार जी के साथ। वो कहते हैं कि उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि आपकी बाइक का 1500 रुपए का चालान कट चुका है, देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। वो बड़े सजग और जागरूक हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एम परिवहन की साइट पर गए और वहां देखा कुछ नहीं था। वो समझ गए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि भैया लिंक को वहीं टच ना किया। इसलिए कहते हैं जिंदगी में हर चीज, हर लिंक को टच करना जरूरी ना होता है जब तक कि वो विश्वसनीय ना हो। किसी भी अनजान लिंक पर टैप करने से पहले किसी भी SMS या आपके पास आए किसी भी जवाब को ओपन करने से पहले कई बार सुनिश्चित कीजिएगा। लेकिन लालच में बताओ, सच बताए ज्यादातर जो फ्रॉड होते हैं ना वो लालच के कारण ही होते हैं, लेकिन कुछ एक डर के कारण भी होते हैं। जैसे आप साइबर अरेस्ट के बारे में सुनते हैं, अरेस्टिंग, डिजिटल अरेस्ट जिसको कहा जाता है, उसके चक्कर में भी बिल्कुल ना पड़िए। जब भी इस तरह से कोई ऐसी बात होती है तो हिम्मत मत हारिएगा, किसी को अपने जरूर बताइएगा वो बात है। हाँ ये फिल्मी फ्राइडे है, बातों फिल्मों की है, इल्मों की है, तो अब क्या करना है, अब तो फिल्म को फ्राई करना है। दोस्तों एक बात बताइए, एक फिल्म या कोई एक ऐसी थीम जो आपने एक बार देख ली और पूरी की पूरी उसके बहुत सारे एपिसोड देख लिए, फिर भी क्या आप इच्छा करेंगे कि अगर वो टॉकीज में आए तो देखने जाए? लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम है मिर्जापुर, मिर्जापुर द मूवी। ये पहले तो कई सारे एपिसोड के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था, उसके बाद फिर फिल्मों में, फिल्म के रूप में टॉकीज में भी आए। तो चलिए अब फिल्म को फ्राई करने के वाली है, समझ गए ना, बारी है फिल्म को फ्राई करने की, वीर रणी तैयार हो जाइएगा। कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, दिव्यंदु अली फजल, रशिका दुग्गल, रवि किशन, राजेश तैलंग, अभिषेक बनर्जी, जितेंद्र कुमार, श्वेता त्रिपाठी, सोनल चौहान, मोहित मलक। और ये एक हिंदी एक्शन क्राइम ड्रामा टाइप की फिल्म है। दोस्तों OTT पर भोकाल मचाने के बाद मिर्जापुर द मूवी एक बहुत लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर आई। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम चिरपरिचित किरदारों, रवि किशन की न्यू एंट्री, स्ट्रांग सेकंड हाफ और क्लाइमेक्स के जबरदस्त ट्विस्ट के जरिए ये फिल्म सिनेमा घर में भी अपनी भोकाल वैल्यू को कम नहीं होने देती। जिन दर्शकों ने इसे OTT पर वर्चस्व दिलाया उन्हें ये निराश नहीं करती, और जो ऑडियंस पहली बार मिर्जापुर की दुनिया को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं ना, उनके लिए ये एक पक्का एंटरटेनर साबित हो रही है। बाकी कहानी के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां बड़े से पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है। हम बात कर देते हैं मिर्जापुर द मूवी, इसको फ्राई करने की यानी तड़का लगाने की, तो दर्शकों में दो राय थी, कुछ नएपन और नॉस्टैल्जिक वैल्यू की उम्मीद कर रहे थे, तो कुछ के मन में सवाल भी था कि 3 सीजन की कहानी के बाद फिल्म में आखिर क्या बचा है। फर्स्ट हाफ में जब कहानी बिना किसी खास शॉक वैल्यू के आगे बढ़ती है तो यही सवाल मन में आता है, लेकिन किरदारों और कहानी को एस्टैब्लिश करने के बाद फिल्म जैसे ही सेकंड हाफ में पहुंचती है असली मजा तभी शुरू होता है। अब भैया एक बात तो है, वैसे आपकी अपनी मर्जी है, अपने रिस्क पे देखो, देखो या ना देखो थारी अपनी मर्जी, मगर हम आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म में फेवरेट किरदार मुन्ना भैया का स्वैग, बबलू त्रिपाठी की भूमिका में जितेंद्र, रवि किशन जैसे नए ट्रैक कलाकारों की एंट्री के अलावा इसके दमदार एक्शन और डायलॉग बाजी के लिए आप चाहें तो ये फिल्म देख सकते हैं। वैसे थारी अपनी अपनी मर्जी, देखो या ना देखो, मारो काम तो फ्राई करना हो वो हमने कर दियो, है ना। तो भैया सुनते रहो हाँ हाँ, फिल्म माई फ्राइडे विद द डोज ऑफ बॉलीवुड गॉसिप।

दोस्तों आपके साथ आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ है और इस समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे। और अब बारी है उस बात की, उस सवाल की, वो सवाल कब क्यों कहां कैसे ये ना है, सवाल क्या है ये अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जवाब भेजने का तरीका तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको टाइप करना है BLYFM स्पेस देना है, अपना जवाब लिखना है, नाम पता लिखना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है और इसे भेज देना है फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। तो चलिए बताइए ये फिल्म का नाम क्या है।

0: जी हाँ, आपको बताना है ये किस फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम बताना है। फिलहाल हम चलते हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सुनने के लिए, है ना। अगले हफ्ते आएंगे ढेरों फिल्मी बातें लेकर, तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: फिल्मी फ्राइडे, कट वन, टेक वन,
2: 5, 6, 7, 8।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIRF तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओ, लीजिए सुनिए बीना शर्मा और सखियों के सुर में ये

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:01 हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म मिकी वायरस से, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में जन्मे विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन के माध्यम

से उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया। सादगी, त्याग और मानव कल्याण पर आधारित उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं।

टेबल नंबर 21 इस फिल्म का गीत आपने सुना गजेंद्र वर्मा की आवाज में। असीम अहमद अब्बासी ने इसे लिखा था, गजेंद्र वर्मा का संगीत। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में। रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और आयुष्मान खुराना ने इसे लिखा है। संगीत है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं

0: कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी, हमने लिखा था।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। काय पोचे इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गीत तो जी रैना रेखा भारद्वाज की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

कुछ बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुक्त के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

17 साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे।

फेरा फेरा। एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़े दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आँखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

अपनी किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

और उसका कारण है उनकी माँ, जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता, शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहाँ बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहाँ कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना? बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, इन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम बोल रहे हैं 100.4 MHz पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से।
1: मैं जया प्रियदर्शिनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली, आकाशवाणी बरेली के श्रोताओं से अपील करती हूँ कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय बरेली की अध्यक्षता में 12 सितंबर 2026 शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लघु आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। श्रोताओं, लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है, मुकदमे में जमा कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है और लोक अदालत में किया गया फैसला अंतिम होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो रिश्ते बचाइए, वैमनस्य मिटाइए, अपने मुकदमे को लोक अदालत में लाइए। 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाइए। इस बार विवाद को नहीं समाधान को चुने। धन्यवाद।
2: मैं उमा शंकर कहार, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली, आकाशवाणी बरेली के सभी प्रिय श्रोतागणों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश एवं माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के दिशा निर्देशन में दिनांक 12 सितंबर 2026 शनिवार को प्रातः 10 बजे से बरेली न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम और समनीय अपराध मामलों का त्वरित और निःशुल्क निस्तारण किया जाएगा। यदि आपका कोई ऐसा मामला लंबित है जो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल करवाइए तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर मुकदमेबाजी से निजात पाइए। मुकदमेबाजी से नहीं, मिल बैठकर आपसी सहमति से मामला निपटाइए। धन्यवाद।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 12 सितंबर सन 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 11 सितंबर सन 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपने टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 11 सितंबर सन 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर 0581251720 है। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। हम हाजिर हो चुके हैं अपने स्टूडियोज में आपकी सुरीली ख्वाहिशों को प्ले करने के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ यानी कि आकाशवाणी बरेली के संग। यहां चलेंगे आज 80s के सुरीले रंग। हाँ, तो आइए कार्यक्रम में कैसे जुड़ना है ये हम आपको बता दें कि आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। चुनिंदा कमेंट पर ही हम गाने प्ले कर पाएंगे, बाकी ये गारंटी है कि एक कमेंट प्रत्येक श्रोता का शामिल होगा। आप बार बार कमेंट ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी, और सिर्फ टेक्स्ट कमेंट ही स्वीकार्य होंगे। कोई भी पिक्चर वगैरह अगर आप साथ में अटैच करेंगे तो ओपन होने में वक्त लेगा, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहता है कि जब भी आप कमेंट करें सिर्फ टेक्स्ट के साथ और सिंगल टाइम यानी एक बार ही कमेंट करें, बार बार नहीं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए पहली पसंद कौन सी रहेगी, अंदाजा लगाइए। अब चूंकि हमारा जो पेज पर पोस्ट है वो 80s को लेकर थीम दी गई है, तो शुरुआत 80s के ही कुछ बेहतरीन चुनिंदा नगमों के साथ हम करेंगे इस प्रोग्राम की।

जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म अमृत का गीत है और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब हैं। कौन कौन साथी हैं? तो चलिए, आप सबके नाम हम पढ़ने वाले हैं। आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और इनका पूरा परिवार। अब बारी है शामिल करने की। आप हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से आप हैं ओमपाल गंगवार, अनिता गंगवार, मम्मी पापा और इनके सभी साथी। और आप धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और इनका पूरा परिवार है। गोल्डन रेडियो शतसंग राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश, राजेश वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पुरमऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हैं। आप हैं लेसूडिया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, गुरुवर्ण सिंह और इनके सभी साथी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनी राम पाल, मलखान सिंह, सुधांशु, हिमांशु पाल और इनके पूरा परिवार। भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन, वकील अहमद और इनके तमाम हमनवा। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल और इनका पूरा खोरवाल परिवार। कुछ और दोस्तों को भी साथ लेते हैं। कौन कौन साथी हैं साथ में? आप सबके नाम पढ़ने वाले हैं तो जरा गौर कीजिएगा। बारीलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश कल्लू, रविंद्र, बिंद्रावन प्रजापति, आप सबसे बड़ी छतरपुर से हैं। और राहुल पाल, ज्योति अंजनी, अंजना पाल, हरिमोहन पाल, बेबी लक्ष्य, गोपी खिरिया, भांडेर, दतिया मध्य प्रदेश से, अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य, कटरचांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से हमें कमेंट करते हैं। और वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान और इनके तमाम हमनवा हैं। रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके सभी साथी। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से हैं। और कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और इनके सभी साथी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया हैं। और आप हैं परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा खान और इनके तमाम हमनवा। प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव गुप्ता, प्रियल, कायरव, गौरी गुप्ता, शनिवाजार, कस्बा उगैती, बदायूं से हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, मुरादाबाद, दूलापुर उत्तर प्रदेश से कमेंट करते हैं। डॉक्टर आरवी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा यादव, थाने के सामने, नगर पंचायत अलागंज, जनपद शाहजहांपुर से। और आप हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, मोतिहारी बिहार से। और कमेंट करते हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नांद्रे, मारोतराव पंचाल और इनके सभी साथी। बड़ी केवी चौराहा वाराणसी से आप हैं अरुण कुमार मालवीय और इनके तमाम हमनवा। गंज डंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनबा मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और इनका पूरा परिवार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, अक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और आप हैं मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी, नंदिनी और कल्पना कुमारी, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, पाकुड़ झारखंड से, बोड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हैं। जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भावेश सिक्का और इनका पूरा परिवार। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा जी हैं। आप हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और आशीष राजा। बठिंडा रोड मंडी डेबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग का कमेंट है। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार का है। और आप हैं ग्राम पोस्ट कोठा कंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, सत्यम, शीतल मिश्रा, राधा, सलोनी मिश्रा और शिवम मिश्रा। हमारे ये साथी हैं लाल कोटी रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिक, दीपाली, सचिन युवान और आरके राजा। और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया और इनका पूरा परिवार। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनका पूरा परिवार। गंजडंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी और इनके तमाम हमनवा। और आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और इनके तमाम साथी। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार गुड़िया।

कुमारी भाव्या निवेश और नियति कुमारी का कमेंट है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल और भानु प्रकाश हैं। गांव काबरेल हिसार हरियाणा से सुरजीत सिंह इंदौरा, विशाल कुमार इंदौरा और इनके तमाम साथी। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता का कमेंट मिला है। आप है लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी। राजोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू, गुड्डू रंगीला और इनके तमाम साथी। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा जी हैं। तांगोरी मोहाली पंजाब से गुरबीर सिंह तांगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत, सहजप्रीत सिंह और इनके सभी साथी। गोंदर रोड धूलिया महाराष्ट्र से हमें ये कमेंट किया है मनोहर मगर, यामिनी, उदयन और अर्पिता ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित अहूजा हैं। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक, मीका विरक और इनका पूरा परिवार। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडिया, आशीष मयूरकर और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नाहकर, विशाल नाहकर हैं। आप हैं रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव और साथ में हैं चंद्र प्रकाश मौर्य। मन्नू भाई कहाँ से हैं आप? कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तनवी बोध हैं। और आप हैं अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। आपने नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से कमेंट किया है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और इनका पूरा परिवार। और ये हमारे साथी हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके तमाम साथी। सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कमेंट करते हैं। दत्ता घोट के आष्टी जालना महाराष्ट्र से और कोई साथी इनके साथ और तो ना है। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का कमेंट मिला है। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हैं। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवांश शर्मा। एयरपोर्ट नगर वंदना नगर, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से ललिता, आशा रानी, संजना परी, गणेश कार्तिक खड़ से, कुमारी लड्डू देवी, देविका चौधरी, स्वाति प्रयागराज चौधरी और इनके सभी साथी। मेहरनगर उमरखेट महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रणीता, सिद्धार्थ गवाणकर, राजकुमार एकांश गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुकटुक और इनका पूरा परिवार। हमारे ये साथी हैं रंगोली रेडियो लिसनर क्लब राजनगर मधुबनी से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता सिंह, स्वाति, सुशांत सिंह राजपूत, चुलबुल रानी। दरभंगा से क्रांति भगत, कामेश्वर प्रसाद भगत और अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी। गांव फरासी हिसार से आप हैं राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी और इनका पूरा परिवार। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से आप हैं पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय गौड़ और अपूर्वा। कुछ और दोस्तों को भी साथ ले लें। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, ऋतु सिंह, प्रीति सिंह, कृषभ सिंह, वेदा सिंह और आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, लव टो, लव दीवान, टोनी, राधे भाविक ढींगरा, पंचकुला। सेक्टर 11 से आप सेक्टर 9 से हैं और सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और इनके तमाम साथी हैं। हमारे ये साथी हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। और पद्मनाकिज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव और सोना यादव का कमेंट है। और कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य कमेंट करते हैं। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह धूलापुर मुरादाबाद से हैं। और आप हैं केवड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल धनवीर, सचिन अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उत्पर्ष शर्मा, भेदपाल गंगवार और बबलू गंगवार, साथ में संजीव गंगवार जी भी हैं। हमारे ये साथी हैं सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और इनके सभी साथी। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और इनका पूरा परिवार। और कमेंट करते हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। और लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह आप भी हमारे साथी हैं। काशी श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहित, मोहिनी और कोकोरानी। और बाबू भाई भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत मिथिला, गोपाल तंबोली, तिलक तंबोली उदयपुर राजस्थान से हैं। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी, शालिनी, तिवानशी, वाणी खेड़ा और इनका पूरा परिवार। और
आप हैं आकूट अकोला महाराष्ट्र से, राम राव नितोनेर शारदा सानिका और रिया, और कमेंट करते हैं मास्टर खिलू परवेज बेगम।

0: नाज नवाज शेख दानिश शेख अमन आफरीदी और इनके सभी साथी गंज डंडवारा यूपी से, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांबले, रेखा सांबले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारूबी और प्रणव सांबले का कमेंट मिला है। और कौन साथी हैं जी? बिल्कुल आपने योगी राज मस्के जी हैं और श्री हरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशाल, कुशल गोपाल, श्याम गोविंद मस्के और इनके सभी साथी गण कहाँ से हैं? गांव भिटोडा भोवर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से। और ये कमेंट हमें मिला है गोविंदपुरा शिखर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके सभी साथी, बड़िंगड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी हैं और आप हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, बांडी वाली फाजिलका पंजाब से। और राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य राज, प्रियंका, प्रिया भारती, प्रियंका भारती, प्रेरणा प्रगति और आशीष प्रिंस का कमेंट मिला है कुलीपाड़ा कटिहार से। और ये कमेंट कहाँ से मिला है? राय सिंह पाल, धर्मवीर भारती, जुगेंद्र यादव, रोमांश दिवाकर, महेंद्र पाल, अनुज और अनन्या पाल मिर्जापुर बरेली से कमेंट करते हैं। भोजपुरा तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जाबेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल्हना, जीनत जाबेद, नाहिदा रानी, आयत, सिकंदर अली, मोहम्मद इंतजार और उनके तमाम साथी। और सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके सभी साथी हैं। और आप हैं बरकत जमाली जी बलोच जफराबाद बलूचिस्तान से, उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कार्तिक और निर्भय गुप्ता का कमेंट मिला है। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म अमृत से ये गाना और बाकी एक एक कमेंट तो सबका शामिल होगा। आपसे हमारा यही है कहना कि बस एक बार कमेंट करें, बार बार नहीं। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में फिल्म अमृत का ये गीत आप सबके नाम जारी है।
1: दिल

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम की शुरुआत हुई 212 यानी 212 कमेंट के साथ। और इस समय हमारी स्क्रीन हमें बता रही है शगुन वाला नंबर है यानी 251, अब हो गए 252, 142 लाइक के साथ 2, 3, 4, 5 शेयर। चलिए धन्यवाद आपका। अगला गाना आपको सुनवा दे, एक जान है हम फिल्म का ये जो ट्रैक है वो शबीर कुमार और साथियों की आवाजों में आप सबने सुना चाहा है। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से। आप हैं रूपेश संघई, महेश प्रगेश, प्रीतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार। और अब बारी है आप सबको साथ लेने की। कौन कौन है? खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा हैं। और आप हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, अरब खुराना, एसके पप्पी, MLB रोड ग्वालियर से हैं। पोपट राव कुलथे हैं, हनुमंत और प्रतमेश कुलथे और इनके सभी साथी बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। और शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु अदनान और फैजान खान गंजनवरा से हैं। अमरावती महाराष्ट्र से शारदा वर्दे, सतीश वर्दे, रिशा और इनका पूरा परिवार है। और अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव शर्मा, विपिन गुप्ता, रजन रजक, लालू सोना मोना, हनी, यश और इनके मम्मी पापा शिवाजी चौक कटनी से हैं। कमेंट करते हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी और राखी तृप्ति जायसवाल नांदेड़ी तालार से। और बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी। आप हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान, ईदगाह जनूबी कस्बा भक्कड़, जिला भक्कड़ पंजाब से। और चतुपुर कुंदर की मुरादाबाद से एम मुनाजिर खान, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा गौसिया भी और इनके पूरा परिवार। और आप हैं प्रथम सलूजा, संगीता सलूजा, पारुल और अजय C2 जनकपुरी नई दिल्ली से। और कोई साथी हैं? और तो आप बिल्कुल हैं। ये कौन साथी हैं? आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, गांव कुमार, हेडा सहारनपुर से, रिंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके पूरा परिवार है, भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल,

अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल हैं। धमधा सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका और अंजलि जंगेल का पत्र कमेंट मिला है। ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और इनके तमाम साथी हैं। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, महेशपुर खेम मुरादाबाद से हैं। और कमेंट करते हैं अरुण शर्मा, रेणुका शर्मा और इनके सभी साथी विराटनगर नेपाल से, और कमेंट मिला है भारती नगर मुश्कीपुर खगड़िया से, विवेक रमण, अक्षित परिधि, विनीता, राजेश रमण, कैंडी, बाबूजी, बबीता, संजीव और रश्मि का। और आप हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताल, शाहीन, सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक। हमें कमेंट करते हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका अरब, वाणी और इनका पूरा मिस्किन परिवार। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी, फराज और इनका पूरा परिवार। और आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और इनके तमाम साथी, जकर खान, नजीम, सोहेब, जिक्रा नूर, सादी, फातिमा, आरिफ खान, कहाँ से, मोल्ला ख्वाजा नगर कुंदर की से। और आप रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनका पूरा परिवार। और सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से कमेंट करते हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, बंटी बबली वर्मा, बटेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। और ये कमेंट हमें मिला है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से, गंगाधर यमेकर, प्रमोद, प्रदीप यमेकर और इनका पूरा यमेकर परिवार। हमारे ये साथी हैं कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रुद्रा भाई, रुद्र, परिचय, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ऐशबाग लखनऊ, राजनगर कांति निकेतन से, और ऐशबाग लखनऊ से रानी, मुकेश, रश्मि, नीलम, कुसुम, रूपा और इनके तमाम हमनवा, नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम, कृष्णा नाम देववांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। और कमेंट करते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिनाश्चित और खुशी गोस्वामी। और ये कमेंट हमें मिला है बनबारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, श्याम और राम, रवि आर्यन और इनके साथी, चनोरा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ही। और कमेंट करते हैं इंदिराज ज्याणी, अंकुश ज्याणी, सिद्धू बाला सूरत राजस्थान से, सूरतगढ़ राजस्थान से। और आप हैं ग्राम अचानकपुर भाटापारा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, अशोक कुमार लहरे, रेणु लहरे, वणजीत और तनिषा लहरे। कोई और साथी हैं क्या? बिल्कुल हैं, बहुत सारे साथी हैं। माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलन कुमार साहू, प्रणय, रुद्रांश प्रताप साहू और इनका पूरा साहू परिवार। नागरकोरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्य साहू। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और इनका पूरा नायक परिवार। छत्तीसगढ़ से धमतरी के साथी हैं सौंगा के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार चंदन और इनके सभी साथी। हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी, हिना कौसर हैं। और आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कोणाल मेहरा और इनका पूरा परिवार। हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक और प्राची, तनु करमरकर विरडी मध्य प्रदेश से हैं। और आप हैं पांडर कवड़ा से अनिल बोरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बोरांडे, बलहरसा से प्राची लोंडे, सूरज लोंडे और एकलव्य लोंडे। हमारे ये जो साथी हैं वो डॉक्टर वनवारी लाल जयपाल, बेमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, गांव आरायन गंगानगर राजस्थान से। और शीशगढ़ बरेली से लियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम नदीम और असद बाबू हैं। हांडीखेड़ा सिरसा से आप हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा अंसारी, आयसा उमर और समीना अंसारी, गढ़ी कोटा पंचकूला हरियाणा से, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम जमदाड़े और इनके पूरे परिवारीजन। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खलना, चंचल, लाडू, लवली, रजत खन्ना, लवकुश खन्ना और इनका पूरा खन्ना परिवार। कमेंट करते हैं बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन, नीताम, कुसुम, नीताम और इनका पूरा परिवार। तहसील मिलक रामपुर एचोरा से सखाबत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन, तौफीक, मोहम्मद नवी, सुनील रस्तोगी, राहुल रस्तोगी, अर्जुन श्रीवास्तव और इनके सारे दोस्त हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद हैं। नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, नत्थू नन्हे, हिफजानूरी, सूरज मौर्य, जाहिद मुर्ग, जाहिद मुशर्रफ अंसारी और इनके सभी साथी। जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन, जगमोहन भुवनेश्वरी देवी लोहडडा बागपत से हैं और सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं वो एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से कमेंट करते हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का कमेंट है। चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन साहू, कुमारी साहू,
इंद्राणी माया।

और इनका पूरा परिवार। और सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात पूर्णा दे गांव से हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू और इनके पूरे परिवारीजन। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान है। और ये मैसेज तो हमने आपका पढ़ दिया, पहले आपने एक नाम भेजा, उसके बाद अब चार पांच नाम और बढ़ा के, इसीलिए तो कहते हैं एक बार में ही कमेंट कीजिएगा। सालार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मीराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और इनके तमाम साथी। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर मनोज भ्याण और इनके पूरा परिवार। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत, आप दादा बाबू रोड गिरडिये झारखंड से हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का कमेंट है। सुभाष गोदारा बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी, हीरावाली फाजिल का पंजाब से हैं। और ये कमेंट कहाँ से मिला है, फहुल्ला फरुखाबाद, साहबगंज चौराहा यूपी से, सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध, सलोनी संजू, लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा शिवानी चौरसिया, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता, सुमित, वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से सुजाता, पंकज, पीहू और दिया चौरसिया। और ये कमेंट मिला है किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और इनके सभी साथी। मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से आप नारायण खांडे, रजनी, तुषार और समीर खांडे का कमेंट है। और ये कमेंट तो शामिल कर चुके हैं हम। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। और कौन है, उच्चपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या, अनु गोस्वामी हैं। और आकूट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिया, के संजीव डावरा और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी। और कोई साथी हैं? बिल्कुल हैं, आप हैं। इस पर तो गाना प्ले करेंगे, चलिए ठीक है, आप सबके नाम करते हैं। फिल्म का नाम तो हमने बताया, एक जान है हम, गाना है ये, लीजिए सुनिए।

दोस्तों, इस समय आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं आपकी पसंद। सच मानिए, आपकी पसंद पे जितने भी कमेंट हमें मिलेंगे, प्रत्येक श्रोता का एक कमेंट जरूर शामिल होगा, गारंटी है ना। तो आप कमेंट करते रहिए। 260-62 के आसपास हुए हैं, 212 से तो शुरुआत ही की थी कार्यक्रम की हमने आपको। लेकिन आपको बता दें, अब जो अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म घुंघरू से है, साधना सरगम और मनोहर उदास की आवाजें हैं। गीत को पसंद करने वाले आप सभी साथी हैं, आप हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या इंदिरा कॉटेज तलीताल नैनीताल से। अब इसी गाने में शामिल करते हैं आप सबको। आप हैं जाकोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनका पूरा परिवार। हमारे कुछ और साथी हैं शंकरपुर पोस्ट और सावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी यादव, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सुरक्ष यादव और इनका पूरा यादव परिवार। नाज रेडियो क्लब परेली से निसार अहमद अंसारी, मेहजबी निसार, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, वसीम और पप्पू भाई अंसारी। और हमारे ये साथी हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर, चरौता बाजार नवापारा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, उनहल उज्जैन मध्य प्रदेश से, भैरूलाल बख्तरिया, धाकड़ भोला बख्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक बख्तरिया जी, नंद किशोर घटे, साक्षी घटे, संगीता घटे, जयश्री मेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टपूल, पीपी कुलथे। आप बीड शहर महाराष्ट्र से हैं और आप हैं नानाजी लाम से, मीना तेजस और जय लाम से, हर्षिता लाम से, कहाँ से, बेरडी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। और ग्राम पंचायत करेली से मेहजबी अंसारी का भी मैसेज है। और आप हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम सुभाष, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव, जालना शहर से। और नेहरू चौक पैंठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव और सिया जाधव। कमेंट करते हैं मौली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और हमारे ये साथी देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, कनूला रजक, मुरली क्षत्रिय और इनके सभी साथी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से हैं, रजाक मोहम्मद और इनके साथ शमीम बेगम, इमरान शेख और इमरान खान हैं, साथ में इरफान खान जी। आप हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं, किदवई नगर सिरपुरा टाउन से जुबैर अली खान सभी, अंजुमन महाराजा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी हैं, सैयद यूनुस, सैयद नोमने, नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। आप जालना मराठवाड़ा आष्टी से हैं, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और इनको बुरा सागुते परिवार। हमें कमेंट किया है आपने भी, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार और मोहम्मद यासीन हासमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और तैमूर हासमी नई बस्ती गंज डंडवारा से हैं, जावेद इनायत और यूसुफ इनायत हमें कमेंट करते हैं लेसिस्टर इंग्लैंड से, और सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष का कमेंट है। और बीडी कॉलोनी करकेना बरेली से पनीलाल सागर, बेनी सिंह, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्या, रचना ओमवती भारती, कनक शगुन, सारांश, आयांश, आदित्य वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का भी कमेंट मिला है। और आप हैं यवतमाल विदर्भ से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, और कमेंट करते हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल, मनीष शर्मा और इनके पूरा परिवार, गौतम, ऋषि मौर्य, मनोहर लाल, मिहिलाल, प्रीति रानी, रीना मौर्य, सुनीता मौर्य और राम प्यारी कर्मचारी नगर रोड बरेली से, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल का कमेंट मिला है। ढापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदरकर, सदानंद मंदरकर, कुमार गौरव मंदरकर और इनका पूरा परिवार। और आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गोलबालोत आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई बंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा मालवीय परिवार, और सूफिया नजमीन, रुकाया, जाफर आफरीन, माहे आरजू और इनका पूरा परिवार है। अररिया बिहार से अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, जावेद अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्ताना अंसारी, सुराज अंसारी और इनके परिवारीजन हैं। उरेटा, डोडी, लोहारा,

रोड से देवर शंकर तमुरिया, प्रभा देवी, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, मास्टर अलकबीर और इनके तमाम साथी, मदरसा गेट भावपूर्ण मरिया हूँ, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेरी, बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरिया परवीन, आफिया परवीन और हमारे ये जो साथी हैं मुकेश कासलेकर, राजेश सोनी, बाबा साहेब बड़ोदे, तहसील बरूड, अमरावती महाराष्ट्र से हैं और आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ भाई, आशिक हुसैन और इनके तमाम समनवा और गांव व डाकघर निम्नवास जिली जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जी और इनके सभी साथी हैं। हमारे ये जो कौन साथी हैं, अनिल गौरव, कविता, मानसी अरोरा, गांधी रोड नई दिल्ली मोतीनगर एरिया से हैं और गौरव मदान जी हैं। बाकी सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन एलिए, नवदीप विश्वदीप और अवंतिका एलिए का ये कमेंट मिला है। छबीरपुर गुन्नौर से हरवेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश और गायत्री कश्यप हैं और हमारे ये साथी हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन जी, ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और इनके तमाम साथी, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जजोरिया और गुड्डू का कमेंट है। ओखला बिहार दिल्ली से ये हैं रणधीर गुप्ता, आपके तो कमेंट पढ़ चुके हैं हम, हाँ, मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, ग्राम करेली बरेली से हैं और आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, बोरसरा नाला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबलू और प्रियांशु साहू, बाबूदीन जी हैं मेरठ कैंट से और हमारे ये साथी हैं, ये तो भैया बार बार कमेंट हमारी नजरों में आ जाते हैं इसलिए हम ना पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री और यह कमेंट मिला है, बोला ट्रेन चल रही है। चलिए चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत से खरगोन के साथी हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवदित, वैभव पाल, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान व इनके सभी साथी, लेचनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीमालाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी, सोहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी और हमारे ये साथी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष मौर्य और दिनेश हैं साथ में और नवागांव मुढ़िया पार राजनांदगांव से सोहनलाल, रुक्मणी साहू, तेजेश्वर, कुशाल साहू और इनका पूरा परिवार, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू जी भी हैं और आप हैं नजमुल होदा, एस एम जावेद, गुमला झारखंड से विनेश कुमार श्रीवास्तव, राजनीश श्रीवास्तव और मुस्कान बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से हैं। कमेंट करते हैं हितेंद्र दास जी कहां से, आसाम से, चलिए धन्यवाद आपका भी। और ये कमेंट मिला है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बमलेश पवार, डैनी पवार, मनीष, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल जी हैं और कोई साथी बिल्कुल हैं, जगदीश धाकड़, नाइमा, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, रहिंगड़ी, आलोट, रतलाम, मध्य प्रदेश से, आपको तो हमने शामिल कर लिया है ना, बार बार कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। मौलागढ़ नई बस्ती से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनका पूरा परिवार, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और पूरा राठौर परिवार है, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी व्यामिका, वाणी थांडी कहां से हैं, टोरोवाल, नवाशहर, पंजाब से और मोहल्ला बारादरी, महमूद खान, रामपुर से रफत भाई, सईद मंसूरी, राशिद, असद फिरोजा, मुस्कान और नगमा नाज का ये कमेंट हमें मिला है। आप हैं आलूट रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विशाल सिंह और इनको पूरा परिवार। कमेंट करते हैं कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, दरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, काशिफ मीना और इनको पूरा परिवार। लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल हैं और कमेंट करते हैं कुष्ठ बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुड़े, योगिता प्रयाली, पार्थ हागुड़े और पूरा हागुड़े परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम और गांधी बाग अकुला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर और माया देवी, रितिक, आदित्य और अजीत कसाना जी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से। ये कमेंट हमें कहां से मिला है, ये तो भैया सबके शामिल हो गए, यहां तक तो हमने 268 कमेंट पढ़ दिया। चलिए गाना प्ले कर देते हैं और बाकी और दोस्तों से कहेंगे जिन्होंने अभी तक कमेंट ना किए हैं वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कम पड़ गए।

जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है कि 45 मिनट में आपके सारे कमेंट पूरे हो जाते हैं, फिर हम तरसते रह जाते हैं कि भाई और कमेंट मिले कि नहीं और दोस्तों के। खैर कोई बात नहीं, आपके कमेंट मिलेंगे तो ज़रूर शामिल किए जाएंगे, लेकिन एक बार ही कमेंट करना है, बार बार नहीं। अगर आप बार बार करेंगे तो भैया ये हमारे उन दोस्तों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो बड़ी शिद्दत और मोहब्बत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और एक बार ही कमेंट करते हैं, है ना। तो कुछ एक दोस्त हैं, नज़रों के सामने आ जाते हैं कौन कौन दोस्त हैं कि जो बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमको पूरी कोशिश करते हैं फिल्टर करने की, लेकिन फिर भी कोशिश तो हमारी ओर से पूरी रहती है, एक बार ही कमेंट शामिल होगा, बार बार नहीं। अगला गाना आपको सुनवा दें, फिल्म का नाम है साजन की बाहों में, और साजन की बाहों का ये जो गाना है इसलिए हमने सुना है क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में प्ले करना है। तो साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया है नदीम शवन ने, और इस गीत को जो दोस्त सुनना चाहते हैं वो चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन शालू गौतम और इनका पूरा परिवार है, कस्बा उगैती से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डी के और इनके परिवार के सभी साथी हैं, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी हैं, और दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, गेंदू भाई और इनके तमाम साथी आप हैं, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलेजा नायाब और लड्डू। आपको बता दें कि इस 10:58 तक भी आपका कमेंट मिलेगा, और वो अगर शामिल नहीं हुआ है तो सच मानिए शामिल किया जाएगा। हाँ चलो 279 कमेंट हो चुके हैं कार्यक्रम में, प्ले करते हैं फिल्म साजन की बाहों में से ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, चलते चलते कुछ और दोस्तों के ये कमेंट हमें मिले हैं, तो आपको भी शामिल कर ले रहे हैं। आप हैं कस्बा शीशगढ़, तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, अरहम बाबू, किशवनूर और इनका पूरा परिवार। और आप हैं मोहम्मद फैज़, मोहम्मद अर्श, अरशान, अलशिफा भी, शोएब अमीर और इनके सभी साथी, एचोरा मिलक रामपुर से। तो सुनते रहिए, और बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने में।

और अब दोस्तों हमें भी चलना पड़ेगा, वक्त हुआ पूरा आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम का। 281 यानी 281 कमेंट के साथ आपने कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया, बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के बारे में आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए, व्हाट्सएप कीजिए 9457395859 पर, ईमेल कर सकते हैं आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com पर। फिलहाल आप सबके सुख की कामना करते हैं, अब चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए, आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने SINE पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपके आवाज में वो दम, जो क्रिएटिविटी, जो रेडियो पर चला सके अपने जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और यवाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के लिए आधार पर कार्य करने के लिए आपको आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युवाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों, ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आप किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम पे हमारे आकाशवाणी बरेली के केंद्र पर आकर आवेदन पत्र ले सकते हैं, और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2026 है। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। श्रोताओं, इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी FM 100.4 MHz और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR तथा ऑफिशियल ऐप वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं अब सबरंग के आखिर में, क्षमा कीजिए, सबरंग के आरंभ में लीजिए, सुनिए हंसराज रघुवंशी के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली से समय आप सब रंग सुन रहे हैं। आइए एक पंजाबी गीत आपको सुनवाते हैं जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजों में।

दोस्तों, अभी आपने एक ट्रैक सुना हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाज़ों में। अगला ट्रैक आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, एल्बम का नाम मेरे महबूब।

दोस्तों, प्रकाश गांधी और नीता नायक की आवाजों से सजा हुआ ये राजस्थानी गीत आप सबकी नजर, और ये है आज के सब रंग की आखिरी पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
7: बिल्कुल, आप सुरों का लखनवी एहसास सुन रहे हैं और ये सुर आपको आपके संदेशों के साथ ऑन एयर हो रहे हैं। आज आप तक आपके संदेश आपके रेडियो सेट पर अपनी आवाज में अपने संदेशों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम चल रहा है और एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ी हैं और देखते हैं कि क्या है उनका संदेश। हेलो,
8: हेलो, गुड मॉर्निंग चंद्रकला मैम जी, कैसी हैं आप?
7: गुड मॉर्निंग, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
8: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके तो बहुत ज्यादा ही अच्छी हो गई हूँ।
7: अरे वाह, आप अपना नाम भी हमें हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
8: जी बिल्कुल बताएंगे, मेरा नाम है रोशनी और ग्राम पोस्ट बमना तहसील सरीपुर जिला उन्नाव
7: जी
8: से सुन रही हूँ।
7: ओके, और क्या है आज आपका संदेश?
8: मेरा बहुत छोटा सा ही है संदेश
7: जी,
8: कि अपना ख्याल रखने के लिए जैसे अभी मौसम बिल्कुल चेंज हुआ है
7: जी,
8: तो अपना इस समय बहुत ज्यादा ही ध्यान रखने, क्योंकि वायरल चल रहा है जो सर्दी जुकाम,

0: खाते, तो
1: जी
0: ये इसलिए चल रहा है, एक तो वायरल है, और
1: जी
0: दूसरा हमारी कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो हम इनसे नहीं कर रहे हैं। एक
1: जी
0: ठंडा पानी जो हम पी लेते हैं, अचानक से गर्मी हुई पानी पी लिया और
1: जी
0: वो ठंडा गर्म करके ही हो रहा है। तो
1: जी
0: मेरे श्रोताओं से यही कहना है कि थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें
1: जी
0: और अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही
1: जी और
0: संदेश है।
1: कोई संदेश आपका?
0: और दूसरा संदेश मेरा ये रहेगा कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है,
1: अच्छा
0: तो उसकी सबसे पहले सभी को बधाई, सारे श्रोताओं को, आपको,
1: जी
0: और जो अभी मूर्तियां लाई जाएंगी तो उसका जो विसर्जन होगा तो
1: जी
0: वो इधर मान लो या कभी पानी इधर ना फेंके, वो
1: जी
0: जाके उसका सुरक्षित से विसर्जन करें, जैसे
1: जी
0: कहीं माटी में गड्ढा खोद के फिर वहां पे विसर्जन करें। क्योंकि
1: जी
0: जहाँ हम देखते हैं ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि लोग पहले तो बप्पा को इतने मतलब उत्साह के साथ ले आते हैं घर में, बढ़िया से धूमधाम से पूजा करते हैं, लेकिन जब विसर्जन का टाइम आता है तो ऐसे ही जाके कहीं नदियों में नालियों में ऐसे फेंक देते हैं, तो
1: जी
0: ऐसा अपमान ना करें।
1: जी चलिए, बहुत बहुत
0: और कहीं
1: शुक्रिया
0: अभी
1: आपका, आपका संदेश बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सरोजनी जी।
0: मैं रौशनी रावत बात कर रही हूँ, और हमारे साथ अभी सरोजनी दीदी सुन रही हैं आपको, नीलू शर्मा दीदी, गुलप्ता दीदी, बबीता राव जी, साहिबा जी, साजिया जी,
1: आप सभी
0: और सब
1: कॉल पे
0: कुछ
1: हैं क्या एक साथ?
0: कॉल पे सब लोग नहीं है।
1: नहीं, मतलब मुझे लगा कि सरोजनी जी ने हमसे बात की थी।
0: ठीक है, आपसे सरोजनी दीदी ने की बात की थी,
1: जी
0: मैं लाइन पे हूँ।
1: ओके ओके, चलिए चलिए ठीक है, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा,
1: जी
0: थैंक यू। महेंद्र भैया
1: ओके
0: ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे
1: ओके
0: हैं
1: जी
0: पर
1: ओके, थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स भी हमारे पास ढेर सारे हैं, और मेल्स हमारे पास ढेर सारे इसलिए हैं क्योंकि आपके संदेश हैं, और इसलिए उन संदेशों को पढ़ना ज़रूरी है। पता है, संदेश बोलते बोलते ना मुझे संदेश याद आती है और भूख लगने लगती है। बाबू अंसारी जी का मेल हमारे पास है, गुड मॉर्निंग लिखा है, और लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। संदेश इनका ये है कि घर संभालने वाली माँ की मेहनत अक्सर नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसी की मेहनत से घर में सुख, शांति और अपनापन बना रहता है। उसके प्यार और त्याग की हमेशा आपको कद्र करनी चाहिए। बाबू अंसारी जी, आपने बाराबंकी से ये संदेश हमें पहुंचाया है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा संदेश है आपका। हमें कोई वक्त या कोई ओकेजन या कोई डे नहीं देखना चाहिए जब मम्मी को थैंक यू बोल सकें, माँ को जब थैंक यू बोल सकें। माँ के लिए हर दिन होना चाहिए, जब आपको जैसे मौका मिले माँ की मदद करनी चाहिए, माँ से प्यार से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको बोलना भी चाहिए बार बार कि आप सुंदर हैं, अच्छी हैं, प्यारी हैं, सबसे बेस्ट हैं, और थैंक यू कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल का, आपके संदेश का। वकील अहमद जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगी। संदेश ये है कि बारिश में बच्चों को नदी तालाब के पास न जाने दें, कोई हादसा न हो, इन्होंने लिखा है ऐसा। आपने हमें सीतापुर से लिखा है जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए, और आपके संदेशों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा यूं ही, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस ये रहा आपके रेडियो सेट पर अगला ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: ग्यारह बजकर के 43 मिनट हो गए हैं और आपकी मेल्स का सिलसिला जारी है। नागेश कुमार जी का मेल आया है हमारे पास और इन्होंने लिखा है कि बहुत फोन मिलाते हैं ये हमारे स्टूडियो पर, लेकिन कॉल नहीं लगता है आपका। नागेश जी, आपने ये तो लिख दिया लेकिन आप इसी के साथ संदेश लिख देते अगर आपने कॉल ट्राई किया था और फोन नहीं लगा, तो उसके लिए हमें बहुत खेद है। हम इतना ही

कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ कॉल ट्राई करने लगते हैं और कॉल्स जो है वो इंगेज हो जाती हैं, नेटवर्क बिजी हो जाता है, इस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। और बाकी आप संदेश अपना मैसेज के माध्यम भी से भी पहुंचा सकते हैं नागेश कुमार जी हम तक, और आपका स्वागत है। आप हमें मेल में लिख भेजें। रिंकी पिंकी जी का भी मेल है, इन्होंने लिखा है कि ओके, इन्होंने लगा है कि इनका भी फोन बहुत मुश्किल से लग रहा है, कॉल कैसे लग रही है, कॉल कट जा रही है, कुछ इनको भी दिक्कत आ रही है। तो रिंकी पिंकी जी आप भी मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर कॉल नहीं कनेक्ट होती है, ज़रूरी नहीं है हर बार कॉल कनेक्ट हो, कई बार कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है या नहीं लगती है, इंगेज आती है, सभी ट्राई करते हैं। अगला मेल हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी के हैंडल से आया है, और इन्होंने लिखा है, अच्छा पिंकू सोनी जी ने लिखा है टिकैत नगर से, और आपने हमें लिखा है संदेश कि कुछ लोग नशा कर लेते हैं और उसके बाद वो अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा होश में नहीं रहते हैं। तो बाकी जो मासूम लोग होते हैं, आसपास रहने वाले सामान्य लोग होते हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके का कुछ भी सेवन करते हैं तो अपने घर पे सेवन करें, बिल्कुल सही बात है। ये संदेश भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके के मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने घर में रहें, अपने साथी, अपने लोगों के बीच उनके निगरानी में करें, ऐसे समाज में बाहर निकलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाने, दूसरों के लिए अव्यवस्था करना अच्छी बात नहीं है। मुनेश कुमार जी का भी हम तक संदेश पहुंच चुका है, इन्होंने लिखा है बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है, सावधानी बरतें, एक छोटा सा संदेश है इनका, और इन्होंने इस संदेश के साथ अपने कई साथियों के नाम ऐड किए हैं, सतीश कुमार, कन्हैया लाल, सुनील कुमार, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जी। छबीराम सिंह जी का मेल हमारे पास है, और इन्होंने फरुखाबाद से मेल किया है। छबीराम सिंह जी, मेरा नाम चंद्रकला है, कृपया यही नाम लिखें, और बाकी अन्य किसी नाम को आप मत लीजिए, मत लिखिए, कोई निकनेम आप ना दीजिए, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशनल नाम है और हम इसी के साथ जाने जाते हैं। इन्होंने लिखा है संदेश आपका यही है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति हम लोग दिखाते हैं, लेकिन देशभक्ति दिखाने का जो मौका होता है हमारे पास 365 दिन तक होता है, हर दिन आप देशभक्ति दिखाइए, और हर दिन बड़ी देशभक्ति होनी चाहिए, चाहे किसी भी बारे में हो, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए बिजली बचानी हो, अपने देश की धरोहरों को सुरक्षित रखना हो, सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रखना हो, उस सब में योगदान दीजिए, अपने देश के लिए योगदान दीजिए छोटा छोटा। आपका संदेश बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आपके संदेश के लिए बहुत शुक्रिया। और इन्हीं संदेशों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आपकी कॉल या मैसेज जो भी हमारे पास आएगा, हम इस खूबसूरत गाने के बाद आपके रेडियो सेट पर ड्रॉप करेंगे।

11:53 हो गए हैं और आपके जो संदेश हैं वो हमारे पास हैं अभी भी। और इन्होंने लिखा हैदराबाद तेलंगाना से हमें, मुजम्मिल से शेख हैं, और इन्होंने लिखा है कि सिस्टर अब रिश्ते की ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा रिश्ते भी ज़रूरत के हिसाब से निभाए जाते हैं, लोग दिल से नहीं मतलब से पाए जाते हैं। क्या बात है, यहाँ पर खुद को बदलने की हिम्मत किसी में कहाँ है। इन्होंने लिखा है आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं बताइए, इन्होंने लिखा हैं आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और थोड़ा सा जो है आपने प्रैक्टिकल बात लिखी है, बाकी बात आपकी सही है। तो मतलब आप खुद को ऐसा बनाइए कि लोग अगर आपका फायदा भी उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छे बनिए, आप किसी के काम आ सकें, ऐसी पर्सनालिटी बनिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लोगों को भी समझने की कोशिश करिए। देखिए प्रैक्टिकल होना भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है अपने।

उद्देश्य को पाने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना भी अच्छी बात है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का मेल हमारे पास है। अच्छा, इन्होंने हैंडल सरोजनी राजपूत जी ने मेल किया है, किसी कारणवश मैं आपसे बात नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, आपका कॉल कनेक्ट हुआ था हमें और आपके बहुत अच्छे अच्छे संदेश आए सभी श्रोताओं के हम तक और कॉल्स के माध्यम से भी आए और कॉल भी हमारी कनेक्ट हो रही थी। इन्हीं सारी बातों के साथ अब तो संदेश हमारे हैं नहीं, कोई श्रोता हमारे छूटे नहीं। आज बहुत सारे संदेश थे और जिनके रिपीटेड मेल्स थे हमने उनको शामिल नहीं किया है। ये हमारी पॉलिसी है और इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि एक मेल अगर आपने एक बार कर दी है तो बार बार ना करें। इन्हीं बातों के साथ अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और जितना आपको जो भी आपको पसंद हो वो करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छे बने रहिए। मैं यानी कि आपकी दोस्त चंद्रकला आपसे लेती हूँ विदा। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, लेकिन अगली खूबसूरत आवाज़ आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। तो कौन है वो आवाज़, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा 107.7 FM रेनबो। बाय, मैं आपसे कहती हूँ फिर से बाय, टेक केयर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने आधिकारिक पात्रवादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की। मेरी जनता से यह अपील है कि उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वह अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आकर करवा सकते हैं। न उनसे हम कोई अतिरिक्त शुल्क लेंगे, और यदि पहले से उनकी कोई दीवानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है। प्रदेश को अधिक सुरक्षा और अपराध रोधी राज्य बनाने की दिशा में 18 सितंबर को प्रदेश की 34 जिलों की 157 तहसीलों में राज्यव्यापी मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें भूकंप, रासायनिक रिसाव और आग जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को वास्तविक परिस्थितियों के करीब जाकर परखा जाएगा। इस दौरान खोज एवं बचाव, सुरक्षित निकासी, चिकित्सा सहायता, राहत तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। शासन के आदेश तक अब हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञानों में विषयों में स्कूल स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर इन दोनों विषयों में अब 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ये परीक्षा बोर्ड की ओर से अलग से आयोजित की जाएगी। जारी एक बयान में बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के जिन छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत अभी तक अपना पंजीकरण और आधार सत्यापन नहीं कराया है, वे समय से पहले रहते प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। छात्राएं 13 सितंबर 2026 स्थान परीक्षा भवन लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अपर आईडी, स्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका, निवास एवं आय प्रमाण पत्र जमा कर प्रक्रिया सुनिश्चित करें ताकि योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। प्रदेश में उन्नत स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने हेतु दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संचालित नंद बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रचार प्रसार तथा प्रदेश के डेयरी सेक्टर में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में मंडलावार डेयरी कॉन्क्लेव कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज झांसी, चित्रकूट एवं कानपुर मंडल में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th एडिशन,
6: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
5: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।

नई उम्मीद, नई खुशियों और नई चुनौतियों के साथ आता है। तो बस ऐसे ही एक नए दिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर, और आपकी दोस्त जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। भाई 12:09 का वक्त हो चला है, और ये जो वक्त है वो जितनी भी अपनी लेडीज लोग हैं ना, उनके लिए फिक्स हो जाता है। यूजुअली यही होता है कि इसमें हम वो सारी बातें करते हैं जो हमारी बहनों के साथ, हमारी जितनी भी फीमेल्स इस वक्त हमें सुन रही होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और आज यानी फ्राइडे को तो स्पेशल सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका नाम है स्वयं सिद्धा, जहाँ हम बात करते हैं उन सशक्त महिलाओं की जिन्होंने खुद के लिए तो कुछ बेहतर किया ही बल्कि समाज में लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी है। वैसे आज के समय में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो समाज में जो महिलाएं हैं उनकी हम इम्प्रूवमेंट का, उनके डेवलपमेंट का अंदाज़ा इस बात से बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि उस किसी भी समाज की महिलाएं कितनी सशक्त हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना अपने डिसीजंस को लेने के लिए काबिल हैं। और जब आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ उपलब्धियां हासिल नहीं कर रही बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते भी तैयार कर रही हैं, नए रास्ते खोल रही हैं। उनकी सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि समाज की उस सोच में एक बदलाव की कहानी है, एक नींव है जो आगे चलकर बहुत कुछ शायद बेहतर करेगी। तो चलिए ऐसी ही महिलाओं पर बेस्ड होता है हमारा आज का ये स्वयं सिद्धा। ऐसी बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो किसी खुद के इंसान के लिए तो है ही है बल्कि जो भी सुनता है, जो उनकी कहानियों को पढ़ता है, जो उनको जानता है, उनके लिए भी कुछ बेहतर जिंदगी में जरूर होता जाता है। तो चलिए अगला गाना फिलहाल हम आपको तक पहुँचाएंगे और उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे कि आज स्वयं सिद्धा में हम किस तरह कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में मोटिवेटेड हों और साथ ही आस पास के अपने घर की आने वाली में जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी मोटिवेट करें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी हाँ, इसी चुनर को सर पे रखने से लेकर सर पे रखने के साथ साथ आसमान में उड़ने तक का सफर तय किया है आज की महिलाओं ने। और इन्हीं महिलाओं पर बेस्ड होता है हमारा फ्राइडे का स्पेशल क्षेत्रोपा, जिसमें हम स्वयं सिद्धा की बात करते हैं और कुछ ऐसी महिला की बात करते हैं, कुछ ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़े एग्जाम्पल पेश किए होते हैं। और आज जिस हम चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जिस चीज़ को हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिस चीज़ के थ्रू महिलाओं ने एक बहुत बड़ा आसमान का सफ़र तय किया है, बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त किया है, वो है साहित्य। जी हाँ, लिटरेचर, लिखना, पढ़ना, समझना, जो जहन में चल रहा है उसको कहीं पर उकेर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही एक प्रोफेशन होता है साहित्य। हम बात करें साहित्य तो सिर्फ शब्दों को पन्नों पर उतारने का नाम नहीं होता है, बल्कि अपने समय की आवाज़ बनने का नाम है। और जब हम साहित्य की दुनिया में महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो हमारे समाज में हमारे सामने ऐसी बहुत सारी लेखिकाएं हैं जो पूरी परंपरा के साथ दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी कलम से समाज, रिश्तों, स्त्री जीवन और मानवीय संवेदनाओं को एक नई भाषा और साथ ही परिभाषा भी दी। और इन महिलाओं ने खासकर ये साबित किया कि कलम हाथ में हो तो सिर्फ कहानी नहीं लिखती, वो सोच बदल सकती हैं, वो सवाल उठा सकती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ते बना सकती हैं। और अगर हम ऐसी ही लेखिकाओं की बात करें तो उन्हीं में से एक महान लेखिका रही हैं महादेवी वर्मा जी, जिनकी आज है पुण्यतिथि। और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना, यानी उनकी लेखनी को याद करना, जिसने संवेदना, करुणा, नारी चेतना और मानवीय मूल्यों को बेहद खूबसूरती से शब्द दिए थे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं महादेवी जी की तो हम जानते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक रही हैं। उनकी आवाज़, उनकी पहचान सिर्फ कलम थी नहीं, उन्होंने बल्कि अपनी कलम से समाज सुधार के रूप में एक बहुत बड़ा काम किया। शिक्षाविद तो रही, लेखिका और समाज सुधारक भी रही थी। उन्होंने अपने साहित्य के जरिए स्त्री के अनुभवों और उनकी स्वतंत्र पहचान को एक मजबूत आवाज दी थी। और शायद यही साहित्य की सबसे बड़ी ताकत होती है कि कलम वक्त के साथ तो चलती है, साथ ही साथ आने वाले भविष्य की जो दिशा है और दशा, सब चीज बदलने की ताकत भी रखती है। तो चलिए, महादेवी वर्मा जी के बारे में हम कुछ और भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत अच्छा सोच सकती हैं, आपके जहन में बहुत सारे विचार चलते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अगर आपने पन्ने पर उकेर दी, पन्ने पर लिख दिया उनको, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए समाज के लिए भी, आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, तो ज़रूर आप उस चीज़ को करिए। और कैसे कर सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो अगला गाना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।
1: ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद फिफ्थ एडिशन,
2: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
1: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
3: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
4: शुरू का लखनवी एहसास।

जी हाँ दोस्तों, वक्त का अंदाजा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। 12:33 का वक्त हो चला है ऑलमोस्ट। देखिए हमारे पास आधा घंटा जो था वो निकल चुका है। और आज के प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हम बात कर रहे हैं कि साहित्य जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रोफेशन है, या कह सकते हैं ना इसको कलम की ताकत, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और जब हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कलम से सिर्फ साहित्य को समृद्ध नहीं किया था, बल्कि ये भी दिखाया कि एक महिला की सोच, संवेदना और सकारात्मकता, उसकी रचनात्मकता सबसे बड़ी ताकत किसी भी महिला के लिए बन सकती है। उसकी लेखनी ने स्त्री मन की भावनाओं को आवाज़ दी थी। और ख़ासकर जब हम महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जहां पर उन्होंने स्त्री मन को छुआ था। साहित्य में महिलाओं को उन्होंने एक मजबूती प्रदान की। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने

लिखना शुरू कर दिया था। और आज भी अगर आप देखें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत खूबसूरती से चीज़ों को आसपास की महसूस करते हैं, समझते हैं और अपने विचारों को शब्दों में ढालने का हुनर रखते हैं। बस ज़रूरत होती है कि बस वो काम कर जाने की, कि एक आप कलम उठाइए, एक कॉपी लीजिए या एक पेपर लीजिए और उस पर लिखना जो भी आपके जहन में चल रहा है उसको शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम सब देखते हैं कि ये जो लेखन का कार्य है ना, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है। कहानी, कविता, उपन्यास, साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, पत्रकारिता, ब्लॉगिंग, डिजिटल कंटेंट और क्रिएटिव राइटिंग जैसे बहुत सारे रास्ते हैं जो इसके साथ साथ खुलते जा रहे हैं। तो मतलब एक ज़माना हुआ करता था ना, सिर्फ जब लिखा तो किताबें ही छपती थी, उसके लिए पब्लिशर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको पार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो शायद घर बैठे आपको बहुत सारे तरीके बता दें और बहुत सारी आगे की जो राहें हैं उनको आसान कर दें। तो बस कोशिश करिएगा, अगर आपके भी अंदर शब्दों को महसूस करने की ताकत है तो उसको ज़रूर कहीं ना कहीं लिखना शुरू कर दीजिए। और आगे हम आपको ऐसी ही बातचीत करवाने वाले हैं एक साहित्यकार से जिन्होंने बहुत पहले से लिखना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख डाली और किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्या क्या चीज़ें उनको साहित्य से मिली, क्या क्या आपको मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन अगले गाने के बाद। तो बस ये देखिए, उड़ी रे आपके रेडियो सेट पर आ जा रहा है। यस, जैसे जिया रे इसमें अनुष्का शर्मा ने किया ना, मुझे लगता है वो बुलंदी, वो हवाओं को छूना, हवाओं से बात करना और ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीना हर किसी महिला को आना चाहिए। तो बस एंजॉय करिए इस गाने को, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, नीति मोहन की खूबसूरत आवाज थी आप सभी के रेडियो सेट पर। इसी के साथ देख लीजिए स्टूडियो की जो क्लॉक है इतनी तेजी से भाग रही है, 12:40 का वक्त दिखा रही है और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा स्वयं सिद्धा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गाने के बाद हम आपसे बात करवाएंगे एक ऐसी महिला की, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साहित्य को अपना हथियार बनाया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कहते ना जो भी जहन में थॉट्स चल रहे होते हैं उनको पन्नों पे उकेरा और वो बहुत सारे के लिए प्रेरणा भी बनी। जी हाँ, आइए स्वागत करते हैं शहर की जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर करुणा पांडे जी का। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद, सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन वंदन
0: जी। और करुणा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ और साथ ही साथ हमारे जितने भी लिसनर्स के साथ आप जुड़ रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ करुणा जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो अभी महिलाएं शायद इस वक्त हमें सुन रही हों, उनके लिए आपको क्या लगता है कि ये जो साहित्य है एज अ करियर, ये कैसा होता है और किस तरह जो जहन में हमारे चल रहा होता है हम उसको पन्नों पर कैसे लिख सकते हैं, कैसे संजो सकते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और आज के युग का ये मैं तो कहती हूँ सबसे ज्वलंत विषय है। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग महादेवी वर्मा जी को याद करते हैं। आज उनकी आज के दिन कवित्री जी
0: पुण्यतिथि है,
1: पुण्यतिथि है इनके। चित्रकार सबसे पहले इन्होंने रेखा चित्र जो लिखा है गुल्लू, हाँ, वो एक बहुत ही पठनीय भी है और अनुकरणीय भी है। और उस रेखा चित्र में उनके जो भाव है, संवेदनाएं हैं, वो जिस तरीके से सामने आती है तो उनका पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उनको हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण बहुत सारी चीजों से उनको नवाजा गया है
0: जी।
1: और आज हम उनको नमन करते हैं और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं।
0: बिल्कुल, और जैसे कि करुणा जी हमने कहा था कि हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स में खासकर जो महिलाएं हमें इस वक्त सुन रही हैं उनको बताएं कि एज अ प्रोफेशन या एज अ करियर या लिखना, हम नॉर्मल भी अगर देखें हम उसको बहुत ज्यादा करियर के उसमें ना ले जाएं, तो लिखना कैसा है, एक इंसान के लिए लिखना कितना जरूरी हो जाता है?
1: हाँ देखिए, ऐसा होता है कि ये मतलब एक कैरियर के रूप में नहीं, बल्कि मैं सोचती हूँ कि लेखन जो है बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने का एक जरिया होता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें खासतौर से स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए हम देखते हैं तो कई जगह वो बहुत कुछ अनुभव करती हैं
0: जी।
1: लेकिन होता क्या है कि उनकी बात को मतलब उनको दबा दिया जाता है और वो जो उनकी बात होती है, उनके जो भाव होते हैं वो कागज पर तो छोड़ दीजिए, समाज में भी नहीं आ पाते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से मैं देखती हूँ जो साहित्य है वो महिलाओं को एक कहने का, अपनी बात को, अपने अनुभवों को, अपनी व्यथाओं को कहने का मंच देता है। क्योंकि जिस अनुभव को समाज कहता है कि आपका निजी है, साहित्य उससे सामाजिक विमर्श का विषय भी बना देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन सिर्फ जो महिला पत्र लेखिका हैं उनके उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में जो भी महसूस करते हैं, क्योंकि संवेदना जिसमें होती है वही महसूस करता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है,
0: और महिलाओं के लिए बिल्कुल कहा जाता है कि संवेदनाएं ऊपर वाले ने बहुत कूट कूट कर भरी, नवाजा है उनको संवेदनाओं से।
1: बिल्कुल संवेदनाओं से भरे थे, क्योंकि उन्हें कई रोल निभाने पड़ते हैं ना, एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, कितने रिश्ते होते हैं और सारे रिश्ते महिलाओं से जुड़ते हैं। जब एक बेटी बहू बन के जाती है तो कितने सारे रिश्ते एक साथ अपने साथ ले जाती है
0: जी।
1: तो उसकी संवेदनाएं जो होती हैं वो विभिन्न तरह की

0: आयाम होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये चीज जो है महिलाओं के साथ है, हालांकि संवेदनशील पुरुष भी होते हैं, लेकिन जो भगवान है उसने पुरुष को थोड़ा सा कठोर बनाया है,
1: जी
0: ठीक है। तो इसलिए जो है जो महिलाएं हैं इनके लिए साहित्य का ऐसा मंच है जहां पर वो अपने जीवन की उन बातों को जो कह नहीं सकती हैं वो
1: हाँ
0: कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से उसको सामने लाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम कोई चीज सामने ले आते हैं तो अंदर से खाली हो जाते हैं,
1: खाली हो जाते। कहते हैं ना बहुत बार करुणा जी, इस चीज को हम लोग भी महसूस करते हैं कि जो जहन में चल रहा है वो एटलीस्ट हम किसी से शेयर कर लें, और जब शायद हमें जिंदगी में वो कोई इंसान नहीं मिल रहा तो जो कोरे कागज हैं वो शायद बहुत ही खूबसूरत माध्यम है जहां पर हम चीजों को अपनी उन कागजों के साथ शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है कि सिर्फ हमको, हम उनको देखिए लेखन में क्या है, आप कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृतांत हैं, और शोध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के विधि में, फिल्म, और अब तो डिजिटल है कंटेंट
1: जी
0: राइटिंग,
1: जी
0: तो बहुत सारी चीजें हैं
1: बिल्कुल
0: जिस रूप में आप चाहें आप अपने को वहां में व्यक्त कर
1: बिल्कुल
0: सकती हैं, और उसमें कुछ छुपाना चाहे तो छुपा भी सकती हैं
1: बिल्कुल।
0: अगर
1: करुणा
0: ऐसी
1: जी,
0: कुछ है।
1: इतने इतने जरूरी थॉट्स जो हैं, या कह सकते हैं महिलाएं जो शायद बहुत बार समझ नहीं पाते ना, हम लोग अपनी जो भी ताकत है, जो भी ऊपर वाले ने हमें हुनर दिया, हम बहुत बार उसको तराश नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आपने जिस तरह से बताया, आई होप जितनी भी महिलाएं हमारी सुन रही हैं उस चीज को समझें और कोशिश करें कि उनके जहन में जो भी कुछ है उसको पन्नों पर जरूर लिखें। मैम एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम साहित्य की बात करते हैं और हम समाज को देखते हैं, और हर एक समाज में, चाहे वो प्राचीन रहा हो, चाहे अभी का हो या आने वाला समय जो हो, हमेशा देखा जाता है साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपको क्या लगता है साहित्य से समाज को आज के समय में क्या मिलता है?
0: देखिए साहित्य तो हमेशा से समाज का दर्पण है, और
1: जी
0: आप किसी भी काल के साहित्य को जब आप देखेंगे तो वहां उस समय की जो घटनाएं हुई हैं
1: जी
0: उसके आधार पर ही साहित्य का लेखन हुआ है, चाहे वो कहानी है, कविता है। जैसे देखिए निर्भया कांड हुआ था, उस समय जो भी रचनाएं हुई थी वो कितनी किस तरह की थी,
1: बिल्कुल
0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जब ने शुरू करा तो बेटियों पर कविताएं और कहानियां और किस्से आने लगे। तो समाज का जो प्रभाव है वो साहित्य पर पड़ता है, तो साहित्य ऐसा होना चाहिए हमारा कि जो समाज को दिशा दे सके।
1: बिल्कुल
0: फोड़ साहित्य को हमें नहीं लिखना है, इसके लिए क्या है कि हमें अच्छा साहित्य पढ़ना होगा। और
1: बिल्कुल
0: एक बहुत बड़ी चीज है अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आपके जो शब्द हैं वो दोहरे अर्थ को ना लेकर के स्पष्ट रूप से बात को कहने की सामर्थ्य रखते हो,
1: बिल्कुल
0: व्यापक दृष्टिकोण हो आपका, कि सिर्फ हमें कुछ एक, जैसे मैंने देखा कि कभी क्या होता है कभी बेटी पे तो बेटी पे ही लिखते रहते हैं। अब बेटी और बेटा, पति और पत्नी, स्त्री पुरुष, हम सब एक हैं। अब
1: बिल्कुल
0: साहित्य का जब हम साहित्य में जोड़ते हैं तो ये भेद जो होते हैं ये हमारे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही पतला सा एक लकीर होती है पुरुष स्त्री के बीच में,
1: जी
0: क्योंकि पुरुष भी समाज को देख रहा है, स्त्री भी समाज को देख रही है, तो हमको ये देखना है कि जो हम लिखें वो अनुशासित हो और समाज के हित के लिए हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ ना कुछ अच्छा
1: सीखने को मिले।
0: मिले,
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: सीखने
1: मैम
0: का मिले।
1: जी, करुणा जी आपने, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे लिसनर्स के साथ इतने खूबसूरत विचारों को शेयर किया, करुणा जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश यही करेंगे कि इसी तरह आपसे और बहुत सारे हमारे जो विद्वान हैं उनसे बातचीत करके जितने भी खूबसूरत विचार हैं उनको हमारे लिसनर्स तक जरूर हम पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी।
0: बहुत सुंदर आपने कहा ये है, और सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ करुणा जी, जिन्होंने अपने विचार हम सभी के साथ साझा किए कि किस तरह से साहित्य हम सभी के लिए और खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों आगे की बातें हम आगे करेंगे, फिलहाल वक्त आ गया है कि अगला गाना हम आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाए। तो इस प्यारे से गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में हम सभी ने कोशिश की कि जो कलम की ताकत होती है उसको हम कैसे समझें और उसको कैसे पहचाने। दिमाग में जितने भी विचार हम सभी के चल रहे होते हैं, जितने भी कोलाहल होती है ना जहन में, उन सभी को पेपर पर उतार दें तो शायद वो फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी और बेहद बहुत अच्छी चीज हो जाती है। सेकेंड, जैसे कि करुणा जी ने हम सभी को बताया था कि जो साहित्य है वो समाज का आईना है, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीजों को महसूस कर रही होती हैं लेकिन वो चीजों को शेयर नहीं कर पाती हैं, समाज के सामने क्या अपने परिवार के सामने भी नहीं लेकर आ पाती। तो बहुत जरूरी है कि वो महिलाएं खासकर कलम को और कागज

को अपनी ताकत बना ली। और अगर जिस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को उकेरना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें शायद उनकी ज़िंदगी में और आने वाले समय में लोगों की ज़िंदगी में बेहद आसान होती जाएंगी। तो बस आज की इस बात को यहीं विराम देते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि महिलाओं की प्रतिभा को किसी भी एक भूमिका या किसी एक क्षेत्र में सीमित रखने की जरूरत नहीं है। उनके सपनों को उड़ान चाहिए, उनके हुनर को पहचान चाहिए और उनकी आवाज़ को बस एक मंच चाहिए होता है। चाहे कलम हाथ में हो, किताब सामने हो, या कोई मंच हो, या कोई क्षेत्र हो, हर महिला के भीतर अपनी पहचान बनाने की ताकत होती है। तो बस अपने हुनर पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है ना, तो उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो दूसरी महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी राह बन जाती है। बस इसी बात के साथ अब जरीना को दीजिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से आज इजाजत। अगला प्रोग्राम जल्दी से लेकर वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

शताब अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 12 सितंबर, क्षमा कीजिए शनिवार दिनांक 12 सितंबर 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 11 सितंबर सन 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 11 सितंबर सन 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आपके अनुरोध भरे पत्रों पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में। हम हाजिर हो चुके हैं आपके ढेर सारे अनुरोध भरे पत्र लेकर। वैसे आपको बता दें कि अगर आप भी अनुरोध गीत में प्रतिभाग करना चाहते हैं, अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001। भेज दीजिएगा अपने पत्र। तो चलिए, आपके जो पत्र हमें मिले हैं, जो आपने भेजे हैं, उनसे करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज, यानी कि शुरुआत। तो कौन कौन साथी हैं जो पत्रों के साथ कार्यक्रम में आज आए हैं, पहला पत्र पढ़ते हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और उनके तमाम साथी सुनना चाहते हैं बंटी और बबली फिल्म से ये गाना। अलीशा चनोर, शंकर महादेवन में साथियों की आवाजें, गुलजार के बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लाई ने। मगर आपको भी तो इसी गीत में साथ ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे। गुला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और इनके तमाम साथी हैं। और ये पत्र हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके पूरे वर्मा परिवार का। तो लीजिए सुनिए फिल्म बंटी और बबली से ये ट्रैक।

कैलकटा मेल फिल्म से ये ट्रैक आपकी नजर करते हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें हैं। सुखविंदर जी और साथियों की आवाजें हैं। गीत को पसंद करने वाले आप सब हैं। कोटवा नारायणपुट बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय और इनके सभी साथी है। और हमारे ये जो साथी हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रियान, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार। आप हैं असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी और इनके तमाम हमनवा। तो लीजिए सुनिए फिल्म कलकत्ता मेल से ये ट्रैक आप सबकी नजर।

दोस्तों, आकाशवाणी पर रिलीज है FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIRF और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोग गीत। कंपनी फिल्म से ये ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं अल्ताफ राजा और साथियों की आवाज़ों में, और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब हैं। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनार हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल और इनके सभी साथी। आदर्श नगर मलोट से आप हैराज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुज्तबा खान, आफिया खान और इनका पूरा परिवार, रऊफ भाई, शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। लीजिए सुनिए ताबिश रोमानी के बोल, संदीप चौटा का म्यूजिक डायरेक्शन और आवाज अल्ताफ राजा की, फिल्म का नाम कंपनी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ से इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। अगला गीत आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है अमर दी। अमरदीप फिल्म का ये गीत आप सबके नाम करते हैं। आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजश्री राजेश, शीतल राजेश और इनका पूरा परिवार। आप मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गगलानी, जगमोहन और इनके तमाम साथी हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे राही, मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं।

शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके तमाम हमनवा। तो लीजिए सुनिए आपकी अनुरोध पर फिल्म अमरदीप सी ये ट्रैक।

दोस्तों अनुरोध गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बाबू से। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का म्यूजिक डायरेक्शन और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब। छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और इनके तमाम साथी। आपने ये पत्र हमें भेजा है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। इसी गीत में कुछ और दोस्तों को भी साथ लेते हैं और कौन कौन दोस्त हैं चलिए उनके नाम पढ़ने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ यानी कि सुनते रहिए अनुरोध गीत। कस्बा बराना जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं वो राय सिंह पाल, धर्मवीर भारती, जोगेंद्र यादव, महेंद्र पाल, अनुज पाल और अनन्या पाल मिर्जापुर बरेली से हमें पत्र भेजे हैं। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म बाबू से ये ट्रैक।

शाजी में अग्रह देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे सुनना चाहते हैं फिल्म दीदारे यार से ये पेशकश। आवाज़ें किशोर कुमार साहब की, बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत परेलाल ने। और इसी गीत में शामिल करते हैं कुछ और दोस्तों को। आप हैं उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से, भेरूलाल बख्तरिया, भोला बख्तरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक बख्तरिया। हमारे ये जो साथी हैं वो ग्राम शंकरपुर पोस्ट वसाफा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता यादव, अनीता, सुनीता, सूरत श्री और इनका पूरा यादव परिवार। कुछ और दोस्तों के भी मैसेज मिले हैं। नवागांव मुड़िया पर राजनांद गांव से आप हैं सोहन लाल साहू, रुक्मणी साहू, तेजेश्वर कुशाल साहू और इनका पूरा परिवार। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा और इनका पूरा परिवार। और हमारे ये जो साथी हैं वो बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश, नियति कुमारी और इनका पूरा परिवार। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म दीदारे यार से ये ट्रैक।

अनुरोध गीत आप आकाशवाणी पर रिलीज से सुन रहे हैं एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ज़ोन यार ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हिम्मत फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं और फरमाइश करने वाले आप सभी साथी हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके तमाम हमनवा हैं और इसी गीत में साथ लेते हैं आप सबको। आप हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी, गढ़ी कोटा पंचकूला हरियाणा से। हमारे ये साथी हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके तमाम हमनवा। ये पत्र हमें मिला है, कहाँ से मिला है? आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल शाह, नीति सुरभी, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पद्मा टाकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। तो आप सबके नाम फिल्म हिम्मत से ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज, शब्द रचना की है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी बरेली FM 104 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIRF और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर इस समय आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। मर्यादा फिल्म का यह गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सबने सुनना चाहा है। आप हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, सुयाश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। इसी गीत में शामिल करते हैं दादा बाबू रोड गेडी है, झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और इनका पूरा परिवार। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार, पीयूष कुमार और उनके सभी साथी, पाकुड़।

उत्तराखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशोतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। हमारे ये जो साथी हैं वो हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनिस खान, सोफिया खान और इनका पूरा परिवार। आप सबके नाम फिल्म मर्यादा से ये ट्रैक।

अनुरोध गीत आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन एआईआर ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं बढ़ते हैं आगे और अगला ट्रैक आपके लिए कर्ज फिल्म से सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं और इस गीत को जिन दोस्तों ने पसंद किया है उनके नाम बस कुछ ही देर में हम पढ़ने वाले हैं।

कल फिल्म का ये गाना जलाल अबैद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने सुना चाहा था। इसी गीत में हम शामिल कर रहे हैं गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और इनके परिवारीजन। और आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और इनके सभी साथी। और अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म आपकी कसम से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। सुना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा और इनके तमाम साथी। और आप हैं राजोखर बाजार अरहरिया बिहार से शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला और इनके तमाम हमनवा। और मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रजनी, तुषार, समीर खांडे, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और दोस्तों इसी गीत के साथ आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम से हमें भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, FM 100.4 MHz, न्यूज़ ऑन AIR ऐप तथा वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन पा रहे हैं हमारे कार्यक्रमों को। दोस्तों आइए अब सुनते हैं रस रंग। जी हाँ, रस रंग। आगाज करते हैं
1: लब पे तेरे प्यार,
0: शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की आवाजों में इस बेहतरीन कव्वाली के साथ।

दोस्तों, आकाशवाणी बरेली से आप इस समय रसरंग सुन रहे हैं। आइए एक बेहतरीन गजल आपको सुनवाते हैं, पंकज उदास साहब की आवाज़ में। कलाम जमीर काजमी का है

दोस्तों, आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रसरंग। रसरंग में हम आपको सुनवाते हैं गजल, कव्वाली और लोकगीत। चलिए एक गजल आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद लोकगीत सुनवाएंगे। आवाज पंकज उदास की।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। नवा देवबंदी के बोलों को आवाज़ दी है जगजीत सिंह साहब ने।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ आज का रस रंग यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे रस रंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुआ जाते हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे,

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।

0: हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडिले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले इस फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए, और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं, और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर पे।
0: अच्छा।
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है, और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है
0: जी। बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी,
1: आपका सौभाग्य है
0: जी
1: मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी, आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं, और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी। हाँ। बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ भरा पूरा परिवार है, हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियां भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए, तो सब कोई कोई अच्छी सुनाता है, कोई अपने दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं आप?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं जो मेरी रूह से चैन दे, प्यार दे, जिंदगी चल गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से। जी
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: जी, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी, बच्चे हैं छोटे, एक
0: हाँ।
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी,
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ, बहुत कम मिलता है जी,
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी,
0: जी, तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले हैं रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: नांदेड़ तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा।
0: हाँ हाँ
1: और मम्मी जी है।
0: अच्छा, परिवार है, मतलब भरा पूरा परिवार है।
1: हाँ परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है 5 महीने का।
0: ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
0: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रीडर के साथ नर्सिंग।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी,
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और जीवन भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, जय पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोले तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओ, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है। मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Buti Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
7: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी। उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली। बस एक छोटा सा डिम बल्ब था। वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल्ब भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: भी आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: सच में?
2: वाह दीपा, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
3: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
2: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
3: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
2: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
3: हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
2: हाँ,
3: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
2: अरे हाँ,
3: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
2: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
3: मालूम नहीं,
2: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
3: आगे आगे, आज चलो।
4: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
5: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से

0: में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
1: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था,
2: 9 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
0: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
1: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
3: आज कितना मुबारक दिन है।
0: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
1: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
4: होमी, ओ होमी।
5: जी माँ, आती हूँ।
4: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
5: क्या बात है माँ?
4: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
5: जी माँ, बिल्कुल।
4: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
5: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
4: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
5: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
4: अरे
5: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
4: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
5: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
4: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
5: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
4: कुछ नहीं होमी, बस करो।
5: माँ सुनो तो। अरे
0: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
2: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
1: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
0: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की।

0: अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
1: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गईं। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
0: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
2: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
3: अरे होमी, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो।
2: जी जी सर, धन्यवाद।
3: होमी, जरा इसे देखो।
2: जी।
3: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
2: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
3: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
2: जी।
3: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
2: धन्यवाद सर।
0: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में हिंसक

0: आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
1: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
2: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
0: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
2: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज एक नया विषय है और विषय बहुत अच्छा है। विषय जो है वो है कैसे थे आप 1980 के दशक में, रेडियो के साथ कैसी चलती थी आपकी लाइफ। आइए पुरानी यादों को ताज़ा करें। देखते हैं अब पहले कॉलर कौन है जो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं आकाशवाणी बरेली के साथ। हेलो
6: जी, आकाशवाणी बरेली
5: जी, आपकी कॉल लग गई है, आकाशवाणी बरेली से बात कर रहे हैं
6: जी।
5: कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार।
6: टेक चंद अग्रवाल बोल रहे हैं, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
5: टेक चंद जी, कैसे हैं आप?
6: जी जी, हम बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
5: कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
5: क्या करते हैं टेक चंद?
6: हम सीनियर सिटीजन है मैडम।
5: अच्छा, बहुत बढ़िया
6: जी।
5: और आज आपकी कॉल लगी है, आज का हमारा टॉपिक है कैसे थे आप 1980 के दशक में और रेडियो के साथ कैसी चलती थी आपकी लाइफ। कुछ पुराने दिनों को, जो पुराने दिनों की यादें हैं उनको ताज़ा कीजिए।

0: 100.4 FM के साथ।
1: जी जी, क्या मैडम 1979 या 80 की बात करें
0: जी,
1: तो उस समय हमारा स्कूल का जो था अंत था।
0: अच्छा।
1: और कॉलेज लाइफ चालू हुई थी
0: जी,
1: तो फिल्मों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे
0: जी,
1: रेडियो की दुनिया में भी बहुत ज्यादा जुड़े थे, क्योंकि उस समय जो है अमीन साहनी जी का बिनाका गीत माला बहुत फेमस था
0: जी,
1: और साथ में हवा महल फौजी भाइयों को पसंद, रेडियो पे ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा आते थे
0: जी जी।
1: तो रात में मैडम हम लोग दोस्तों के साथ बैठ करके इनका बड़ा एंजॉय किया करते थे।
0: अच्छा।
1: और 1980 की बात किया जाए तो उस समय मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र और इन लोग का दौर था, लेकिन उसी दौर में हमारे एग्री यंग मैन अमिताभ जी का जो है वो शुरुआती दौर आया था
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उस समय की जो एक मतलब जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो लोगों की दीवानगी जो थी वो चरम सीमा पे थी
0: जी जी, उस समय में फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज था, है ना
1: जी जी जी। और उस समय मैडम कहना चाहिए जहाँ देखो वहाँ नवा खलाल, लावारिस, ऐसे फिल्मों के गाने बहुत बजते थे
0: जी जी। सिलसिला फिल्म था, लव स्टोरी फिल्म थी, बहुत ज्यादा क्रेज था उस दौर में फिल्मों का। और कई जगह पे ये भी सुनने में आता था कि लोग जो है वो इतना क्रेजी हो जाते थे, फिल्मी सिनेमा घर से जब बाहर आते थे तो वही सारी एक्टिंग वगैरह करना शुरू कर देते थे, कई बार मारपीट भी हो जाती थी, ऐसा कुछ आपके टाइम में हुआ है?
1: मैडम बिल्कुल उस समय ऐसा होता था, कहना स्टाइल ही बदल गया था, अमिताभ जैसे लोग बाल रखने लगे
0: जी जी जी।
1: वो दौरे का मतलब कहना चाहिए अब अभी तो देखने को कम मिलता है
0: जी,
1: वो एक अलग प्रकार की दीवानगी थी उस समय
0: जी जी। कपड़े वैसे ही हीरो हीरोइन जैसे पहनना, हेयर स्टाइल उनके जैसे करना, और जैसे कि वो लोग फिल्मों में एक्शन करते थे बाहर निकल के, वही एक्शन अपने दोस्तों पे आजमाना, इस तरह का काफी चर्चे हुआ करते थे उस जमाने में, है ना जी। बहुत अच्छी आपने यादें ताजा की, रेडियो से जुड़ी हुई भी और फिल्मों से जुड़ी हुई भी। टेकचंद आपकी कॉल लगी है, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मुझे नसीब फिल्म का सुनवा दीजिएगा, दोस्ती इम्तिहान,
0: बहुत प्यारा सॉन्ग है, लीजिए भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बरेली से बोल रहा हूँ सर। आई से बी ड्राइवर मिथिला हूँ।
0: अच्छा, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नन्ने है।
0: नन्ने जी, जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: आपका क्या हाल? मैंने
0: सब बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं। और आज आपकी कॉल लगी है, आप बताइए हमें कि 1980 के दशक की कुछ यादें ताज़ा कीजिए हमारे साथ।
1: आप मेरा ख्याल मुनव्वर जहाँ बोल रही है?
0: जी, मैं मुनव्वर जहाँ बात कर रही हूँ।
1: तो मैं कल 93 बजे आपकी एफएम सुन ले आऊँ।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बात तो क्या हुआ?
0: आज का टॉपिक है 1980 के दशक में आप कैसे थे और रेडियो के साथ आपकी लाइफ कैसे चलती थी, ये कुछ हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए।
1: सर एक्चुअली मैंने रेडियो, मेरे पास तो सर से रेडियो है मेरे पास।
0: अच्छा।
1: और मैंने 70 में इंटर कर लिया ना अपने फजलुर रहमान इस्लामिया गरीबों में।
0: जी
1: जी। मैंने 30 साल सर्विस करी तो रेडियो में मेरा साथ ही आज भी है, पहले भी गया।
0: जी।
1: और रेडियो में मेरी एक हम तो मेरी 73 एज है, मगर रेडियो मेरे पास 65 से आज भी है और मैं आज भी रेडियो बहुत दौर से सुनता हूँ।
0: जी जी।
1: और आपका जो 4 वाला प्रोग्राम है आकाशवाणी बात आपके साथ, ये तो मैं मिस होने ही नहीं देता हूँ सर, जब से आपका स्टार्ट हुआ।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि 1965 से जुड़े हुए हैं।
1: और जब मैं पढ़ता था तो देशभक्ति में भी फर्स्ट डिवीजन आता था मैं, जब मैं इस्लामिया में पढ़ता था।
0: अच्छा।
1: 2024 में 10 दिसंबर को मेरी बीवी स्मार्ट होनी दुनिया से विदा हो गई।
0: अच्छा।
1: अरे, तो इसलिए मैं जाना वो सुनना चाहता हूँ कि दिया नहीं कोई दे, वो गए कौन से देश गले, तुम कहाँ चले गए,
0: चिट्ठी ना कोई संदेश,
1: कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
0: जी जी।
1: और ट्रेन जहाँ तुम चले गए।
0: जी जी। हम दुआ करेंगे कि आपका जो गम है वो हल्का हो।
1: अस्सलाम वालेकुम रह रहा हूँ मैं, आप तो बाद में पहचाना नहीं, आप मुनव्वर जहाँ बोल रहे।
0: जी कोई बात नहीं, आप हमारे श्रोता है और आप लोग जब कॉल करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
1: आपका प्रोग्राम मिस नहीं करता, ये समझो मैं अब तो समझो 73 मेरी एज है, आज से 0% है।
0: जी।
1: आज ये मैं आपका रेडियो सुबह से समझो 6 बजे से 11 बजे तक सुनता हूँ, जो भी प्रोग्राम आते हैं।
0: जी जी, ये हम सबकी खुशनसीबी है।
1: 93 से 93 से
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हम लोगों को इतना सराहते हैं, इतना चाहते हैं और कंटिन्यू हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आपने
1: रेडियो में ही मेरा साथी है, इस वक्त कोई मेरी बात भी करी नहीं।
0: जी।
1: मैं अपने रेडियो में सहारे से भाई मेरा परिवार है पूरा नहीं सर, आपके परिवार को भी खुश रहना है।
0: आमीन।
1: और आपका जो स्टाफ है आपकी एफएम है वो भी हमेशा खुशी के सुमनाम थे और हमेशा खुशी पूरे स्टाफ को रहा है, हमारी तरफ से यही दुआ है।
0: आमीन आमीन सुमा आमीन। और
1: मैडम आपसे बहुत खुशी हुई मिलने के बाद, हम यही किसी चाहते कि हमारी मुनव्वर जहाँ से बात हो तो हमारी बड़ी खुशी हो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैडम, मैं ग्राम मैचोरा तहसील मलक जिला रामपुर से तौफीक अहमद मंजूरी बात कर रहा हूँ।
0: तौफीक अहमद, कैसे हैं आप?
1: मैडम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं?
0: सब बढ़िया है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मैडम अपना सिलाई काम चल रहा है।
0: जी, सिलाई का काम चल रहा है और साथ में रेडियो भी चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, साथ में रेडियो चल रहा है।
0: जी। अच्छा, आज तौफीक आप हमें ये बताइए कि 1980 के दशक में आपकी लाइफ कैसी थी और रेडियो के साथ आप कैसे जुड़े हुए थे?
1: देखिए मैडम, 1980 का दशक मैडम बहुत बढ़िया था वो हमारे लिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि उस टाइम जो है पूरी फैमिली एक साथ बैठकर रेडियो सुनते थे
0: जी।
1: और पास पड़ोस के भी मतलब आते थे मैडम सुनने के लिए।
0: जी,
1: और आज का दौर मैडम ऐसा है कि हर आदमी अपने फोन में व्यस्त है।
0: अच्छा, ये 1980 का दौर माने तो ये वो दौर था जब लोग रेडियो सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे एक जगह पर, है ना?
1: जी जी मैडम जी, बिल्कुल
0: जी। कितना अच्छा लगता होगा उस टाइम में और उस समय में, और लोग बहुत ही ज्यादा फिल्मों के जो एक्टर होते थे, एक्ट्रेस होती थी, उन लोगों को कॉपी बहुत किया करते थे, ऐसा भी देखा जाता
1: जी
0: था।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपने कॉपी किया है किसी एक्टर को?
1: नहीं मैडम, मैंने तो नहीं किया है।
0: अच्छा, क्योंकि उस जमाने में जैसे लोग ड्रेस पहनते थे, जैसे हेयर स्टाइल रखते थे, जैसे एक्शन में बोलते थे, हद ये कि उनकी डायलॉग डिलीवरी तक लोग अपना लेते थे और उसी स्टाइल में बात करने लगते थे, है ना?
1: जी जी बिल्कुल मैडम
0: जी। आप कोई याद अपनी ताजा करें उस जमाने की?
1: मैडम हमारी याद ये है, जैसे हम काम करते थे लाइक अपना
0: जी,
1: तो हमारा ट्रांजिस्टर 24 घंटा चलता था मैडम।
0: अच्छा, उस जमाने से ही चलता था आपका ट्रांजिस्टर?
1: जी बिल्कुल मैडम, हम लेटर भी डालते थे।
0: अच्छा,
1: आकाशवाणी बरेली, आकाशवाणी रामपुर, आपके आकाशवाणी बरेली में हमारे बहुत लेटर शामिल हुए थे मैडम।
0: अच्छा, लेकिन आकाशवाणी बरेली तो 1993 से शुरू हुआ है?
1: जी 93 से चालू करता था मैं।
0: अच्छा, 93 से ही आपने चालू किया?
1: रामपुर डालते थे लेटर।
0: अच्छा, इससे पहले आप रामपुर में डालते थे?
1: जी जी
0: जी जी। तौफीक जी, आपने इतनी अच्छी यादें ताजा की कि वो दौर हमारी आंखों के सामने सुनने में आया था कि लोग एक रेडियो होता था और सारे लोग इकट्ठे होकर सुनते थे और आपने वो दौर देखा अपने सामने और बहुत ही अच्छा फील करते होंगे आप उस जमाने को, है ना?
1: बिल्कुल मैडम बिल्कुल।
0: अच्छा, उस जमाने में और अब के जमाने में आपको कैसा डिफरेंस लगता था? वो अच्छा था या आज का ये जो लाइफ चल रही है वो अच्छी है? काफी कुछ तब्दील हो गया है।
1: तो मैडम पहले की अच्छी थी।
0: अच्छा, लाइफ पहले की अच्छी थी
1: मैडम, आजकल के दौर में देख रहा हूँ आप भाग दौड़ भरी जिंदगी है ये।
0: लेकिन पहले को देखते हुए आजकल के टाइम में सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके मुकाबले भी लाइफ पहले की ही अच्छी मानेंगे आप?
1: मैडम पहले जो है शांति थी मैडम।

0: जी ये तो आप ठीक कह रहे हो, पहले तो
1: जी
0: शांति थी, सुकून था और जिंदगी जीने का अपना मजा था, लोग हर पल को एंजॉय करते थे, है ना जी। तौफीक, आपने रामपुर से कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा सुनवा दें आज आपको गीत?
1: मैडम सुना दीजिए, तिरंगाना टाइटल सॉन्ग
0: प्लीज। सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्रामबा पोस्ट कोठा खंडुआ रामबाबू मिश्रा बोल रहा हूँ जी।
0: जी राम बाबू जी, कैसे हाल चाल है?
1: बस एकदम आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है।
0: और क्या कर रहे हैं इस समय?
1: इस समय कुछ नहीं, बैठे हैं खाली रेडियो सेट के पास में ही अपने।
0: अच्छा, रेडियो सेट के पास बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना?
1: जी जी
0: अच्छा,
1: जी
0: आज राम बाबू जी आप हमें 1980 के दशक की यादें ताजा कीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ, और हम भी उत्सुक हो रहे हैं ये सुनने के लिए कि 1980 के दशक के करीब आपकी लाइफ कैसे चलती थी और रेडियो के साथ आप कैसे रहते थे।
1: 1978 में हमने रेडियो लिया था, ट्रांसटर पैरामाउंट।
0: अच्छा,
1: तो उसके लिए सुनते रहते थे, स्कूल भी जाते आते थे। फिर उसके बाद 1980 के दशक में जब लगभग आए तो फिर एक वो था जो गुड़ बनाने का जो कोलू होता है वो,
0: जी
1: उस पर इंजन चलाना शुरू किया 90 रुपए महीने पे।
0: जी
1: तो वो भी चलाते थे, और समय पर जो स्कूल से आने के बाद में या मतलब छुट्टी है तो अपने ट्रांसटर पर भी ध्यान देते, और उधर कोलू इंजन चल रहा है तो अपने ट्रांसटर पर ही मस्त रहते थे।
0: अच्छा,
1: माता पिता जीवित थे।
0: जी जी, ऐसे में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होता था आपका जो कोलू चल रहा था उसके काम में?
1: ना ना ना, ना कोलू चलता था तो उसके वो इंजन था ना, तो इंजन की आवाज जो थी वो अलग रहती थी। अपने जो है बैठे हैं उस पर देख लिया कि हाँ इंजन में मोबिल या डीजल वगैरह जो है कोलू पे वो चिकने के लिए वो अंडी का तेल वगैरह लगाते थे, बस उसके बाद में फिर है, कोई टेंशन नहीं थी।
0: फिर अपना रेडियो से जुड़ जाते थे।
1: जी जी जी जी जी जी, उस समय आकाशवाणी रामपुर दिल्ली बीबीसी लंदन ये समाचार खास प्रोग्राम थे, ज्यादा वो प्रसारण भी नहीं थे उस समय।
0: जी अच्छा, उस समय ये ऐसा जाना जाता है कि जो फिल्में वगैरह

0: चलती थी उस समय की फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज था नौजवानों के ऊपर, तो कुछ आपके ऊपर भी उसका असर पड़ता था उस टाइम की फिल्मों का?
1: जी, उस समय फिल्म देखने को जाते थे। उस समय सबसे पहली फिल्म यहाँ पर चली थी आंवला में, हमारे टैगिज बना था, तो वो गंगा सागर वो देखी
0: जी।
1: और उसके बाद में फिर और फिल्में देखते रहे। हाँ, एक फिल्म जरूर वो थी साजन, वो आपके पास में देखी थी हमने। ये नेडा जो है वो कैंप है नेडा बुखारा पे,
0: जी जी
1: जी, यहाँ पर गोबर गैस वगैरह संयंत्र है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। यहाँ अच्छा। पर मैंने ट्रेनिंग की थी पीआरडी की 86-86 में।
0: अच्छा,
1: तब वहाँ पर देखी थी फिल्म, तो घर के लाल फाटक तक घूमते थे।
0: 1980 के दशक की, जबकि जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे लोग छाए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री पर, तो उस टाइम की कोई याद ताज़ा कीजिए।
1: उसमें सबसे बढ़िया एक तो आशा पारेख जी का रोल, भूमिका बहुत अच्छी लगती थी वो, जो फिल्म में रोल कर उनके हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सामने आता था। और साथ में धर्मेंद्र जी, वैसे कलाकार तो सब जो थे मगर दो ही चेहरे ये ज्यादा पसंद आए, राजेश खन्ना जी थे।
0: जी जी बिल्कुल, सुपरस्टार
1: जी, जी जी।
0: राम बाबू जी, आपने अपने 1980 के दशक की यादें हमारे साथ ताज़ा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवा दें?
1: मैडम वो फिल्म दुश्मन राजेश खन्ना की
0: जी
1: गाना है वो, देखो देखो देखो तमाशा देखो, वो जो फिल्म आया है मुमताज ने।
0: जी जी जी, बहुत प्यारा गाना है ये, और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का अपने रेडियो सेट पर ये।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी,
2: ओ
1: टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
3: हेलो।
4: हेलो
3: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
4: दीदी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ। दीदी
3: सतीश
4: जी,
3: कैसे हैं?
4: जी हम तो बढ़िया दीदी, आप बताएं कि आप कैसे हैं?
3: सब बढ़िया है। और क्या करते हैं सतीश?
4: मैं बिजली ऑफिस में हूँ दीदी, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ।
3: अच्छा, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है ना?
4: जी आपसे एक आध महीने पहले बात हुई थी दीदी।
3: आज का रिकॉर्ड करते हैं आपका, कि कैसे थे आप 1980 के दशक में रेडियो के साथ, कैसी चलती थी आपकी लाइफ, शेयर कीजिए अपने अनुभव।
4: जी बिल्कुल दीदी, जब हम छोटे थे दीदी उस समय हम स्कूल में भी पढ़ते थे, और उस समय जब रेडियो था गांव बिहार में, रेडियो बहुत सुनते थे दीदी
3: जी।
4: उसमें यदि एक व्यक्ति का यदि नाम आ जाता दीदी, तो आदमी घर आके बोलता है भाई तेरा नाम रेडियो पे आया।
3: अच्छा।
4: और अच्छा लगता था, सुकून मिलता था दीदी सुन के।
3: जी जी, बहुत ज्यादा क्रेज था उस समय में रेडियो का, है ना?
4: और मेरे को दीदी दो चार दोस्त लोग तो ऐसे बोलते थे भाई कितने का पोस्ट कार्ड आता है, मैं पैसे ले ले 5 रुपए 10 रुपए, मगर मेरा नाम भी डाल देना।
3: अच्छा, तो आप डालते थे क्या रेडियो में पत्र वगैरह?
4: जी बिल्कुल दीदी, मैं रेडियो पे दोस्त लोग के नाम भी सेंड करता था, और दीदी हर दिन 8-8, 10-10 लेटर लिख के और स्कूल भी जाता था दीदी। तो पहले जाके पत्रे पेटी में पत्रे को डालता था, उसके बाद में स्कूल में अंदर जाता था दीदी, और बहुत रात को यदि आया तो

0: यदि कार्यक्रम का समय हुआ तो मैं एक घंटा रेडियो के सामने बैठता था, बहुत ही आनंद आता था दीदी नाम सुनने में।
1: जी जी, वो जमाना भी कितना अच्छा था, है ना। अब आते हैं आपके सतीश के लेटर, अब डालते हैं
0: जी। बिल्कुल दीदी, मैं अभी भी आकाशवाणी के लोगों से जुड़ता रहता हूँ दीदी, और आजकल ये सबसे अच्छा साधन हो गया कि हम घर बैठ के भी व्हाट्सएप के जरिए हम नाम बुलवा सकते हैं और फरमाइश सुन सकते हैं।
1: जी जी जी, आपका फेसबुक के माध्यम से तो आपकी पसंद वगैरह में नाम आता है और लेटर भी भेजते हैं आप, है ना।
0: जी बिल्कुल दीदी, मैं फेसबुक के माध्यम से उसमें पहुंचाता हूँ दीदी।
1: जी, बहुत खुशी हुई हमें कि एक वक्त वो था कि जब एक नाम सुनने के लिए लोग इतना खुश होते थे रेडियो के लिए, तो तब से लेके अब तक आप रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, है ना।
0: जी बिल्कुल दीदी।
1: अच्छा सतीश, आपने पहले का जमाना भी देखा है और ये जमाना भी देखा है, तो आप ये बताइए कि उस 1980 के दशक में आपको अच्छा लगता था या आज का दशक जो चल रहा है वो अच्छा लग रहा है।
0: नहीं दीदी, मेरे को उस समय का जो दशक था दीदी वो बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए अच्छा लगता था, कारण उसका ये था दीदी कि पहले के जमाने में दीदी आदमी, उस समय टीवी एवी का ज्यादा साधन नहीं था, सिर्फ रेडियो का साधन था और हर घर पे और हर गाँव में दीदी आदमी रेडियो से जुड़ता रहता था। आदमी हाथ में उठा के खेत भी जा रहा है तो रेडियो लेके जा रहा था, खाना भी खा रहा था, रेडियो पहले चालू करता था,
1: चल रहा है, तो अगर कहीं दूसरी जगह जाना है तो रेडियो साथ लेके चले गए। ये भी टेंशन नहीं थी कि लाइट चली जाएगी तो वो गाना हमारा अधूरा ना रह जाए, है ना।
0: हाँ बिल्कुल दीदी, और उस समय लाइट आ जाती थी और जैसे लाइट आ जाती तो सबसे पहले दीदी हम लोग क्या काम करते थे, सबसे पहले रेडियो की स्विच ऑन करते थे दीदी, मतलब उसकी बटन क्या होता है कि हम लोग उस समय साधन हमारा सिर्फ रेडियो ही था, बाकी दूसरा कोई साधन नहीं था मनोरंजन।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। और 1980 में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज वगैरह चलती थी, तो उनका कुछ आप पर असर पड़ता था क्या आपकी लाइफ पर।
0: जी बिल्कुल दीदी, मैं रेडियो से ज्यादा सुनता हूँ दीदी, मैंने टेलीविजन ज्यादा उसमें रखा ही नहीं दीदी, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा मनोरंजन दीदी मतलब टीवी से ज्यादा तो रेडियो पर मिलता था, क्योंकि उस जमाने में रेडियो में एक एक चीज, एक एक वार्तालाप, एक एक लोकगीत, एक एक भजन और एक एक गीत सुनने को मिल जाते थे दीदी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रेडियो को इतना चाहते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। और सतीश, आज आपने कॉल लगाई है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे।
0: दीदी मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है मन
1: जी,
0: और गीत के बोल रहेंगे दीदी, मेरा मन क्यों तुम चाहे, मेरा मन। और तो दोस्तों को नाम ले सकते हैं दीदी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: दीदी, सबसे पहले डेडिकेट आपको रहेगा,
1: थैंक यू।
0: और हमारे मित्र दीदी गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, अपराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, राजू यादव जी हैं, और शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, सुनील झा जी हैं, और भगवान जी परमार जी हैं दीदी, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं। सभी दोस्तों के साथ सुनना दीदी मुझे आएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और लीजिए सुनिए अपने दोस्तों के साथ अपने रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहां से?
1: जय हीरामन बाबा रेडियो सोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूं मैं।
0: विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: ईश्वर की कृपा और आपका आशीर्वाद एकदम फिट एंड फाइन।
0: जी बिल्कुल, बना रहेगा वो तो। और क्या करते हैं आप विनोद?
1: जी मैम, हम खेतीबाड़ी का काम करते हैं
0: और साथ में रेडियो भी सुनते हैं।
1: जी जी, रेडियो तो बचपन से आज तक सफर जारी है।
0: अच्छा, तो बचपन से आज तक का जो सफर है आपका, तो उसमें आप बताइए कि 1980 के दशक की कुछ यादें ताज़ा कीजिए रेडियो के साथ की और अपनी लाइफ की।
1: क्या मैम, 1980 दशक तो बहुत समय गुजर गया
0: जी,
1: लेकिन जो एक अपनी यादें रह जाती है ना, वो हमेशा
0: साथ रहती
1: है। साथ में वो अपने मित्रों के साथ में वो हमेशा रहती है।
0: जी जी,
1: हालांकि हम 1980 में पैदा भले ही नहीं हुए थे, लेकिन रेडियो से जो हमको लगाव है बचपन से लेके आज तक,
0: अच्छा।
1: वो हमारा साथ रेडियो आज भी दे रहा है और हम भी आकाशवाणी को नियमित रूप से सुनते हैं।
0: अच्छा, आप कब से जुड़े हैं रेडियो से?
1: जी मैम, हमको करीब 30 साल हो गए हैं रेडियो से जुड़े। हम क्लास 5 में पढ़ते थे जब से रेडियो सुन रहे हैं।
0: अच्छा, कौन सा पसंदीदा आपके कार्यक्रम या कौन सा पसंदीदा फिल्म या मूवी होती थी उस टाइम की, जब आपने इस जमाने में या इस दुनिया में आँख खोली, सोचा समझा दुनिया को, तो उस टाइम में किस चीज को देखकर आप रेडियो के कौन से प्रोग्राम को या कौन से सॉन्ग को सुनकर आपको अच्छा लगता था?
1: पहली बात तो ये मैम कि हमको एक जिज्ञासा रहती थी कि रेडियो पर गाना जो बजता है वो कैसे बजता है, कहाँ
0: अच्छा।
1: से बजता है, कैसे आता होगा।
0: जी,
1: जब हम पहली बार हमारे एक आकाशवाणी गुना और भोपाल गए थे, तो हमने वहाँ पे जाकर देखा कितनी बहुत बड़ी बड़ी मशीने होती है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होती है, तो उन्होंने हमको बताया यहाँ से प्रसारण जाता है, हम बोलते हैं और आप रेडियो तक सुनते हैं, तो वो चीज जान के हमको बेहद खुशी हुई थी।
0: जी जी, तो यानी कि जब आपने होश संभाला अपना, तो पहली जिज्ञासा ये थी कि रेडियो का प्रसारण कैसे होता है ये जानेंगे
1: और कैसे हम इसको सुनते हैं, क्योंकि आप बरेली में बैठे हैं और हम यहाँ पर हैं, तो कैसे प्रसारण आ रहा है।
0: जी,
1: तो हमको बहुत उत्सुकता रहती थी। और बात फिल्मों, ये तो मैम बचपन में छोटे थे तो ये तो जानकारी नहीं होती थी कि पिक्चर कब की है, कैसे, बस ऐसे ही मनोरंजन हम कर लिया करते थे।
0: अच्छा।
1: और हमारा फेवरेट प्रोग्राम था शक्तिमान में, जो दूरदर्शन पे आता।
0: अच्छा
1: जी, शक्तिमान हमको बहुत अच्छा लगता था, वो उड़ता था हवा में
0: जी,
1: तो कभी कभी हम प्रयास करते थे हम क्यों नहीं उड़ते हैं, ये उड़ते हैं।
0: जी जी, और कई बार ऐसे हादसे भी हो गए थे, क्योंकि बच्चों का वो बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम था शक्तिमान, और कई बार बच्चे वैसे ही करने की सोचते थे तो हादसे भी हो गए थे कई सारे बच्चों के साथ, है ना?
1: जी,
0: तो विनोद जी, आपने अपने बचपन की यादें बहुत सारी ताज़ा की, बहुत अच्छा भी लगा सुनकर।
1: एक बात और मैं कहना चाहूँगा रेडियो के बारे में
0: जी,
1: कि आज के टाइम में मैम कैसा ही युग आ जाए, मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना हो या अपना इंटरनेट का जमाना हो, लेकिन जो रेडियो की जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता। रेडियो था, है और हमेशा रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी यादें ताज़ा की। अब आप गीत बताइए, हम आपके जहन में कौन सा गीत ताज़ा कर दें?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अंदाज
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, किशोर दा किया हो।
0: बहुत प्यारा गाना है, और लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ दोस्तों, हर पल को अपने आप में उम्दा और स्पेशल समझकर जीना चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अब सेगमेंट आ चुका है जिसमें हम आपके फेसबुक के माध्यम से जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हमने जो विषय दिया होता है उस पर, और ढेर सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें नाज रेडियो क्लब वाले, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन हम इनका नाम जानते हैं, निसार अहमद अंसारी। लेकिन फिर भी सारे श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुशी में अपने पते के साथ अपना नाम और अपने नाम के साथ अपना पता लिखना ना भूलें। फिलहाल नाज रेडियो क्लब से लिखते हैं, 1980 के दशक में लोग रेडियो पर पसंदीदा गाने सुनने के साथ साथ कैसे टेप रिकॉर्डर की मदद से गाने भी रिकॉर्ड करते थे। लोग रेडियो के पास बैठकर अपने पसंदीदा गाने आने का इंतजार करते थे, और गाना बजते ही बजते वो टेप रिकॉर्डर का बटन दबाकर उसे कैसेट में सेव कर लेते थे। रेडियो पर मैच कमेंट्री सुना करते थे, एक जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और कान के पास रेडियो रखकर सुनते थे, और अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए रेडियो पर खत लिखा करते थे। और 1980 के दशक में लोग जहां भी जाते थे अपने साथ रेडियो लेकर चलते थे। उस वक्त वीडियो की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी, रेडियो की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, गलत टाइप हो गया इनसे। और वाकई इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी, और ये चीज़ तो हमें आज पता चली कि जो पसंदीदा गाना रेडियो पर आता था उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेते थे। वाकई वो दौर भी अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे होता था, क्योंकि जो चाहने वाला है जिस गीत का, वो उसके साथ कैसे इंसाफ करता है वही जानता था। फिलहाल अगला जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है, BI धाकड़ यानी कि भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन।

मध्य प्रदेश से। श्रोताओं लिखते हैं, ये आजकल 1980 में सोशल मीडिया पर जाने की होड़ लगी हुई है। मेरा तो 1980 में जन्म हुआ था और रेडियो से मेरा बचपन का साथ रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैं बचपन में छोटा था तो घर वाले धीमी आवाज में रेडियो चालू करके मेरे पास रख देते थे और मैं चुपचाप

रख देते थे और मैं चुपचाप सुनता था। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जैसे आज के वक्त में लोग जो माँ होती है बच्चे के पास फोन रख देती है उसे खेलने के लिए देखने के लिए और बच्चा उस फोन में लग जाता है। इसी तरह से बचपन में लोग रेडियो का सहारा लेते थे। अगला कमेंट हमारे पास जो आया है हिमकेश्वर साहू हिम से, ये लिखते हैं 1980 के दशक में रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं था बल्कि घर परिवार का एक सदस्य हुआ करता था। सुबह रेडियो पर भक्ति संगीत और समाचार से दिन की शुरुआत होती, फिर फिल्मी गीतों और फरमाइशी कार्यक्रमों का इंतजार रहता। शाम को परिवार के लोग रेडियो के आसपास बैठकर समाचार, गीत संगीत और क्रिकेट की कमेंट्री भी सुना करते थे। आज हमारे पास मनोरंजन के हजारों साधन हैं, लेकिन 1980 के दशक का रेडियो हमें इंतजार करना, सुनना और उस पल का आनंद लेना सिखाता था। उस समय का एक पसंदीदा गीत सुनने के लिए रेडियो के पास बैठना भी अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव था। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं ये हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू। बहुत मीठी यादें इन्होंने ताज़ा की हैं 1980 के दशक की, कि वाकई आज के टाइम में शायद ही किसी चीज़ का इतना इंतज़ार होगा जितना कि रेडियो पर गानों का हुआ करता था। दोस्तों ये हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है शाहरुख नूर अंसारी का, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी। जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए 1980 का वो दौर जब घर में टीवी हर किसी के पास नहीं होता था लेकिन रेडियो लगभग हर दिल के करीब हुआ करता था। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि घर का एक ऐसा अजीज साथी हुआ करता था। सुबह सुबह रेडियो पर आती आवाज के साथ दिन का आगाज होता था। कोई खबरें सुनता था, कोई फिल्मी नगमे तो कोई अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम का इंतजार करता था। रेडियो की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो दूर बैठे इंसान को भी अपनेपन का एहसास करा देती थी। उस जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, श्रोता अपने फरमाइश और पैगाम डाक के जरिए भेजते थे और फिर कई दिनों तक बेसब्री से इंतजार करते थे कि शायद आज रेडियो पर उनका नाम पुकारा जाए, उनकी चिट्ठी शामिल हो जाए। जब उद्घोषक कहते थे ये खत आया है तो दिल की धड़कन लिखते हैं दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती थी कि गांव के चौपाल हो या शहर का छोटा सा कमरा, रेडियो के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते थे। क्रिकेट की कमेंट्री हो, फिल्मी गीत हो या खासकर कोई भी कार्यक्रम हो, हर आवाज में एक अलग ही लुत्फ होता था। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन उस दौर का इंतजार, वो सादगी, वो रेडियो से जुड़ी वो मोहब्बत शायद कहीं पीछे छूट गई है। आज भी जब रेडियो की कोई पुरानी आवाज कानों में पड़ती है तो दिल कह उठता है वो जमाना कितना खूबसूरत था जब रेडियो बजता था और पूरा घर सुनता था। वक्त गुजर गया, जमाना बदल गया, मगर रेडियो से जुड़ी यादें आज भी दिल में जिंदा है। सच कहें तो दिल ढूंढता है एक बार नहीं बार बार वही पुराना जमाना, वही रेडियो और वही सुकून।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ और इस समय पढ़े जा रहे हैं आपके कमेंट जो आपने बहुत ही प्यार से लिखकर भेजे हैं। अगला कमेंट हमारे पास आया है राम कुमार, राहुल, रवि कुमार और राहुल का। ये लिखते हैं, आज भी रेडियो मेरे घर में गूंजता है, कभी घर घर की धड़कन था रेडियो, अब सिमट गया है यादों में। ये लाइन पढ़ते ही आंखें भर आई, बिल्कुल वही पुराना नजारा, 1927 में शुरू हुआ रेडियो, तब से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियों का साथी रहा है। बिल्कुल, शाम होते ही पूरा परिवार रेडियो के चारों तरफ समाचार, गीत, नाटक सब एक साथ सुनते थे और आज मोबाइल और टीवी के जमाने में रेडियो यादों में सिमट गया, लेकिन हम श्रोता परिवार इसे जिंदा रखे हुए हैं। 1983 से लगातार रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूं और जब तक जान है जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं, रेडियो के साथ सोता हूं, इसी के साथ उठता हूं, जब सुनता हूं नाम अपना तब बहुत खुश होता हूं, कभी फरमाइश पूरी ना हो मायूसी में आपा खोता हूं, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ, मैं रेडियो श्रोता हूँ। रवि कुमार, राहुल कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से। अनिल हैं, लिखते हैं बहुत ही अच्छे, शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार हैं, बहुत ही अच्छे विषय को लेकर अपना प्रोग्राम लेकर आएंगे, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर, 1980 के दशक की बात करें तो उस दौर में रेडियो का अपना एक वजूद था, मेरे पास बल्ब वाला रेडियो था जो थोड़ी देर गर्म होने के बाद बजता था, उस दौर में रेडियो को जीवन उतार कर अनेक लोगों ने अपनी मंजिलें हासिल की हैं। मैंने भी इस दौर से रेडियो सुनने का सिलसिला का आगाज करते हुए रेडियो के क्षेत्र में इन्होंने कुछ बुक का नाम लिखा है, रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा फरमाइशी पत्र लिखने का रिकॉर्ड दर्ज किया था। बहुत अच्छी बात है, आज के दौर में रेडियो एक महसूस करने का नाम बन गया है गानों को सुनने के लिए, जबकि पहले के दौर में ऐसा लगता था कि रेडियो से आवाज आ रही है और हम कान लगाकर कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। जो वक्त गुजर गया शायद अब मुश्किल है। स्मृतियों के तौर पर हम और आप सभी रेडियो को जीवन में अपनाएं, और लेकिन वास्तव में वह बात नहीं रही जो पहले के दौर में थी। जी हाँ दोस्तों, वो बात नहीं रही जो पहले के दौर में थी। पहले लोग रेडियो को साथ लिए फिरते थे, लेकिन अब देश दुनिया कहीं भी आप चले जाएं, रेडियो हर समय आज भी आपके साथ है। अगला हमारे पास ये कमेंट आया है प्रदीप सलूजा, लिखते हैं, वो दौर बहुत अच्छा लगता था, लेटर लिखना, फिर उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल के आना, फिर ये इंतजार करना कि शो में लेटर शामिल होगा या नहीं। आज का दौर अच्छा है, अभी मैसेज किया और अभी शामिल हो गया। और ये है जनकपुरी न्यू दिल्ली से, कस्बा उगैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज और परिवार के सभी सदस्य। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर अपना नाम पता लिखकर भेजा करें तो प्लीज हमारे टॉपिक पर जरूर कुछ बताया करें। सुरेश चौरसिया साहब गंज चौराहा फरुखाबाद यूपी से ये लिखते हैं, मैं आपको 1965 और 1970 के युग के रेडियो की पुरानी यादें आप लोगों के साथ ताजा करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर कीजिए। लिखते हैं, मेरे पिताजी की बर्फ का थोक और फुटकर

की दुकान थी। समय मेरी उम्र 15 वर्ष के लगभग होगी। उस समय बिजली के बल्ब के रेडियो चलता था और उसे समय लिखते हैं मर्फी और बुश के रेडियो ज़्यादा बनते थे और खूब बिकते थे। मेरी दुकान पर बुश का रेडियो सुना जाता था। नया रेडियो करीब 400 या 500 रुपए में मिल जाता था। उस समय रेडियो दुकान पर बैठकर सुनता था और दुकान पर बजाने का सुनने का लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अरे बाप रे, बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी इन्होंने शेयर की। केवल 15 रुपये सालाना लगता था। रेडियो में उस समय एंटीना नहीं लगता था, रेडियो में एक पिन लगा होता था। उस पिन में एक लंबा तार जोड़कर छत पर बॉक्स में लगा देते थे, तब रेडियो बहुत साफ बजता था। और उस समय रेडियो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस पर सिर्फ गाने ही बजा करते थे, फरमाइशें नहीं सुनने में मिलती थी। फरमाइशी प्रोग्राम चालू हुआ मगर सिर्फ श्रोताओं के नाम पढ़े जाते थे, शहरों के नाम नहीं पढ़े जाते थे। मैं जब से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और आज भी कई रेडियो स्टेशनों पर फरमाइश भेजता हूँ और सुनता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी और रोचक जानकारियाँ इन्होंने दी हैं और साथ में कई लोगों ने अपने अनुभव केवल नाम और पते लिखे हैं, तो ऐसे लोगों से विनती है कि वो लोग अपनी बात भी लिखे। ग्राम पंचायत करेली से मैं जमीन अंसारी। 1980 का दशक भारत और दुनिया भर में सादिता, सामाजिक जुड़ाव और बड़े बदलावों का एक मिला जुला दौर था। सही कहा, 1980 का सामाजिक जीवन था। लोग सोशल मीडिया के बजाय मोहल्लों के नुक्कड़ों पर मिलते थे। चिट्ठियों के जरिए भावना व्यक्त की जाती थी और रहने सहने का तरीका था। गर्मियों की रातों में छतों पर पानी छिड़ककर चटाई बिछाकर सोने का चलन था। घरों में तकनीकें बहुत ही कम थी, जीवन बहुत सरल था और बहुत मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह गिने चुने सरकारी चैनल हुआ करते थे। और लिखते हैं कि पीसीओ लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल होता था। आर्थिक बदलाव हुआ। भारत में मारुति 800 जैसी कारों के आने से मिडिल क्लास को सपनों को पंख मिल गए। मौका मिला 1980 में रेडियो मनोरंजन समाचार और सूचना का सबसे बड़ा साधन था। उसे दौर में टेलीविजन हर घर में नहीं था, इसलिए रेडियो ही लोग रोजमर्रा सुनते थे। बाकी आगे इन्होंने वही सब लिखा है कि लोग घर में सारे लोग मिलजुल कर मनोरंजन किया करते थे और इसके साथ ही चिट्ठियां सुनते थे, मैच की कमेंट्री सुनते थे। बहुत ही अच्छी यादें इन्होंने ताज़ा की। आगे लोकेंद्र वर्मा लिखते हैं, बिल्कुल पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन लगाएंगे और रेडियो से तो हमारा सन 1980 से लगाव है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अनोखे लाल मौर्य लिखते हैं, 1980 का दशक और रेडियो की यादें हर उस व्यक्ति के दिल में एक खास जगह रखती हैं जिसने उस सुनहरे दौर को जिया। वो एक ऐसा समय था जब रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य की तरह एक सच्चा साथी और घर का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था। अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से। लाल मोहम्मद अंसारी लिखते हैं, 80 तो नहीं, हमने 1990 रेडियो सुनना शुरू किया। उस समय जब कहीं भी जाते थे तो रेडियो को बगल में दबा कर ले जाते थे। उस समय रेडियो पर गाना आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे पूर्वजन बताते हैं, हमारे गांव करेली में मुखिया जी की कोठी है, वहां चौपाल लगती थी। 1980 में लोग वहां खबरें सुनते थे। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेडियो था जिसको बैठ कर बहुत से लोग सुना करते थे। ये लालू मिस्त्री अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी थे। बलवान सिद्धू, रेडियो का हमें बहुत शौक था, कहीं भी जाते थे रेडियो साथ लेकर जाते थे। जब फरमाइश पूरी नहीं होती थी तो गुस्सा भी आ जाता था। लिखते हैं, 1994 की बात, कोई पुराना सा फिल्मी गीत सुनवा दे। और ये हैं बलवान सिद्धू, बिल्लू सिद्धू, गांव भंगाड़ा, जिला हिसार से, हरियाणा से। ये हैं बनवारी लाल जयपाल, लिखते हैं, रेडियो सुनते हैं। 1983 में रेडियो सच्चा दोस्त बना था और आज भी मेरे दोस्त की तरह है। मैं आज भी रेडियो के सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, खत लिखकर भेजता हूँ। और इन्होंने अपना पता लिखा है, गांव अरायान, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। अगला हमारे पास जो आया है कमेंट, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, ये लिखते हैं, रेडियो तो पहले हर घर में होता था और बहुत ही साफ आवाज सुनाई देती थी। आज इंटरनेट का जमाना आ गया तो रेडियो स्टेशन पर आए दिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन आज भी रेडियो से प्रसारित गीत और उद्घोषक महोदय की आवाज मधुर लगती है। मेरे गाँव की जनसंख्या लगभग 2000 है लेकिन रेडियो सिर्फ मेरे घर पर है। अगला हमारे पास कमेंट आया है राम बाबू मिश्र,

1980 में हम एक गुड़ बनाने का कोलू पर इंजन चलाया करते थे। इन्होंने वही सारी यादें ताज़ा की हैं जो कि इन्होंने कॉल पर हमें बताई थी। आगे हमारे पास ये आया है कमेंट बॉक्स में, कमेंट ये लिखते हैं, रेडियो मेरे बचपन का सबसे प्यारा और अनमोल जुनून रहा। आज के डिजिटल युग में भले ही टेलीविजन और इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन रेडियो की जुदाई आवाज और सादगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये है बरेली के साथ दिलशाद हुसैन, मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और श्रोताओं आगे भी कई लोगों ने, राम राव नितौड़ ने लिखा है, 1980 का दशक और रेडियो की यादें हर उस व्यक्ति के दिल में खास जगह रखती है जिसने उस सुनहरे दौर को जिया हो। ये बहुत ही अच्छा और मनोरंजक दौर था। उमेश कुमार गौड़ भी लिखते हैं, बिल्कुल पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे और फ़ोन लगाएंगे, और 1980 का इन्होंने ये लिखा है कि बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आगे ये हमारे पास विनोद नारायण कुशवाहा ने लिखा है, 1980 की बात की जाए तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन रेडियो का शौक बचपन से ही है और आज भी सफर जारी है रेडियो के साथ। यह है विनोद नारायण कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा।

आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। दोस्तों वाकई 1980 के दशक की यादें ताज़ा की आप सारे ही लोगों ने और बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को अपनी यादों से सजाया। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में एक नए मोड़ पर एक नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। अब अपनी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लकी 3। 5:45 का समय रहेगा कलामी शायर का। युवा दोस्त सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी आज शाम 6 बजे से। आज का सवाल होगा, भारत के प्रमुख लोक नृत्यों में गरबा किस राज्य से संबंधित है, और साथ होगी नजरानाई शाम। 6:30 का समय रहेगा ग्राम जगत का। इसमें होगा क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से सुविधाएं। इसमें डॉक्टर विशाल सिंह से बात की है कन्हैया ने। शाम 7 बजे का समय रहेगा कृषि पाठशाला का। दोस्तों, आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर आप जानेंगे बरेली के हालचाल कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे कल सुबह 9 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है कल सुबह 9:30 से। आपकी पसंद का समय रहेगा कल सुबह 10 बजे से। सबरंग कल 11 बजे से। श्रोताओं, कल दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा अनुरोध गीत आपके अपने पत्रों पर आधारित। कल दोपहर 2 बजे जनमंच। कल का विषय होगा सोशल मीडिया और AI का प्रयोग। सहयोगी होंगे क्षितिक गेरा और ऋतिक राज। कल शाम आपकी बात आकाशवाणी के साथ होगी एक नए विषय को लेकर। इसकी रिकॉर्डिंग होगी कल दोपहर 2 बजे से। भजन संध्या में आप सुनेंगे भजन कल शाम 5:05 से। आपका अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो बरेली कल शाम 5:30 से। युवा एक्सप्रेस आपके रेडियो सेट पर आ जाएगी कल शाम ठीक 6 बजे। कुछ खास है आज इस सेगमेंट में, कल आप जानेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के बारे में। कल शाम 6:30 पर किसान भाइयों का खुलेगा पिटारा कार्यक्रम किसान वाड़ी में। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा ग्राम जगत, चर्चा होगी शिक्षित बने तभी तरक्की संभव है। कल शाम 7:31 पर प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। दोस्तों, कल का विषय होगा क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे से। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। आज के इस भजन संध्या में आपने जिन स्वरों में भजन सुने वो थी अनुपम माधुरी, देविका पंडित, साधना सरगम और हेमा देसाई। इसी के साथ भजन संध्या यहीं पर समाप्त होती है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लकी 3।

हेलो हाय नमस्कार आदाब वेलकम खुशामदीद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लकी थ्री। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आपके 3 लकी लेटर्स शामिल किए जाते हैं और वो लेटर्स आए या फिर आप फेसबुक के माध्यम से भेजें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। फिलहाल ये हम पत्र शामिल करते हैं। लकी नंबर 1 पर हैं दोस्तों रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी। ये लिखते हैं फिल्म छुपा रुस्तम का एक गीत है ये चांद कोई दीवाना है। आगे ये लिखते हैं दोस्तों हम तो बस इतना ही कहेंगे चांद कोई सितारा न तोड़ दे, चांद कोई सितारा न तोड़ दे, बड़ा नाजुक है।

कोई हमारा न तोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, दिल बहुत नाजुक होता है और कहते ये हैं, कहते नहीं ऐसा माना भी जाता है कि दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह या पाप भी होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके दूसरे का अगर आप दिल जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ना भी नहीं चाहिए।

श्वेता, आगे इन्होंने इसी गीत के बारे में लिखा है कि इस गीत में अपनी मधुर आवाज से सजाया अलका यागी और कुमार सानू भी है इनके साथ में और इस गीत का म्यूजिक बहुत पसंद है इन्हें। म्यूजिक डायरेक्टर है आनंद मिलन साहब। वाकई बहुत सारे गीत ऐसे यादगार होते हैं जो वर्डिंग के साथ साथ उनके म्यूजिक भी दिलों पर छाप छोड़ जाते हैं। बहुत

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लकी थ्री, और लकी थ्री में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लकी नंबर टू पर जो आते हैं वो है मोहन सिंह रावत हल्द्वानी से। इन्होंने ये भेजा है, कमेंट लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को मेरा नमस्कार। लकी थ्री में मेरी पसंद का गीत है 2015 में प्रस्तुत फिल्म बजरंगी भाईजान से, जिसके बोल है जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिसे आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने, नीलेश मिश्रा के शब्दों को संगीत में बांधा है प्रीतम ने। आगे लिखते हैं, जिंदगी एक पहेली की तरह है जो हर पल अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे हम चाहते हैं। यदि वैसा हो जाए तो वो जिंदगी हमें बेहद खूबसूरत नजर आती है। ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, जिसके हर पल को हम जी लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं हमेशा वैसा ही नहीं होता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ हमारी चाहत के विपरीत भी घटित होता है, तो हमें ये जिंदगी बोझ और एक तरह

से कांटों का ताज लगने लगती है। जो लोग जीवन में संतुलन बैठा पाने की कला जानते हैं, उनका मुश्किल समय बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से जिंदगी के उतार चढ़ाव को ये गीत बेहद खूबसूरती से बयान करता है। उम्मीद है श्रोता साथियों को भी ये पसंद आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मोहन सिंह रावत ने कि बहुत सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं कि जब जिंदगी अच्छे मोड़ लाती है तो बहुत इंसान खुश होता है, लेकिन जब टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव आते हैं तो कई बार इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है, और ये टूटना उसे कई बार आत्महत्या की दहलीज तक ले जाती है। तो हमारा तो आप सारे श्रोताओं से यही कहना है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए जो पल है आप उसे जिए, एंजॉय करें। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में भी टेढ़े मेढ़े रास्ते आ गए हैं तो जैसे आपने हंस के मुस्कुरा के अपनी लाइफ को स्मूथली तरीके से चलाया था, उसी तरह से इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने का भी हुनर रखें।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लकी थ्री और लकी नंबर तीन पर जो आए हैं वो वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। ये लिखते हैं कि शो प्रेजेंटर को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। तो आप सब लोगों को भी हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। आगे ये लिखते हैं, अर्ज है जिंदगी में हसरतें कुछ होती है, वक्त को कुछ और मंजूर होता है। जी हाँ दोस्तों, लिखना बहुत प्यारी बात इन्होंने लिखी है। जिंदगी में हसरतें कुछ और होती हैं, वक्त को कुछ और मंजूर होता है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वही सब कुछ हो जाए, और होता भी है कई बार वही जो कि मन चाहता है। आगे ये लिखते हैं, यही मेरे साथ भी हुआ है। मैं बनना चाहता था डॉक्टर और किस्मत में लिखा था अधिवक्ता। कोई बात नहीं, डॉक्टर से अधिवक्ता बन गए वो भी अच्छी बात है। और जो भी इंसान की ख्वाहिश होती है तो यही रहता है कि ख्वाहिश से अगर इतर भी इंसान बनता है तो कुछ अच्छा ही बने, है ना। और आगे लिखते हैं, मेरे दिल के करीब किशोर कुमार का गाया गीत आ चल के तले तुझे ले चलूं, और फिल्म का नाम बताया है इन्होंने।

दूर गगन की छांव। बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे गाने की फरमाइश करते हैं जो कि गाना दूसरों के लिए एक नसीहत देता हुआ होता है, दूसरों की जिंदगी को प्रेरणा देता हुआ होता है। और इसी तरह के गानों से सजा हुआ था आज का हमारा ये प्रोग्राम लकी थ्री। और लकी थ्री के जो लास्ट हमारे लिसनर थे वारिस अली खान, उन्होंने भी एक इतना प्यारा ही सॉन्ग हमसे फरमाइश के लिए फरमाइश की है, जिसको सुन के हमें उम्मीद है कि हमारे सारे श्रोता ही बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और उस गीत से कुछ सबक हासिल करेंगे।

जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने रेडियो दोस्त मुनव्वर जहाँ को दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम लकी थ्री को समाप्त करने की। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अगली बार एक नए लिसनर्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: श्रोताओं 100.4 FM बरेली आपने ट्यून किया है। अब समय हुआ है कलामी शायर का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगी बेबी जैदी सुनैना जिलानी से कलाम।
1: आदाब, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। दोस्तों, जब दिल के जज्बात लफ्जों की शक्ल इख्तियार करते हैं तो वो सीधे रूह को छू लेते हैं। आज इस खास महफिल में मैं अपनी एक गजल पेश कर रही हूँ, मुलायजा फरमाएं। पड़ता है मेरी चश्म में आलम मलाल का, पड़ता है मेरी चश्म में आलम मलाल का, गोया जवाब मिल गया मेरे सवाल का। छाने लगा है जादू तेरा मुझ पे इस कदर, दीवाना कर गया मुझे आलम विशाल का। ना झुर्रियों का डर रहा, ना फिक्र

0: उम्र की, न झुर्रियों का डर रहा, न फिक्र उम्र की, जब से पड़ा है मुझ पे ये साया कमाल का। बेचैनियों में दिल ने जो गोते लगाए हैं, बेचैनियों में दिल ने जो गोते लगाए हैं, देखा है इन निगाहों ने मंजर जलाल का। मुझ पे खिली है आके नई रुत शबाब की, मुझ पे खिली है आके नई रुत शबाब की, जादू है ये तुम्हारे अनोखे ख्याल का। देखा है तेरे साथ ही वक्ते उरूज भी, देखा है तेरे साथ ही वक्ते उरूज भी, मुश्किल है अब तो झेलना सदमा जबाल का। बातों में जो हवाले थे लैला ओहीर के, बातों में जो हवाले थे लैला ओहीर के, किस्सा बनेगा ये भी किसी दिन मिसाल का। हैरत में है वो देख के खुद को ही मुझ में अब, हैरत में है वो देख के खुद को ही मुझ में अब, उतरा है मुझ में अक्स जो बनके जमाल का। चेहरे पे नक्श कर गया यादों की झुर्रियाँ, चेहरे पे नक्श कर गया यादों की झुर्रियाँ, नैना है आईना किसी गुजरे साल का, नैना है आईना ही किसी गुजरे साल का। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी गज़ल के साथ एक गज़ल और जो कि आपके दिल को छू जाएगी, और कुछ इस तरीके से कि हम उनके कह कहों में भी गम देखते रहे, हम उनके कह कहों में भी गम देखते रहे, दुनिया ना देख पाई जो हम देखते रहे। इंसान पुकारती है दुनिया जिसे यहाँ, इंसान पुकारती है ये दुनिया जिसे यहाँ, हम तो उसी में अक्से सनम देखते रहे। सबकी नज़र तो बस यहाँ मंजिल की सिमत थी, सबकी नज़र तो बस यहाँ मंजिल की सिमत थी, हम रास्तों के सारे ही खम देखते रहे। यूं था यकीन कि थाम ही लेंगे वो हाथ को, यूं था यकीन कि थाम ही लेंगे वो हाथ को, छूटा जो हाथ टूटा भरम देखते रहे। दुनिया की रौनकों में वो खोए रहे, मगर खुद पे हम उनके जुल्म सितम देखते रहे। महफिल में सबने देखा लबों के सुकूत को, महफिल में सबने देखा लबों के सुकूत को, बस हम ही उनके नैना को नम देखते रहे, बस हम ही उनके नैना को नम देखते रहे। रिवाजों की भट्टी में जलना पड़ेगा, रिवाजों की भट्टी में जलना पड़ेगा, पुरानी डगर को बदलना पड़ेगा। जमाने की नजरों में तौहीन होगी, जमाने की नजरों में तौहीन होगी, तो क्या अब हमें डर के चलना पड़ेगा। खुदी को अगर अपनी रखना है कायम, खुदी को अगर अपनी रखना है कायम, जमाने से रास्ता बदलना पड़ेगा। वो बदलेगा अपनी जफाओं से कब तक, वो बदलेगा अपनी जफाओं से कब तक, हमें चुप ही रहकर पिघलना पड़ेगा, हमें चुप ही रहकर पिघलना पड़ेगा। अगर कैद से अपनी चाहे रिहाई, अगर कैद से अपनी चाहे रिहाई, इस अहद को लौ में जलना पड़ेगा, इस अहद को लौ में जलना पड़ेगा। खुदी का आलम चाहते हो तहफ्फुज़, खुदी का अगर चाहते हो तहफ्फुज़, सफर में अकेले ही चलना पड़ेगा। यह दिल प्यार करते रहेंगे हमेशा, यह दिल प्यार करते रहेंगे हमेशा, हरीफों को अब हाथ मलना पड़ेगा। किताबों से फन जिस्त का कब मिला है, बुजुर्गों के साए में चलना पड़ेगा। भले पाँव के छाले कितना सताएं, भले भले पाँव के छाले कितना सताएं, मगर मंजिलों तक तो चलना पड़ेगा, मगर मंजिलों तक तो चलना पड़ेगा। बचाए जो उम्मीद रखनी कि लो, हवा को तड़पना मचलना पड़ेगा। भरे हैं समंदर ही जिनमें हमेशा, भरे हैं समंदर ही जिनमें हमेशा, उन्हें नैना प्यासा उछलना पड़ेगा, उन्हें नैना प्यासा उछलना पड़ेगा।
1: गजल के चंद अशआर पेश कर रही हूँ।

है एक कैफ सा आलम है मेरे दीदाए तर में। इस शेर पर आप लोगों की खास तवज्जो चाहती हूँ। ये चांद सितारों की के सूरज

किस तरह जी रहे हैं तेरे शहर में ये लोग, सब कुछ है मगर

था जो कल मुझसे हंसी, चेहरा सफर में बिछड़ा था जो कल मुझसे हंसी, चेहरा सफर में। मक्ता पेशे, ए दोस्त गरूर।

जिसे मैं देख के खुद को संवारती हूँ बहुत, जिसे मैं देख के खुद को

उसी के वास्ते मन्नत भी मानती हूँ बहुत। इस शेर पे भी खास तवज्जो चाहती हूँ। वो जिससे है कोई रिश्ता।

है कि वो मुझसे रूठता ही नहीं। मुझे ये गम है कि वो मुझसे रूठता ही नहीं। ये सोच सोच के मैं खुद से रूठती हूँ बहुत। ये सोच सोच के मैं खुद

श्रोताओं, अभी आपने सुना बेबी जैदी और सुनैना जिलानी से कलामी शायर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी, जिसे लेकर आबिदा स्टूडियो में

हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूँ आपको और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और साथियों, आज मैं आपको बता दूँ, आज हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट नज़राना शाम है। और जी हाँ, मुझे मालूम है कि

आप हर फ्राइडे को इस सेगमेंट का इंतजार करते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हमने आपके लिए बहुत ही प्यारे से नज़राने शाम की पेशकश चुन करके रखी है जो आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम और भी बातें करें, उससे पहले एंजॉय करते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: भारत में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। सदियों जब स्वामी विवेकानंद मंच पर आए तो उन्होंने पश्चिमी वक्ताओं की तरह औपचारिक लेडीज एंड जेंटलमैन ना कहकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इन 5 शब्दों में, सदियों सिर्फ इन 5 शब्दों में छुपे अपनेपन और आत्मीयता को सुनकर पूरा सभागार लगभग 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। आइए साथियों अब ये जानते हैं कि इसे दिग्विजय दिवस क्यों कहते हैं। तो दोस्तों दिग्विजय का अर्थ होता है सभी दिशाओं को जीतना। स्वामी विवेकानंद ने ये जीत किसी तलवार, सेना या साम्राज्य के बल पर नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, वेदांत, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व के विचारों से जीती थी। उस दौर में जब पश्चिमी दुनिया भारत को केवल सपेरों, अंधविश्वासों और गरीबों का देश मानती थी, स्वामी जी के इस भाषण ने पहली बार दुनिया के सामने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति का परचम लहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिकता, हठधर्मिता वगैरह ने इस सुंदर पृथ्वी को लंबे समय तक जकड़े रखा है और दुनिया को हिंसा से भरा है। उन्होंने गीता का उदाहरण देते हुए समझाया दोस्तों कि जैसे अलग अलग स्रोतों से निकलने वाली नदियां अनंतता समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है पर सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि वे एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सिर्फ टोलरेशन ही नहीं सिखाई बल्कि सभी धर्मों को। आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी। और साथियों हम आज मना रहे हैं दिग्विजय दिवस जो कि हर साल 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की याद में मनाया जाता है और इसे भारत में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। साथियों जब स्वामी विवेकानंद मंच पर आए तो उन्होंने पश्चिमी वक्ताओं की तरह औपचारिक लेडीज एंड जेंटलमैन न कहकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिकता, हठधर्मिता वगैरह ने इस सुंदर पृथ्वी को लंबे समय तक जकड़े रखा है और दुनिया को हिंसा से भरा है। उन्होंने गीता का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे अलग अलग स्रोतों से निकलने वाली नदियां अंततः समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है पर सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि वे एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सिर्फ टोलरेशन ही नहीं सिखाई बल्कि

सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी किया। फिलहाल दोस्तों ये तो थी दिग्विजय दिवस पर हमारी बातचीत, और आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।

दोस्तों, आपने ज्वाइन किया है 100.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली और आप बने अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। ये महफिल नहीं बस दिलों का नगर है, ये महफिल नहीं बस दिलों का नगर है, यहाँ हर तरफ शायरी का असर है। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब वक्त हो चला है नजाना शाम सेगमेंट का, तो आइए नजाना शाम सेगमेंट में सुनते हैं ये प्यारी पहली पेशकश।

आप सुन रहे हैं आपकी अपनी फेवरेट आवाज आरजे आबिदा को। आपने ट्यून किया 100.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बरेली और सेगमेंट चल रहा है नजराना शाम। तो आइए नजराना शाम में सुनते हैं ये एक और पेशकश।

साथियों अभी इंजॉय की आपने ये नजाना है शाम में खूबसूरत गजल, और अब घड़ी ये बोल रही है हमसे कि आप लोगों से हमें इजाजत लेनी होगी। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाश वाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसे लेकर किशन पाल स्टूडियो में आ चुके हैं।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया किशन पाल उर्फ कन्हैया की ओर से राम राम। और आज हम आपको मनपसंद कार्यक्रम लेकर आपके रेडियो सेट के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान को सही तरीका रखें। और जहाँ खान पान की बात आती है तो हमारे बहुत सारे सवाल जो हैं मन में उठने लगाते हैं कि भैया हमें अपना खान पान कैसे रखने हैं, किस तरीक़ा से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, संतुलित जो आहार है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। हम संतुलित आहार को अगर सेवन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो शरीर है वो विकास और स्वस्थ रहन में, रोग मुक्त रहन में बहुत ही हम अच्छे तरीक़ा से जो संतुलित आहार लेंगे तो अपने शरीर को रख सकते हैं। क्योंकि संतुलित आहार में ही आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक स्वस्थ और संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करने के साथ साथ उसमें विटामिन, खनिज और पोषण संबंधी सभी जो चीज़ें होती हैं वे मौजूद होती हैं। और संग संग में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वाको निर्माण करने में संतुलित आहार बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। श्रोताओं, संतुलित जो भोजन है वो हमारे शरीर को सामान्य वृद्धि करने के साथ साथ में जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं उनके कार्य हैं उनको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चा हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो रोग लगते हैं जैसे मधुमेह है, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, कैंसर के विकास जो

0: बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमारे वयस्कन में होने की संभावना बचपन से ही पनप जाती है, और अगर हम संतुलित आहार देंगे तो निश्चित ही इन बीमारियों से अपने जो वयस्क हैं उनके लिए बचा सकते हैं। एक स्वस्थ आहार हमारी हड्डियों के मजबूत करने के साथ साथ जो हमारा मस्तिष्क है बाकी विकास में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बात आती है कि भैया जो संतुलित आहार में होत का है, तो जा में भैया कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, ये सब हमें जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वे संतुलित आहार से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो आपको जो ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान करते हैं और आपके आहार में जो 50 से 60% होना जरूरी है। हालांकि जो हमारे इसके घटक हैं जिनको हम सेवन करके अपने कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं, बामें जैसे गेहूं है, दलिया है, फलियां हैं, रागी है, बाजरा है, जौ है, ऐसे जो मोटे अनाज हैं इनको खाए के हम कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। और वहीं एक चीज़ और ज़रूरी है जो हमारी मांसपेशियों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और साथ ही साथ त्वचा और बालन के विकास में मदद करते हैं, वो है भैया प्रोटीन। और प्रोटीन हमें फल और सब्जियों से मिलती है, इसके लिए हमें जो फल और सब्जी हैं उनको ज़्यादा सेवन करना चाहिए और हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए पाचन क्रिया और शरीर को जो तापमान है वो सही रहे और जाके लिए हमें बसा को सेवन कर दो। यह एक बसा जो है वो हमारे शरीर में जो चीज़ें होती हैं उनकी पूर्ति करता है। और जाके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विटामिन, और जो हमें सूर्य के प्रकाश से खान पान की चीज़ों से सबसे मिलते हैं। और आपने सुनी होगी भैया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये ऐसी विटामिन्स हमें अब मिलेंगी काहे से, सवाल जो उठता है भैया। तो जो फल सब्जियां और पालक साग जो हम खाते हैं इनसे भरपूर मात्रा में विटामिन मिल जाती हैं, और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत जितनी विटामिन की होती है वो अगर हम इन चीज़ों को सेवन करेंगे तो पूर्ति कर सकते हैं। अब बात आती है भैया खनिज की, तो खनिज एक ऐसो भोजन है जो हमारे अंगन के विकास को बढ़ावा देता है, जहाँ में मछली, मांस, फलियां, अनाज और सुपारी बीज इनको सेवन हम कर सकते हैं। और बातचीत और करेंगे, लेकिन बात से पहले अब चलते हैं भैया अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में। और आज हम पहुँचे हैं एक गांव में जहाँ पर हमारी बात हुई डॉक्टर विशाल सिंह से, जो आज हमको बता रहे हैं कि ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य हेतु तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कितनी सुविधाएं दे रहा है, जाके बारे में अब जान लेते हैं डॉक्टर विशाल सिंह से।
1: श्रोताओ, आज हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में निकले हैं एक गांव की तरफ, और गांव में हमने देखा कि ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफी भीड़भाड़ हमको दिखाई दी, और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लिखा हुआ है इस पर बड़ा गांव। तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे पास में बैठे हुए हैं, जान लेते हैं आपका परिचय क्या है साहब।
2: मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं फार्मासिस्ट के पद पर यहाँ पर तैनात हूँ।
1: फार्मासिस्ट के पद पर आप यहाँ पर तैनात हैं। आज हमारी आपकी बातचीत कार्यक्रम ग्राम जगत के लिए, हम ग्रामीण श्रोताओं के लिए बहुत सारी जानकारी आपसे जानेंगे, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है और कभी कभार बरसात होती भी है और खुल भी जाती है, ज्यादातर समय धूप रहती है। ऐसे में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है?
2: ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में मोस्ट रूप से साफ सफाई का, जल भराव ना होने दें, अगर कहीं जल भराव हो भी गया है तो उसमें थोड़ा जो काला तेल या मिट्टी का तेल होता है उसका छिड़काव करें, और मुख्य रूप से तो साफ सफाई का ही विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में।
1: अच्छा।
2: जहां बाढ़ आने की संभावना है, हमारी टीमें भी वहां पे समय समय पर जाकर कैंप कर रही हैं और हम भी पूर्ण रूप से यहां पे तैयार हैं। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हम पूर्ण रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर आकर संपर्क करें, हमारी टीमें सदैव तैयार हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए।
1: जी, चूंकि आप ग्रामीण परिवेश में, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, जानकारी का अभाव होता है, कहीं लोकल में दवाई ले लेते हैं और सोचते हैं क्या करेंगे वहां जाकर के, चूंकि हर किसी की नजर

0: में आज ये है कि सरकारी जगह पर अगर जाते हैं तो वहां पर उपचार सही नहीं होता है और अच्छी तरीके से दवाई नहीं मिलती। हमने आपके यहाँ साक्षात प्रमाण में देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, तो ये लोगों का विश्वास कहें कि आपकी मेहनत,
1: ये लोगों का विश्वास भी है और हमारी मेहनत भी है, क्योंकि हम बिना किसी छुट्टी के लगातार अपना हॉस्पिटल खोलते हैं और बिना किसी विशेष कारण के हॉस्पिटल बंद नहीं करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी सरकार सुविधा पब्लिक के लिए दे रही है, ज्यादा से ज्यादा दवाएं हमारे यहाँ से वितरित हों, और हम कर भी रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे आसपास के ही क्षेत्र के लोग नहीं, हमारे पास अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ओपीडी चलती है और डेली 500 प्लस 400 प्लस पेशेंट हमारे यहाँ सेवाएं ले रहे हैं। और हमारी कोशिश भविष्य में भी यही रहेगी कि सरकार जिस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल बना रखे हैं उसी उद्देश्य को हम पूरा कर सकें, हम भी मेहनत कर रहे हैं और इसमें हमारे जन लोगों का भी सहयोग है।
0: जी डॉक्टर साहब, गांव के लोग कम जागरूक होते हैं, या यूं कहें कि अब तो पीढ़ी पढ़ लिख रही है, जागरूक हो रही है, वहीं पर पिछले दौर की अगर बात करें तो लोग कम पढ़े लिखे हैं, विश्वास कम करते हैं, तो ऐसी समस्या जब आती है लोग आपके पास दवा लेने आते हैं, जनरली इस समय बहुत सारी भीड़ है, तो लोगों को कैसे समझा पाते हैं आप?
1: नहीं, हम उन्हें हर तरह से जागरूक करने की कोशिश करते हैं और समझा भी पाते हैं, और जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं बहुत लोग जागरूक भी हुए हैं, सरकारी तंत्र के प्रति उनका विश्वास भी पैदा हुआ है, और हम जितने भी ओपीडी हम डेली करते हैं, चाहे वो कुत्ते काटे के विषय में हो, चाहे वो जल भराव के विषय में हो, चाहे वो संचारी रोग के विषय में हो, हम बीच बीच में अपने लोगों की गोष्ठी भी करते हैं और सब लोगों को इकट्ठा करके हम उन्हें सुचारू रूप से समझाने का प्रयास करते हैं, और हमने बहुत लोगों को क्षेत्र में जागरूक किया है और भविष्य में भी इस तरह करते रहेंगे।
0: डॉक्टर साहब, इस समय खासकर चूंकि आपने कहा था कि हमारा जो एरिया है बाढ़ प्रभावित भी इसमें आता है, लोकल के भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस समय खास करके कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों में चल रही हैं और आगे हो सकती हैं?
1: इस टाइम सबसे ज्यादा बुखार और वायरल से पीड़ित लोग हो रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम भी चल रही है, और साफ सफाई न होने की वजह से मच्छरों से बचाव करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोएं, और पानी जल भराव है, खेतों में भी धान की फसल है उसकी वजह से भी जल भराव है, और बारिश का तो जल भराव है ही, तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और दवाइयों की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, हम बाढ़ क्षेत्रों में और बीच बीच में अन्य क्षेत्रों में भी हम अपना कैंप लगा के जागरूक भी कर रहे हैं, जांचें भी कर रहे हैं, और हर चीज की सुविधा हमारे हॉस्पिटल पर उपलब्ध है।
0: बात कही थी आपने जांच की, तो जब लोग आते हैं तो किस परिस्थिति में आप जांच कराते हैं, कैसे पहचानते हैं ये व्यक्ति हम साधारण अगर दवा दे देंगे तो सही हो जाएगा और इसकी हमें जांच की आवश्यकता है, क्या परिस्थितियां होती हैं?
1: देखो, परिस्थितियां ये होती हैं कि अगर बुखार चल रहा है, सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द वगैरह बताता है पेशेंट, तो हमें उसकी जांच भी करानी पड़ती है, और वैसे अभी फिलहाल टाइफाइड भी कुछ केसों में है और वायरल तो चल ही रहा है
0: जी,
1: तो जिसमें हमें ज्यादा पेशेंट दिक्कत बताता है, सिर दर्द है, बदन दर्द, तो उसमें हम जांचें कराते हैं।
0: डॉक्टर साहब, वायरल जो आपने बताया था, जिस व्यक्ति को हो वो अपने घर परिवार में रहता है, आसपास के लोगों के आसपास भी आता जाता है, क्योंकि गांव है, गांव में लोग इकट्ठे समूह में रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये वायरल जिस व्यक्ति को हो उससे दूसरे में ना फैले और जो ग्रसित है वायरल से उसी तक सीमित रहे, इसके लिए लोगों को क्या सलाह देंगे जो आज हमारी आपकी बातचीत को हमारे आज के कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से सुन रहे हैं?
1: हम यही सलाह देते हैं कि जब तक दवाइयां चलें थोड़ा समूह में ना बैठें और कोशिश करें कि थोड़ा आराम करें और एकांत में आराम करें।
0: जी, तो वायरल की क्या संभावनाएं रहती हैं?
1: संभावना ये एक दूसरे को संचारी रोग में आता है, लग जाता है
0: जी,
1: ठीक है ना, लेकिन अब तो वैसे भी सितंबर लास्ट चल रहा है, ये 10-20 दिन की समस्या है, ज्यादा नहीं है।
0: अच्छा, फिर ये समाप्त हो जाएगा?
1: हाँ, ये 10-5 दिन की समस्या।
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं, तो अब आपने कहा कि ये जो वायरल है इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय में आपने हमारे श्रोताओं को बता दिया, वहीं पर और बहुत सारे रोग होते हैं जैसे टीबी है और जो लंबे समय में ठीक होने वाली बीमारियां हैं, क्या आपके माध्यम से उनका भी उपचार किया जाता है?
1: हाँ, हमारे यहाँ पे हमने अपने हॉस्पिटल पे डॉट सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे उनके टीबी के लिए जांचें और दवाइयां सब उपलब्ध हैं, और क्षेत्र के लोगों के लिए सब सुविधा जो होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे बंदर ERU वैक्सीन भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है, बंदर काटा, कुत्ते काटे, ये सब चीज की उपलब्धता है, और टीबी की दवाइयों का भी पूर्ण रूप से उपलब्धता है।
0: आपने कहा था कि बंदर काटे की और कुत्ता काटने की दवा आपके यहाँ उपलब्ध है। गांव में बहुत तरह की भ्रांतियाँ चलती हैं कि कहीं पानी पिला दो, कहीं कुछ लोग करवा लेते हैं, ऐसा लोगों को करवाना चाहिए?
1: नहीं, ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। और मैं यहाँ पे लोगों को जागरूक ही करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ क्षेत्र में देखा है कि वो तीसरे दिन

0: टीका लगवाने आते हैं
1: जी,
0: मैं उन लोगों को भी थोड़ा समझाता हूँ 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लग जानी चाहिए और इस पे लोगों को जागरूक होना चाहिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे हम लोगों को समझा रहे हैं, लोग इस चीज से उभर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर कुत्ता या बंदर काट लेता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से घर परिवार में रहना चाहिए और क्या क्या क्रियाएं हैं जो नहीं करना चाहिए खासकर
0: इसमें?

0: जो नहीं करना चाहिए खासकर
1: इसमें अगर कोई भी जंगली जानवर जैसे कुत्ता बंदर सियार वगैरह काट लेता है तो सबसे महत्वपूर्ण है उस जगह की धुलाई।
0: अच्छा,
1: कम से कम 10 से 15 मिनट जैसे नल है टंकी है बहते पानी के नीचे उस अंग को करना है और 10 से 15 मिनट खूब साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है। ये प्रथम उपचार है।
0: अच्छा,
1: अगर आपने उसे पूर्ण रूप से 10 से 15 मिनट खूब बढ़िया तरीके से उसे धुल लिया है तो आप समझे कि आपने काफी हद तक उसका बचाव वहीं पे कर लिया है और 24 घंटे के अंदर टीकाकरण अवश्य कराएं।
0: अच्छा, 24 घंटे के अंदर आपके पास उनको टीकाकरण कराने के लिए आना चाहिए?
1: आना चाहिए।
0: ये जो टीकाकरण है वो लगभग एक व्यक्ति को जब कुत्ता या बंदर या स्यार काट लेता है तो उसे कम से कम कितने लगवाने चाहिए?
1: ये कम से कम 4 टीके लगवाने चाहिए।
0: अच्छा, पूर्ण रूप से कितना होता है?
1: पूर्ण रूप से भी 4 ही होता है।
0: अच्छा, यानी कि पूरी जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। सरकार का भी प्रयास है कि लोग जो गांव क्षेत्र में रह रहे हैं उनको जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उन पर अच्छी तरीके से लाभ मिले, सही तरीके से वो अपना जो स्वास्थ्य है वो सही रख पाए। डॉक्टर साहब, सरकार के प्रयास के साथ साथ आपका भी प्रयास हमने देखा है, सराहनीय है, लेकिन वहीं पर गांव के लोगों को अंधविश्वास से या बात करें जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर अग्रसर किया जाए, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ मोहित किया जाए, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है? लोगों को किस तरीके से समझाते हैं, क्या करते हैं?
1: हम लोगों को यही समझाते हैं कि अंधविश्वास में ना पड़े। और जहां तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, हमने अपने पूरे क्षेत्र को लगभग जागरूक कर रखा है। हमारे पास टीकाकरण भी कंटिन्यू लोग आते हैं, दवा लेने भी कंटिन्यू लोग आते हैं और मैंने देखा है कि इस चीज से हमारा क्षेत्र उभरने की कोशिश कर रहा है और हमारा भी प्रयास भविष्य में जारी रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, मौसम परिवर्तन होगा, अभी आपने कहा कि वायरल चल रहा है, सितंबर का ये महीना है। हम बात करें कि अगले हमारे जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, चूंकि आप फार्मिस्ट के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं, तो आगे लोगों को इस महीने से और आगे तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी?
1: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, सुबह शाम की सर्दी शुरू हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि कपड़ा पहनना इग्नोर करते हैं।
0: जी,
1: तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खास तौर से अक्टूबर 10 या 15 अक्टूबर के बाद से जैसे ही ठंडा सुबह शाम होना शुरू हो जाता है तो थोड़ा कपड़ा पहनना शुरू करें और बिना कपड़ों के ना घूमें, ताकि वो सर्दी जुकाम वगैरह से बच सके।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारी आपकी बातचीत हुई है, बहुत अच्छा आपने जो सरकार की योजनाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से संचालित की जा रही हैं और लोगों को उससे लाभ दिलाने के लिए सरकार का प्रयास है, उसमें आप भी बड़े तन मन धन के साथ जुड़े हुए हैं, हमने देखा है। चलते चलते जो श्रोता हैं हमारी आपकी बातचीत को सुने, संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
1: संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूँ, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बरसात का मौसम है, पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर वगैरह की साफ सफाई रखें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, हो सके तो मच्छरदानी का उपयोग करें।
0: इस संक्रामक रोगों आगे आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रहें, इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जाती हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण श्रोतन के लिए किस तरीका से काम कर रहा है और कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं बेहतर तरीके से उनको मिल सकती हैं। और अब बातचीत आपसे जारी रहेगी, लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं जो संदेश।
3: ये पकौड़ी तो बहुत टेस्टी है।
4: बाजरे की पकौड़ी है।
3: बाजरे की पकौड़ी, वाह।
4: लोगों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो जैसे श्री अन्न के व्यंजन अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं और पाचन सुधार में मदद करते हैं।
3: अच्छा भाभी,
4: श्री अन्न से रोटी, दलिया, खिचड़ी, लड्डू, पोहा आदि बना सकते हैं।
5: श्री अन्न अपनाए, स्वास्थ्य बनाए।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने उप कृषि निदेशक से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: और श्रोताओं, अब जानकारी के साथ साथ कुछ गौनी बजनी हो जाए और पहले लोकगीत जो है आज के कार्यक्रम को आपके बीच में, अखियां हैं प्यासी प्यासी, और इस लोकगीत को सुनने के लिए सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से कुछ श्रोता ने नाम अपने हम तक लिख करके भेजे हैं। ग्राम्बा पोस्ट गोठा खंडवा से लिख रहे हैं रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा और सलोनी मिश्रा। आप लिख करके भेज रहे हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम।

और श्रोताओं, बात करें आहार की और अपने स्वास्थ्य की। तो अगर हम अपने आप को अधिक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो संतुलित आहार के साथ साथ हमारे घर परिवार के लोग जो रहते हैं उनके लिए आप जानते हैं छोटी मोटी चोटें लगी जाती हैं, और चाहे वह खुली चोट हो या भैया गांव में कहते हैं मुद चोट हो, जाके प्राथमिक उपचार के लिए

हमें अपने घर पे छोटे एक बॉक्स में बना करके जो कुछ चीज़ें हैं वे डॉक्टर की सलाह के अनुसार रखनी चाहिए, और ये आने वाले समय में हमें बहुत ही जो है लाभप्रद साबित होंगी। क्योंकि आने वाले समय की हम बात करते हैं तो हमको और आपको किसी को नहीं पता है कि किस समय हमारे सामने किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और जब तक हमें अच्छी तरीका से उपचार मिल पावे ता से पहले हमारे घर पे प्राथमिक उपचार के तौर पे जो चीज़ें रखी होंगी उनको लेकर के हम अपने आप को भैया स्वस्थ रख सकते हैं। और जब तक हम अपने उपचार के लिए पहुँचें बा से पहले हम अपने घर पे भी थोड़ा बहुत उपचार कर सकते हैं, जिससे कि हमें तुरंत राहत मिल जाएगी और भैया चोटें हमारे जहाँ शरीर पर लग जाती हैं वे लंबे समय तक के लिए अपनी यादें छोड़ जाती हैं। जी हाँ, किसी तरीका को अगर निशान हमारे पैर में और हाथ में या मुंह पे लग जाते हैं तो भैया हमें उस समय की याद दिलाता है जिस समय हमारे वह चोट लगी हुई। और अगर प्राथमिक उपचार के तौर पे हमारे घर पे कुछ चीज़ें होती हैं तो तुरंत अगर हम उसको ले लेते हैं तो भैया जो निशान है संभवतः वे कम आने की संभावना बनी रहती है। बातचीत आपसे जारी रहेगी, लेकिन बासे पहले अब आपको मनोरंजन करा देते हैं एक और लोकगीत से। जय स्वर दे हैं ओम प्रकाश वा।

भाइयों बहुत कुछ समझाया आज निंदना ने, लेकिन जब कमला नहीं मानती तो खुशाल सिंह कहने लगे हमारी बहन कमला तो नहीं मान रही है ना जाएंगी हमारे झोपड़ियों पर, लेकिन थोड़ी देर को जीजा तुम अगर काली रोक दो तो मैंने तो तुम्हारे दर्शन करिए लाए, एक का मेरी रानी जो है सामल वो भी तुम्हारे दर्शन कर लेगी तो होता क्या है।

और श्रोताओं, इस लोकगीत को सुनने के लिए हमें कुछ नाम लिख करके भेजें ग्राम दूनी नगर बदायूं से, मुन्ना सिंह कठेरिया, विशाल संगम, विभू आदर्श, और आप हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा गुड़िया, सुरभी ऋचा, ग्रामवा पोस्ट ललौआ मितौली, जिला खीरी से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद के साथ साथ भैया, अब कार्यक्रम को समय जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, अब समय जो है हमें इजाज़त ना दे रहा है और कोई बातचीत या चर्चा आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से करी जाए, तो अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया कन्हैया को यहीं पर अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारी राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। शाम के 7 बज चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कृषि पाठशाला।
1: कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को राम राम। और साथियों, इस कृषि पाठशाला के प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। और आज की कृषि पाठशाला का विषय है ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु कम लागत वाले आवासीय संशोधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश सिंह जी को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IVRI इज्जत नगर बरेली से। और हमारे साथ आज एक किसान भाई हैं जो कि धौरा टांडा से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, श्री रवि कुमार जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: कृषि पाठशाला की शुरुआत करते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं वो कुछ सवाल लेकर आज इस कृषि पाठशाला में उपस्थित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई डॉक्टर साहब से अपना सवाल करें।
3: धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को जो तापमान होता है, जो बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, उससे बचाने के लिए किस तरह का सेट या व्यवस्था रखें उनके आवास की?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों को गर्मी लगती है, पशुओं को भी इसी प्रकार से गर्मी लगती है। और जो हमारे उत्पादक पशु हैं, जिनसे हम दूध ले रहे हैं या जिनको हम मांस के लिए पाल रहे हैं, तो उनको अपने शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और अगर हम उनको बाहर से ठंडा रखने का कोई अगर इंतजाम नहीं करते हैं, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं, जो ऊर्जा उनके प्रोडक्शन में लगनी चाहिए थी, इसीलिए आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में अगर हमने ठीक से व्यवस्था नहीं की तो उनका उत्पादन घट जाता है, चाहे वो दूध का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो या उनकी ग्रोथ हो। तो इसलिए हमें अलग से टेम्परेचर को शेड के, जो पशुशाला के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पशु अगर धूप में बंधा हो तो कम से कम छाये में ही उसको बांध लें। दूसरा एक ये है कि हम उसको शीतल पानी पिलाएं। क्या होता है कि पशु बंधा हुआ है और जो अगर खुला है तो जो पानी भरा हुआ है, चाहे वो गर्म हो गया हो कुछ हो, तो थोड़ा सा वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेता है, मगर पेट भर के पानी नहीं पीता, जितना कि जो उसकी आंतरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उसके लिए उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी दो प्रकार से पशुओं को जरूरत है, एक तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा जो उसने खाया पिया है उसको पाचन करने के लिए। तो एक मुख्य ये है कि हमको उसको छाए में पहले बांधना चाहिए, चाहे वो पेड़ के नीचे बांधे या पशुशाला के नीचे बांधे। दूसरा, ठंडा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके साथ

0: साथ साथ तमाम तरह के जो हैं प्रयोग किए गए हैं, पशुओं की छतों पे मॉडिफिकेशन किया गया है। कई बार हम पशुओं की छतों पर पेंट कर देते हैं, आजकल एंटी रिफ्लेक्टिव पेंट आ रहे हैं। अगर जो पशुशाला की छत आपकी सीमेंट की चादर की बनी है या टीन की बनी है, तो उसके बाहरी ऊपरी सतह पे हम अगर पेंट कर दें तो जो सूर्य से गर्मी आ रही है वो परावर्तित हो जाती है और सेट के अंदर का टेम्परेचर कम होता है।
1: जी जी, रवि कुमार जी, और भी सवाल आपके पास हैं तो अगला सवाल आप कीजिए डॉक्टर साहब से।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में पशुओं के लिए जैसे छायादार पेड़ उसमें तापमान को कम करने के लिए उपयोगी है?
0: बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। अब देखिए, पूर्व में भी जो पशु हैं वो तो बाहर ही रहते थे, और अगर हम शेड में भी पशु रह रहे हैं तो उसके आसपास अगर हमने पेड़ लगा दिया तो जो ये प्राकृतिक वातावरण शीतलता है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये दो काम करता है, एक तो वातावरण को शीतल लगता है और वायु को भी शुद्ध रखता है। क्या होता है कि गर्मी के टाइम में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पशु आप देखिए थोड़ा हांफने लगता है, तो उसको जो है शुद्ध वायु की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर हम शुरू में नहीं हो, मगर अगर हम वृक्षारोपण कर देते हैं पशुशाला के आसपास या यहां जहां पशु हम बांध रहे हैं दिन में, तो उसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके पशु स्वास्थ्य पर और गर्मी को ताप के कम करने के लिए दोनों में ही जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर आप देखें तो डे आवर हमारा बढ़ जाता है, सुबह 7 बजे ही रोशनी हो जाती है और शाम के 7 बजे तक करता है, तो हम हर टाइम हम पशु के शेड में नहीं बांध सकते। तो अगर आसपास वृक्ष लगा हुआ है तो पशु घूम फिर के उसके नीचे भी आ जाता है।
1: अगला सवाल क्या है रवि कुमार जी?
2: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे। जैसे गांव देहात में क्या होता है, पशुओं को चराने की व्यवस्था होती है, लोग घुमाने भी ले जाते हैं, तो मैं चाहूंगा किस समय ले जाएं ताकि पशुओं को ज्यादा नुकसान ना हो, दूध को नुकसान ना हो, या किसान को नुकसान ना हो।
0: ये भी है और लोग अपनाते भी हैं कि ये कोशिश करें कि जब बहुत ज्यादा धूप हो तो हम पशुओं को बाहर घुमाने के लिए न ले जाएं, या तो मॉर्निंग आवर में जब सूरज की ताप कम हो तब ले जाएं, या शाम के समय जब कम हो जाए तब ले जाएं, और उसी समय वो खाएगा भी। क्या होता है कि जब दिन में बहुत ज्यादा ताप होता है तो पशु खाना भी नहीं चाहता, क्योंकि पचाने और खाने में उसकी शरीर की ऊर्जा लगती है जो उसको शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इसलिए वैसे भी कहा गया है गर्मी के टाइम में हम दाना या चारा या तो सुबह के प्रारंभ दें या शाम को जब मौसम ठंडा हो जाए तब दें, तो तब वो अपने जितना जरूरत होती है पेट भर के खाना खा लेगा, नहीं तो वो उतनी खाना खाएगा जितना उसको लग रहा है कि भाई कुछ खा लें, जो मगर जितना उसको खाना चाहिए अपनी उत्पादकता को बरकरार करने के लिए वो उतना नहीं चाहता। तो इसलिए जब भी हम उनको घुमाने टहलाने ले जाएं, कोशिश ये करें कि मौसम जब कम रहे, मतलब भीषण गर्मी ना रहे, खासतौर से 11 से 3 के बीच में जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस समय पशु को बाहर ना ले जाएं।
2: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा और है आपसे मैं करना चाहूंगा
0: जी,
2: कि पशुओं के बाड़े जो होते हैं हम जो, वो किस दिशा की तरफ रखे जाए ताकि हवा का आदान प्रदान ज्यादा अच्छा रहे या धूप ज्यादा ना आए, मतलब किस तरह के सेट बनाए?
0: मुख्य तौर पे जो हम ये कहा गया है कि जो पशुओं के बाड़ा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जो लंबवत उसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व पश्चिम दिशा में हो, जिससे कि जब सूरज उगे पूरब से और पश्चिम में जब वो अस्त हो तो शेड के एक तरफ तो आपके धूप रहे, दूसरी तरफ आपके छाया रहे। अगर हम पूरा पश्चिम नहीं कर सकते हैं तो जितना भरसक प्रयत्न हो हमको पूरा पश्चिम दिशा रखना चाहिए। उत्तर दक्षिण अगर हम कर देंगे तो सुबह भी धूप रहेगी आप पशुशाला में और शाम को भी धूप रहेगी, तो गर्मी का प्रचंड प्रभाव पशुशाला पे पड़ता है जो अल्टीमेटली जानवरों पे पड़ेगा। तो कोशिश करना कि जितना भी हो हम पशुशाला की जो दिशा है वो पूरा पश्चिम में रखें, जिससे कि हमें दोनों समय में, गर्मियों में हमें एक तरफ छाया मिलेगी और जाड़ों में वही हमें वो जो धूप तब आवश्यक रहती है तो वो रहेगा, और हवा का डायरेक्शन जैसे आपने बताया, हवा भी हमारा या तो पछुआओ चलती है या पूर्वी चलती है, तो उससे क्या है कि जो गर्म हवा है वो पशुशाला से निकल जाएगी अगर हमने उसमें खिड़कियां और रोशनदान की अच्छी व्यवस्था की है पशुशाला में, और ठंडी हवा जो है नीचे से अंदर आ जाएगी, तो इससे पशुशाला भी ठंडा रहेगा और पशुओं को भी शीतलता प्रदान होगी।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे, मैं जानना चाहूंगा पशुओं को हमारी गर्मी जो है लगी है नहीं लगी है, ताप में है नहीं है, उसके कुछ ऐसे लक्षण जैसे चारा कम खाना या कमजोर होना उसका या दूध में कोई, ये कुछ
0: नहीं, कई उसके लक्षण हैं, मतलब हम लोगों को पता लग जाता है कि पशु को गर्मी लग चुकी है। कुछ लक्षण तो गंभीर हैं जिनमें पशु हांफने लगेगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि हिल रहा है और मुंह से उसके झाग भी निकल रहा है, अगर अत्यधिक गर्मी काफी दिन तक हमने उसको ध्यान नहीं दिया। चारा तो लाजमी गर्मी होते ही पशु छोड़ देता है, कम से कम खाता, क्योंकि चारा को पचाने में गर्मी, जैसे मैं बताया कि मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है, तो

0: पशु हमेशा ठंडे टाइम में या तो सुबह अगर अवेलेबल हो तो चारा खाएगा या शाम को चारा खाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए चारा हरा होना चाहिए, जितना हरा चारा होगा उतना पशु को पचाने में भी आसानी रहेगी और जो शारीरिक गर्मी है उतनी उसको नहीं करनी पड़ेगी। और अधिक अत्यधिक पानी पीना चाहेगा पशु, अगर गर्मी लगती है तो पानी भी पीना चाहता है तो उससे भी उसका पेट भर जाता है तो खाना कम खाता है। तो हमें अगर पानी ठंडा रहेगा तो वो उतने ही पानी पी के अपना काम चला लेगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो उसकी नांद है पानी पीने वाली नांद वो भी छाए में हो या उसके ऊपर सेट हो, ताकि जो पानी पीने का एक तो शुद्ध होना चाहिए, आजकल मतलब लोग काई वाई ना हो कि उससे और किसी और तरह की बीमारियां पेट के कीड़े वगैरह ना हो जाएं, और ठंडा पानी हम पिलाएं दो तीन बार हम उसको ऑफर करें कि ताकि वो पानी खूब पी ले। दूसरा जैसा बताया कि खाना छोड़ देता है, हांफता है, दूध भी कम कर देता है और बेचैन सा रहता है, कभी यहां खड़ा होगा कभी वहां खड़ा होगा, तो एक ये कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि पशु को गर्मी लग रही है।
1: रवि कुमार जी, आपका एक प्रश्न है और मैं डॉक्टर साहब से कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो कम लागत के आवासीय प्रबंधन है
0: जी जी जी,
1: वे क्या हैं और कैसे उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है?
0: बहुत सुंदर सवाल है और मुख्य टॉपिक हमारा यही कम लागत के आवासीय प्रबंधन पे है। आवासीय प्रबंधन एक्चुअली हम लोग जब करते हैं तो, क्योंकि वैज्ञानिक पशुपालन में क्या है कि हम पशुओं को ऐसी विधि से पालन करते हैं ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, पशुओं का जो उत्पादन न प्रभावित हो, चाहे वो दुग्ध के लिए हो या मांस के लिए हो, चाहे बड़ा जानवर हो, गाय भैंस हो या बकरी और भेड़ हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कई प्रयोग हम लोगों ने IVRI में किए कि अगर छत पे, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम रिफ्लेक्टिव पेंट लगा दें और अगर टीन की छत है तो उससे काफी फायदा होता है, अंदर के टेम्परेचर कम होता है। दूसरा एक प्रयोग हमने किया कि सीट के नीचे जो आपकी छत है उसके नीचे अगर हम छप्पर 4 इंच का छप्पर लगा देते हैं तो उससे भी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर छत का कम रहता है, क्योंकि अगर छत गर्म भी हो गई टीन की या सीमेंट की तो वो छप्पर जो है इंसुलेशन का काम करता है तो वो सीधी गर्मी नीचे नहीं आती है। तो वो ये प्रयोग द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि नीचे गर्मी नहीं आती तो हमें छप्पर, और छप्पर की उम्र भी बढ़ जाती है क्योंकि छप्पर भींगता नहीं है और वो आपको 5 से 6 साल तक एक बार बस छत के नीचे छप्पर लगा देना है 4 इंच का, उससे काम हो जाता है। एक उसके अलावा एक अगर आप देखें आजकल टेंट वाले एक 1.5 इंच का गद्दा देते हैं थर्मोकोल टाइप का, हाँ उसका भी प्रयोग किया गया, वो सस्ता भी है और लाइट भी है, उसको भी वो 4x6 या 6x3 के आते हैं टुकड़े, उनको हमने लगा के देखा तो उसमें उसका असर और ये छप्पर का असर ऑलमोस्ट बराबर था, 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल 2 बजे के टाइम में हमने नोट किया। और एक हमारा प्रयोग था जिसमें करीब हमारा 0.5 किलो दूध जो है उन कंट्रोल से जो जिनको हमने सीधे टीन में रखा था या जिनको हमने छप्पर के नीचे लगाया था या ये थर्मोकोल की सीट लगाई थी उनमें हमको थोड़ा बढ़ा हुआ मिला। तो एक ये प्रयोग है और कम लागत का है, कुछ नहीं, आपको जो ऑलरेडी आपका छत है उसी के नीचे इसको लगा देना है, बस ये छप्पर जब लगाएं तो ध्यान देना है कि उसमें आग वाग लगने का थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, बीड़ी वगैरह वहां पे ना पिए। और दूसरा ये है कि ये जो अपनी एग्रो नेट है ना, ये जो ग्रीन वाली आपने देखा होगा जो आती है, उसको भी हम उन इलाकों में जहां से धूप आ रही है वहां पे हम उसको लगा दें तो वो क्या है उसमें छेद होता है तो हवा का आवागमन भी रहता है और आपको धूप नहीं आएगी, तो उससे भी हम धूप को रोकते हैं या तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मान लीजिए बंद है हमारा पशुशाला तो खिड़कियां ओपन रखें, साफ सफाई कर दें और उसके अगर ऊपर रोशनदान बना दें। अक्सर क्या हुआ है आजकल, अब रोशनदान की प्रथा खत्म हो गई, रोशनदान बहुत आवश्यक है प्राकृतिक कूलिंग करने के लिए, ठंडी हवा नीचे जाती है, अगर ऊपर गर्म हवा निकल जाए तो वो ठंडी हवा पूरी जगह ले लेती है, अगर रोशनदान नहीं होता है तो वो गर्म हवा आपके ऊपर वहीं घूमती रहती है और वो शेड को जो है गर्म करती रहती है, और अगर एक छोटा सा रोशनदान हम बनाए तो उससे ऑटोमेटिक गर्म हवा निकल जाएगी और फिर जो वो निकली अंदर से नीचे ठंडी हवा आ जाती, तो इस एक ये चक्रीय तरीके से भी हमारा तापमान कम हो जाता है शेड का।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कम लागत के आवासीय प्रबंधन क्या हैं एवं कैसे प्रयोग में लाएं, इसके अतिरिक्त और ऊष्मीय प्रभाव को संतुलित करने हेतु क्या पशु प्रबंधन क्रियाएं हैं जिनको कर सकते हैं?
0: के अतिरिक्त तो ये आवासीय प्रबंधन था, दूसरा ये है कि इसके जैसे मान लीजिए जो सब अर्बन हमारे शहरी क्षेत्र की जो हमारे पालक हैं जहाँ जगह कम होती है तो वहाँ हम आजकल बहुत अच्छी अच्छी तरह के स्प्रिंकलर आ गए हैं, फैन आ गए हैं और इन ये सब सोलर से आजकल चल रहे हैं, तो अगर आपने छत पे सोलर के पैनल लगाए और उसी एनर्जी से आपके वो फैन चलते रहते हैं तो उससे भी एग्जास्ट फैन आ गए हैं, तो अगर मान लीजिए कम जगह है आसपास खुला हुआ नहीं है तो वो गर्म हुआ बाहर फेंक देगा और अंदर ठंडी हवा आ जाएगी। कुछ आजकल मिस्टर आ गए हैं छोटे छोटे जो पहले केवल ग्रीन हाउस में

0: लगते थे, मगर आजकल उनको पशुशाला में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बहुत रिफाइंड ड्रॉपलेट पानी की डालते हैं, जिससे पानी की भी बचत होती है और वातावरण आपका जानवरों के ऊपर, खासतौर तो भैंसों को तो बहुत अच्छा है, या हमने अपने अपने यहाँ भी लगा रखा है, तो उससे वो कम पानी में आपका वातावरण जो है पशुशाला का ठंडा हो जाता है। इसमें बस एक हमें ध्यान सावधानी ये जरूरत है कि जो जहां भी हम पानी का प्रयोग करें ठंडा करने के लिए, तो जो हमारी आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो ध्यान रखें, वो नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो दोनों तरफ से बंद है कोई पशुशाला, हवा का बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो एकदम अंदर बहुत ज्यादा आर्द्रता बढ़ जाती है, तो जिससे पशुओं को फिर सांस वांस लेने में दिक्कत आती है। तो जब भी हम मिस्टर का या इस तरह के स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, तो एग्जास्ट जरूर चलाएं या कोई एयर सर्कुलेटर फैन चलाएं, जिससे कि हवा जो है बाहर और अंदर का जो आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो बरकरार रहे। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि पशुओं को थोड़ा घूमने के लिए भी बाहर जगह दें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया कि एक बाड़े में कितने पशु रखे जाएं, गर्मियों में हम उनको कम कर दें
1: जी।
0: थोड़ा सा अगर हम जो उनकी जो सघनता है अगर वो कम कर दें, तो आप आसपास से भी पशु जो है जो गर्म नहीं होंगे, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जहां 6 बांध रहे हैं, अगर हम 4 बांधने लगे, 5 बांधने लगे, उससे भी पशुशाला की गर्मी जो है उनका तनाव कम हो जाता है। हरा चारा दें, मैंने पहले ही बताया, पानी की पूरी उपलब्धता रखें। भैंसों को तालाब में नहाना अच्छा लगता है, तो उसको हम अगर बेलोइंग कहते हैं, अगर कोई ऐसा इंतजाम हो कि हम थोड़े देर के लिए उनको वहां छोड़ें, तो उनसे भी उनका तापमान कम हो जाता है। खास तौर से छोटे बच्चों का और जो गर्भधारी जो हमारे पशु हैं, उनमें भी गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं हो।
1: डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कृषि पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो किसान भाई थे रवि कुमार जी, उन्होंने भी अपने प्रश्न किए, अपने सवाल किए, जो उनके मन में सवाल थे, विषय था ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु कम लागत वाले आवासीय संशोधन। इस विषय पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप दोनों लोग कृषि पाठशाला में उपस्थित हुए, आपका कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि पाठशाला, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz।

श्रोताओं स्वर परीक्षा हेतु सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी और रेडियो पर चला सके अपना जादू है तो देर किस बात की। चलिए आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे कि नारी संसार और युवाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के लिए आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। श्रोताओं इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युवाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हूँ ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। दोस्तों आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर, तो किस बात का इंतजार है। चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। ये एक सुनहरा मौका है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश, कहा आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए सारे काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा, कहा सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार, उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने काम में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी पर्व त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग राज्य के विभिन्न जनपदों में यात्रा करेंगे, ऐसे में पर्वों से पहले आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढा मुक्ति का काम केवल पैच वर्क तक सीमित न रहे, जहां सड़क तत्काल खराब स्थिति में है वहां उसे अभी चलने योग्य बनाया जाए और बरसात समाप्त होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थायी नवीनीकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों जहां आम जन का आवागमन ज्यादा रहता है, वहां की सड़कों को प्राथमिकता दी जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा, स्वास्थ्य और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

0: जो सेवा संकल्प अभियान है इसको हम सब धरातल पर उतारेंगे। केंद्र और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक मुहिम हम चलाएंगे कि प्रदेश में हेल्थ कैंप्स के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति उपचार लेना चाहता है तो वो आए, वहाँ पर सभी प्रकार की जांचें होंगी, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी को अन्य टर्सरी केयर की आवश्यकता है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमारे हेल्थ कैंप में जांच करा करके वो बड़े अस्पताल में उनको रिफर करके हम चिकित्सा सुविधा सभी प्रकार की उपलब्ध कराएंगे।
1: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किया था। अभियान के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को माता पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान किया जाता है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को लंबित मामलों का निस्तारण करना है। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन, पारिवारिक, राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव और सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है।
2: राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को आयोजित की जा रही है, मेरा आम जन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का निस्तारण कराएं, जिसमें वाहन से चलानों के संबंध में ज्यादा आम जन को असुविधाएं होती हैं उस पर फोकस करते हुए वाहनों के चलानों को निस्तारित कराएं, छोटे सम्मी मामलों को, पारिवारिक मैटर्स को, सम मामलों को, मोटर एक्सीडेंट के मामलों को, आप अधिक से अधिक मामलों में इसको निस्तारित कराना सुनिश्चित करने।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में आज वाराणसी में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को ईवीएम की जाँच से लेकर मॉक पोल और FLC की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
3: यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराएंगे FLC, और फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है कि जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को, एक एक यूनिट को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, VVPAT, उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है। और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में सूचना देकर आमंत्रित करते हैं ताकि वो स्वयं उपस्थित रह सकें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 120 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को प्रदर्शित करेंगे।
4: पूरा इवेंट टिकट फ्री है, सो कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी कार्यक्रम और किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 से ज्यादा पब्लिशर्स यहाँ बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं। वंदे मातरम का 150 वर्ष को लेकर एक यहाँ स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन सब के अलावा आप देखेंगे तो हर रोज बच्चों के कॉम्पिटिशन है, हर रोज कल्चरल एक्टिविटीज है, बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने का, रूबरू होने का अलग मौका है। तो अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप इसका आकर लाभ ले सकते।

0: चित्रकूट में भदई अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। रामघाट समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए बचाव अभियान, भोजन वितरण, राहत शिविर, चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर फरुखाबाद में नरौना बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और रामगंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। का आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए नवीनीकरण का काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा। कहा, सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: श्रोताओं, आप हैं इस वक्त 100.4 आकाशवाणी के बरेली केंद्र के साथ। शाम के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट मुनव्वर जहां। कार्यक्रम आपका अपना है अनुरोध गीत। हम आपको बता दें, कार्यक्रम शुरू करने से पहले अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर पत्र लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली। बरेली का पिन कोड है 243001। और अब जिन लोगों के जिन श्रोताओं के खत हम तक पहुंच गए हैं उनको पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से। भेजने वाले हैं नसीम अहमद अंसारी, मिराज जहां, मुस्कान बी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा बी, प्यारी बेटी मन्नत। खुर्जा उत्तर प्रदेश से है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और धनक्ष आरू साहू। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है जिला बदायूं कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से। भेजने वाले हैं

रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, गुलशन बेगम अलवी, विरासत अलवी, नज़ाकत अलवी, जानवी अलवी, शाहीन बेगम, सानिया, आहिल बाबू अलवी और आदिल अलवी। परिमहल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, एम असलम सैफी। असालतपुरा मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी। डोगर गांव जिला गजनांद गांव छत्तीसगढ़ से हैं ये राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से हैं नाना डोगर दिवे, रामाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल। श्रोताओं, ये पत्र आया है एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। भेजने वाली रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। करनाल से है सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, शाइना रफी, जगमोहन प्रजापति। जसपर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिम। मोहल्ला गड़ैया बरेली से हैं मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नवीद, रजिया शमसी और बेबी। श्रोता, ये पत्र हमारे पास आया है पीतम लाला के मकान के पास ककराला बदायूं से। भेजने वाले हैं डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, धर्मवीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव और दीपक और समस्त परिवार व दोस्त। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख करूला मुरादाबाद से हैं, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, पीर बहोड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम, तबस्सुम और मेहरुनिसा। दोस्तों, ये पत्र आया है कोडवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। भेजने वाले ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविया नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। सरगुजा मैनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, शरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा, अकरम आसमा और उल्ला आसमा। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से। भेजने वाली है रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी और अजय। आइए आप सबके अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सिंदूर से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की हैं, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है आपके अपने पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है रावर करनाल से। भेजने वाले हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अगला पत्र हमारे पास आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। भेजने वाले हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक, कनेरा।

जिला पटियाला से है बत्ता परिवार। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आदर्श नगर मलोहट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। इनके साथ में है निवान शर्मा। श्रोताओं, ये पत्र आया है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। भेजने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति। सरोज चौक अमरावती से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद भाई। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है।

ये पत्र हमारे पास आया है। कालका से भेजने वाली है शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टो बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। आइए आप सब लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं फर्स्ट फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत आपके अपने पत्रों पर आधारित। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी श्याम मुंडेला से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया काकू, रीता देवी। बागपत उत्तर प्रदेश से है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। महाराष्ट्र हिंगोली से है शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे। दोस्तों, ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार भेजने वाले हैं। पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से है मुनव्वर लल्ला भाई, नसरीन मिर्जा बी, अरबाज खान, शहबाज खान, बादाम अली, किशमिश जहां, सूफिया महबूबा, बेबी फातिमा, गजाला फातिमा, नरगिस कनीज, कशिश बेबी, नजराना नजीर, नजराना नसीर और रजिया रुखसार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से है मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज आरिफ आसिफ, शाबीज कासिम, असलम पेंटर, अकरम इर्तिका कौसर और आयरा कौसर। दौलत बाग मुरादाबाद से है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से है विमल वर्मा और इनके साथ में है इनके परिवार व दोस्त। बरेली जंक्शन से है गरीब भाई और विक्की भारद्वाज। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया पीएसी नकटिया बरेली से। भेजने वाले हैं ताराचंद्र बबली। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से है फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और अफसर खान। श्रोताओं, इस खत पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फजुद्दीन भाई, हालांकि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इनकी हयात में आकाशवाणी बरेली में बहुत ही प्यार से डाले गए बहुत सारे खत आज भी मौजूद हैं, जो इनके इस दुनिया के जाने के बाद भी आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। इसी तरह से ये पत्र हमारे पास आया और हमने इसे शामिल किया। आइए आप सब लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नडवरलाल से। आवाज लता मंगेशकर की और किशोर कुमार की है। गीत आनंद बख्शी का, संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, अगले अनुरोध के लिए हमारे पास ये पत्र आया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल, मोनिस सादिक और इनके मम्मी पापा और पूरा रजा परिवार। श्रोताओं, ये पत्र आया है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। लुधियाना पंजाब से है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से है वलीउल्ला, डब्लूउल्ला, परवीन आसमा। बुलंद शहर से है बदरू वली, फर्जू वली और फर्जी वली। बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री यादव और गुनगुन यादव। श्रोताओं, ये पत्र आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। भेजने वाले हैं वारिस अली खान, शहनाज खान, इस्लामुन निसा और शकील अहमद सलीम और साथ में है इनके दानिश। अगला ये पत्र हमारे पास आया है क्रांतिकारी छात्र परिषद भूड़ बरेली से रजत कुमार, ब्रह्मचारी कुमार। बिलराम गेट कासगंज से हैं अहम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान। पटेल नगर मलौट पंजाब से हैं रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप जजौरिया और बेबी आरजू। आइए आप लोगों की अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम गोरा और काला।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। हमारे अगले कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: एंड दिस एशिया कप वंस अगेन, एंड द अदर थिंग आई एम श्योर विनीत यू वुड आल्सो डिस्कस अबाउट इज द फ्लड लाइट्स एट द स्टेडियम। दे कॉल इट द रिंग ऑफ फायर। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रूफ दैट द फ्लड लाइट्स आर इंस्टॉल्ड हियर इन द स्टेडियम, व्हिच इज वेरी डिफरेंट from the other stadia you would see around the world.
2: और इसी की वजह से कई बार ऊंचे कैच पकड़ने में यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी गोलाई में छोटी छोटी छोटी लाइट्स लगी हैं, लाइट टावर्स नहीं हैं। चार जो लाइट टावर्स होते हैं हर मैदान पर, वो जो एक ट्रेडिशन बन गई है, जो परंपरा बन गई है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ छोटी छोटी पूरी पेरिफेरी में पूरे स्टेडियम की छत पर ऊपर की तरफ लाइट लगी हैं। आज के मैच के जो अंपायर्स हैं उसमें भारतीय वृंदा राठी हैं। आप जानते हैं कि ICC भी और एशिया कप में भी सारी महिलाओं की टीम होती है, जहाँ तक मैच ऑफिशियल्स का सवाल है। तो शातिरा जाकिर बांग्लादेश की और भारत की वृंदा राठी मैदान पर हैं। बांग्लादेश की ही रोकेया सुल्ताना वो टीवी अंपायर हैं और भारत की GS लक्ष्मी आज के इस मैच की मैच रेफरी हैं। उधर रिबाब एहसान जो कि लोकल अंपायर हैं, इस बीच दोनों ओपनिंग बैट्समैन मुनीबा अली पाकिस्तान की 101 मैचेस 1891 रन और स्ट्राइक रेट 100 का है। देखिए, ये 100 मैच खेल चुकी हैं, 4 अर्धशतक हैं, 2 शतक हैं, तो अच्छा बढ़िया है। स्ट्राइक रेट 102 के आसपास है और उनका साथ देने के लिए आए हैं शाहबाज जुल्फिकार, आई हैं 16 मैच। अभी युवा हैं और शुरुआती है उनके कैरियर की। 327 रन, 1 अर्धशतक उनका है, टच में नजर आ रही हैं। हालांकि भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी, लेकिन उधर ये जो एक अजूबा है, ये खिलाड़ी जो है, ये सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, मिथाली अयोध्या बंडारा। ये मलिंगा के अंदाज में स्लिंगर हैं, हाथ को बहुत पीछे से लाकर बॉलिंग करती हैं और इनके रिलीज पॉइंट्स देखने लायक होते हैं। जो खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, फाइन लेग दायरे के अंदर है, थर्ड मैन भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है। और पाकिस्तान मुनीबा क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, तो बाएं हाथ के बैटर के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक भरी हुई ऑफ साइड की फील्ड है। स्मरण रहे कि केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। पहले थर्ड मैन और फाइन लेग ही रख दिया जाता था, लेकिन अब पिच इतनी धीमी हो गई है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी फील्डर्स नजर आने लगे हैं, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर्स में आपको केवल 2 खिलाड़ी ही आप बाहर रख सकते हैं। ये अच्छा प्रयोग है और मिथाली को वापस बुलाया गया है। भारत की पूर्व कप्तान की नाम राशि हैं और केवल पहले मैच में खेली थी, उसके बाद से टीम में नहीं रही हैं और विमुक्ति को खिलाया गया है। विमुक्ति ने हालांकि पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, लेकिन एक अच्छा ये निर्णय है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा नहीं है, श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं, तो क्या उनके पास पर्याप्त ऑफ स्पिन, ये चर्चा जारी रहेगी किशोर के साथ। इस बीच मुनीबा तैयार, ये रही दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और पीछे विकेट कीपर की ओर, कौशनी की ओर ये गेंद चली गई, उन्होंने उसको गैदर कर लिया। इस बार एक नई चीज जो देखने को मिल रही है कि पॉपिंग क्रीज के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे 2 लाइनें आपको नजर आएंगी, उसमें एक प्रोटेक्टेड एरिया जो डेंजर एरिया होता है उस पर लाल निशान की लकीर है और उसके बाद थोड़ी वाइड पोजीशन पे पॉपिंग क्रीज पे नीले रंग की लाइनें हैं। ये वाइड के लिए जो ICC ने नियमों में संशोधन किया है उसके लिए इस्तेमाल की जाएंगी। बात चर्चा जारी रहेगी। इस बार कटकर अंदर की तरफ आई, मिथाली कोई बहुत ज्यादा रफ्तार का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन शुरू से ही लेंथ अच्छी पकड़ ली है। ऑफ स्टंप की जरा से बाहर कर कट होकर बाएं हाथ के बैटर के लिए ऑफ कटर बनकर ये गेंद अंदर की तरफ

0: आई थी चमरिया थापट्टू, और जो कि कप्तान है, दिग्गज खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और टहू जैसी बड़ी खिलाड़ी रिटायर हो चुकी हैं महिला क्रिकेट में। ये चली जाएंगी तो एक वैक्यूम आएगा इस बीच ये गेंद, और बहुत ही राउंड आर्म एक्शन से ये गेंद की और इस पे पहले रन बन जाएंगे। गेंद थोड़ी डीप पोजीशन पे जाए और इससे पहले उठाए जाए, दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला। अब जुल्फिकार पहली बार सामना करेंगी इस मैच में, चश्मा पहन के खेलती हैं, ये विकेट कीपर भी हैं मुनीबा, और अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है पाकिस्तान टॉस हारने के बाद एक रन बगैर नुकसान कर। तो क्या खिलाड़ी है अत्तापट्टू, मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय विमेंस पीएल में इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, केवल एक सीज़न वो खेली लेकिन उसके बाद कोई है ही नहीं जो उनको ऑक्शन में उनके नाम पर बोली लगाए, जबकि श्रीलंका की ओर से बाकी लीग क्रिकेट में, बिग बैश हो, कैरेबियन में या कहीं पर भी, उसमें ये बदस्तूर खेलती रही हैं और श्रीलंका की पहली खिलाड़ी हैं जो लीग क्रिकेट में शामिल की गई हैं। शवाल जुल्फिकार तैयार, उधर वो स्लिंग बॉलर मिथाली तैयार, क्रीज के बीचों बीच से बिल्कुल स्टंप्स के करीब आई, आगे की ओर झुक गए बैटर और उसको मोड़ा, कलाइयों के सारे प्लेस कर दिया, गेंद ऑन साइड में गई है, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग के बीच के स्थान पर बाउंड्री लाइन से कोई 20 गज अंदर उसको फील्ड किया गया। हरे रंग की पोशाक पाकिस्तान की और नीले पीले रंग की पोशाकें पहने हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, बाल झूलते हुए मिथाली के बहुत पूरी झुक जाती हैं, बैंड करती हैं और राउंड आर्म एक्शन उनका हो जाता है, अंपायर के सामने से आता है उनका हाथ, कई बार बहुत परेशानी होती है सामना कर रहे बैटर को उनका बॉलिंग एक्शन देखने में। इस बार ये लगभग लकीर के ऊपर है, क्या फैसला करेंगे वो, वाइड नीली लकीर जो वाइड गेंद के इशारे के लिए बनाई गई है संकेतात्मक, क्या उसके ऊपर से ये गई थी, क्या अंपायर उसके वाइड का इशारा देंगी, वहां पर भारतीय अंपायर वहां पर मौजूद है वृंदा राठी, लेकिन कोई इशारा उनका वाइड का नहीं आया, बाल बाल बची है वहां पर मिताली, बिल्कुल वो निशान जो है, वो जो लकीर जो है किशोर, उसके ऊपर से निकल गई, अच्छा निर्णय कहना होगा। इस बीच ये अगली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास आ जाती हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रही हैं, और ये भी एक कला है और निगाह रखनी होगी कहीं ऐसा ना हो कि अंपायर से बहुत जल्दी वार्निंग मिल जाए कि वो पिच के ऊपर दौड़ रही हैं, क्योंकि काफी नजदीक आ रही हैं, पहला ओवर समाप्त हो गया। आइए एस किशोर।
1: थैंक यू विनीत, एंड एज यू राइटली सेड, वी पॉइंटेड आउट दोस टू new dimensions which the ICC and the Asian Cricket Council has brought in. One of course is the danger area, those are those red marks indicating that it is indeed dangerous to tread onto that, and of course the wide lines of the blue lines which indicate the wide deliveries, and the last time very marginal clays as far as that wide ball was concerned, and she got away with it. Ayodhya, who has, as Vinith mentioned, that slinging action of hers, very much like Malinga, Lasith Malinga, who really put Sri Lanka on the world map with not only with his wicket taking abilities but with his very unique action as well. It's going to be Sugandhika who will be bowling the second over, and Muniba and Zulfika both on a run apiece. Pakistan 2 without loss. Early days here, Sri Lanka winning the toss and opting to bowl. The left arm spinner, left arm round the wicket, and this time everything correct about that shot, slight misfield enabling a quick single, good understanding between both Muniba and Zulfika, and the Pakistan score 3 without loss. The fielder seems to have hurt herself, sometimes it does happen when you're not able to field it cleanly, and of course when it really hits the fingers, the tip of the fingers, it can be quite painful, but no damage done, even though she's still writhing in pain. And as far as Pakistan are concerned, they will like to put up a good show here. Kavisha was the fielder there, who seems to have hurt herself and gave a single left arm around the wicket to Muniba. Muniba, the bespectacled wicketkeeper batter for Pakistan, and she is someone who's got tons and tons of experience. And look at the field there, it's a predominantly offside field for the left-handers. Four or five in the ring, starting from the fielder that shot third man. There's a backward point, there's a man forward of point, more towards cover, extra cover and mid-off. That's the field for the left-arm spinner, Sugandhika, bowling to Muniba. Muniba having a look around the field. She knows that open space is on the onside to be exploited. Would she be able to do that? The line is the leg stump line, middle and leg

0: stump, but Muniba not able to put it away. Plays it straight to the fielder at short backward square leg, not for any runs. And Pakistan stay on three without loss. This is the second semi-final of the Women's Asia Cup cricket match, cricket cup, in fact, which is being played at the Dubai International Stadium. And as far as Pakistan's are concerned, it's been a tournament which their batters have not really come to the fore. In the meanwhile, we see Kavisha leaving the field. She had injured herself trying to stop that one. Just got the feeling it hit her on the thumb rather than the tip of the finger, as one thought earlier. But yet another misfield. Sri Lanka and fielders have really been good in this tournament, but and this time it was very good to see. It was Zulfikar who came in the way of the throw and prevented. Doesn't matter if it hits you, as long as you can protect your wicket, Vineet, as that one driven through the covers. And look at that slight hesitation, and but then does well. That wasn't quite intentional. She came in the way of the ball, and fortunately for her, that helped her to protect that throw, which was almost going at the stumps. Here is Sugandhika, left arm around the wicket from the wide of the crease, and once again this is drifting down the leg side, helped along straight to the fielder at square leg, and Pakistan stay on four without loss. As I was saying, Pakistan, their batters have not come to the fore right through the tournament. They were bowled out for a very low score against India. They just about managed to win their other two matches against Thailand and Hong Kong, China. This one has been lofted. There's no one there. Down in the deep, there was a fielder coming in from long on, and that enabling a single there. So runs coming by ones until now. There have not been any big hits, no boundaries thus far. Pakistan, five without loss. 1.5 overs sent down thus far. And Muniba, she is quite capable of the big hits, the left-hander, the very experienced southpaw from Pakistan. This time to the pitch of that one, and straight down the throat of the fielder. That's the first wicket down for Pakistan. Muniba, call it the commentator's curse. We were talking about her experience, her stroke play, and there she is. And that's the end of Muniba. 2 overs gone by, and Pakistan are 5 for 1.
1: ये पीछे इतनी धीमी है, गेंद ग्रिप होकर आती है, रुक कर आती है, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद हवा में उठी, और एक जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे मुनीबा अपने बैट को देख रही है, पिच के ऊपर एक निगाह डाली, गहरा घात वहां पर पाकिस्तान को। मुनीबा इन फॉर्म बैटर थी और काफी जान और फॉर्म में थी। नीलाक्षी ने उनका कैच पकड़ा। सुगंधिका, ज्यादातर टीमें स्पिन बॉलर को एक एंड से नई गेंद से लगा रही हैं और वो वहीं से वो बॉलिंग का। सुगंधिका भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उनको सफलता मिली एक्स्ट्रा कवर पे। एक आसान सा कैच सीधे फील्डर के पास जाता हुआ, उठाकर खेला, ऊंचा, लगभग फील्डर के सर के आसपास आता हुआ वो कैच था, उसको उन्होंने कैच में तब्दील कर लिया और सुरक्षित उसको पकड़ लिया और पहली क्षति पाकिस्तान को दी। एक और चिंता की बात है, जैसा कि किशोर आप बता रहे थे कि फील्डिंग करते समय कविशा कि जो कविशा का के हाथ में चोट लगी, वो फील्ड कर रही थी ऑफ साइड में और विकेट से कोई 20 गज के फासले पर वो फील्ड कर रही थी। वो प्रमुख बॉलर हैं श्रीलंका की और उनके बॉलिंग आर्म में उनको लगी है, दाएं हाथ में उनको चोट लगी है। 20 विकेट 2026 में ले चुकी हैं वो। इस बीच लोअर ट्रेजिक्टी के राउंड आर्म से मिताली के नए ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रही हैं, स्टंप्स में की थी। और शहवाल अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं, जबकि ये शॉट खेला था, एक तो मिडल नहीं कर पाई थी, मोटे बाहरी सिरे से लगकर ये आगे की तरफ गई थी, मिडल नहीं कर पाई थी, गेंद हवा में ऊपर उठी और एक आसान सा कैच सुरक्षित कर दिखाया वहां पे फील्डर ने पकड़ लिया। और मुनीबा से बहुत उम्मीदें थी, बैकफुट पे चली गई है पाकिस्तान। शहवाल को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकती हुई, ये गेंद इस बार वहां पर मिथाली की, और शवाल उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाई, शायद वो तैयार नहीं थी इस तरीके की बाहर की ओर जाती हुई गेंद के लिए, और अब खफा हैं अपने आप से, सर हिला रही हैं कि उस गेंद का फायदा क्यों नहीं उठाया। वो जो लाल निशान हैं प्रोटेक्शन के डेंजर एरिया को दिखाते हुए दोनों तरफ के, वो लेग साइड की वाइड के लिए इशारे हैं, उस लाइन से अगर बाहर होगी तो वाइड दी जाएगी, बॉलर्स के लिए काफी फायदा हुआ है। इस बीच ये अगली गेंद और इसको घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की दाईं तरफ से, पहला चौका पारी का। बेहतरीन स्ट्रोक खेला है वहां पर, और शुरू से ही इस टूर्नामेंट में शाहवाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रही हैं। हांगकांग के खिलाफ 47 रन उन्होंने बनाए थे, जस्ट बैक ऑफ द लेंथ थी, अपने को संतुलित किया, बॉडी वेट खूबसूरती के साथ बैलेंस किया, पीछे से बैट को लाई, गेंद की लाइन में थ्रू द लाइन खेलती हुई, हाफ वॉली नहीं थी वो गेंद, और उसको प्लेस किया, और दाई तरफ लॉन्ग ऑन के और बाई तरफ मिड विकेट के बीच की स्थिति से दूर सामने की ओर साइड स्क्रीन की तरफ वो गेंद चली गई चार रन के लिए। मिताली की गेंद, धीमी गेंद थी, वापस बॉलर की दिशा में, कॉटन बोल्ड हो सकती थी, चकमा दे दिया था वहां पर, खेल ही तो बैठी थी वहां पर शाहवाल उस गेंद को, और कॉटन बोल्ड की संभावना इन पिचेस पे बनी रहती है। और परवेज मारूफ जो पुराने क्रिकेटर हैं उनसे काफ़ी लंबी चर्चा होती रही है श्रीलंकाई खिलाड़ियों की, और साना मीर जो पूर्व पाकिस्तान की कप्तान हैं उनसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बात करती रही। इस बीच एक गेंद हवा में सीधे बैट के स्प्लाइस के पास से लेकर गई है, लेकिन उस ओर कोई फील्डर नहीं है, देखना है चार अथवा छः के इशारा होता है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक और इसके साथ ही छः रन का इशारा अंपायर द्वारा, और अब तक 10 रन बन चुके हैं। ये गेंद ऐसा लगा उस पर नियंत्रण, और इसीलिए शायद मिथाली को बीच में ड्रॉप भी किया गया था, फुल टॉस पे लिया, एक कदम नीचे झुकाया, घुटने मोड़े और गेंद को खेल दिया, जो उसको आप कह सकते हैं लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो ये स्थिति है मिथाली का महर ओवर, ये नियंत्रण रखना, ये मलिंगा ही है जो नियंत्रण रख पाते थे। और जहां तक इनका सवाल है, अभी इस ओवर में बहुत ज्यादा काबू नहीं रख पा रही हैं अपनी गेंदों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली, ओवर द टॉप खेल दिया, और इस बार ऑन ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन। बहुत ही महंगा ओवर समाप्त हुआ अयोध्या का।
0: यस, इट वॉज एन एक्सपेंसिव ओवर बिफोर दिस ओवर, रन्स वर जस्ट कमिंग बाय वे ऑफ सिंगल्स, बट अयोध्या मिथाली gave away 14 runs in that over, a 6 and 2 boundaries in that over, and just the impetus that the Pakistan innings required, especially after the fall of the experienced Muniba Ali. And talking about women's T20 Asia Cup, the winners, if you go back down in time, you can see, remember, the Women's Asia Cup sometimes have been played in the 50 over format and sometimes in the T20 format. In 12-13, when the first ever Asia Cup was held in the T20 format, it was India who won the title. That was in China. 16-17, again, the Indian women triumphed in Thailand. And 2018 was the only time Bangladesh lifted the Asia Cup title in the T20 format. Here is the first ball of a new over from Sugandhika. And this has been driven towards the long on fielder, a single easily had, and that would take Zulfikar Shahwal to Firoza, opens their account, Gul Firoza, and Shahwal is on 17, Pakistan at 20-1. To get back to the records as far as the Women's Asia Cup in T20 format, 2022-3, as this one is on the middle and leg stump, not quite able to execute the sweep like she would have liked, Zulfikar Shahwal. And that would also mean, talking about that last over, it was Ayodhya who was really taken to the cleaners there. Some superb stroke play, very, very decisive footwork and stroke play there. That was from Zulfikar Shahwal. Is this one from Sugandhika to Gul Firoza. It fetches a single. She was thinking in terms of a second run but decides against it. And as I was saying, 22-23 in Bangladesh, Asia Cup was held, where India emerged triumphant. And in the last edition in Sri Lanka, it was the girls from the Emerald Isles who put it across India to lift the title. So Sri Lanka, the reigning champions here, playing the second semi-final of the 2026 edition of the Women's Asia Cup. The next ball, once again, the line, middle and leg stump. Once again, easy pickings there for Zulfikar Shahwal. She gets a single. She's on 18. Gul Firoza is on 2. And Pakistan put into bat by the Sri Lankan captain Chamara Attapattu are 23-1. The next ball from Sugandhika. The line this time around the off stump. She's been bowling the middle and leg stump line. This time to the right-handed Firoza. She employs the off stump line and well dug out there. Here is for the final time, tossing that one up, and this time not where she intended. She was trying to go through the covers.

0: And the ball ends up at short third man. No damage done. No runs. End of that over. And Pakistan at 23 for 1.
1: थैंक यू किशोर. ताजुब है, आपने बहुत कम देखा होगा कि पावर प्ले के ओवर्स में एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन हो. आमतौर पर आप देखेंगे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर होता है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट भी आजकल होने लगा है, नहीं तो पहले तो थर्ड मैन ऑफ फाइन लेग होता था. तो ये पिच की तासीर जैसे बदलती चली जा रही है, उसकी वजह से वो कई बार खिलाड़ियों को देखकर कैसा बैटर सामने है, लेकिन दो फील्डर बाहर रखे जा सकते हैं और वो ठीक सामने दूर साइड स्क्रीन के पास लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों ओर. जबकि अतपतु ये बॉलिंग चेंज तो होना ही था. मिथाली अयोध्या ठीक फॉर्म पे नहीं नजर आ रही थी और पिछले ओवर में महंगी साबित हुई. गेंदों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और चमरी अतपतु कप्तान है श्रीलंका की, वो अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे. ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और ये गेंद और टपकाने के बाद और लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद थी. शहवाल जबरदस्त फॉर्म में दिख रही हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रही हैं. देख रही हैं कि ये बॉलिंग जो है अतपतु की इतनी आसान नहीं है खेलना, वो बैटिंग अच्छी कर रही हैं, लेकिन देखें नजदीक की कोई खिलाड़ी नजर अब नहीं आ रहा है. अतपतु की गेंद और लगातार गेंद टर्न होने के बाद ये ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं और टप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बैटर के लिए अंदर की तरफ शहवाल के लिए गेंद आती है जो उनके लेग स्टंप के बाहर से निकल रही है. और शहवाल दो बार प्रयास कर चुकी हैं उसको फाइन लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में कहीं ऊपर खेल दें, लेकिन दोनों बार चूकी हैं और इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल ही तो दिया. गेंद दूर जा रही है मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रन. ओह, सवाल तो लगता है अपने ही कंधे पर ले जाएंगे पाकिस्तान को आज, क्योंकि ये इसलिए कि 15 गेंदों पे 24 रन बनाकर खेल रही हैं. लूप बनाती हुई ये गेंद थी, फ्लाइट दिया था अच्छा खासा, वो तैयार थी घुटने मोड़े स्वीप के अंदाज में, लेकिन सीधा ऊंचा लंबा स्ट्रोक सामने की ओर खेला और मिड विकेट बाउंड्री के काफी ज्यादा बाहर जाकर गेंद गिरी. बाउंड्री काफी छोटी होती है विमेंस क्रिकेट में, 30 गज का नहीं 25 गज का दायरा होता है. और इस बार तेजी के साथ खेलने की कोशिश की, उंगली उठी, दूसरा विकेट गिर गया पाकिस्तान का. शहवाल जो काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी, अचानक वो जो एक स्ट्रेटेजी से बॉलिंग कर रही थी अतपतु, उनके लेग स्टंप के बाहर गेंद घूम कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद को जब पलट कर पीछे की ओर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया, महीन सा इनसाइड एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. कौशनी नत्यांगना बहुत ही कुशल और दक्ष कीपर हैं और उन्होंने उसको कैच कर लिया. पहले ही से पूर्व अनुमान लगा कि शफल कर रही थी, लेग स्टंप की तरफ सरकती हुई चली गई थी विकेट कीपर और एक बेहतरीन पूर्व अनुमान के साथ, एंटीसिपेशन के साथ वो कैच कर लिया. और कप्तान की भाव भंगिमा अतपतु की इस समय देखती ही बनती है.
0: यस विनीत, इंडीड यू वुड एग्री विद मी, दैट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और एन इरिटेटिंग मैनर फॉर अ बैटर टू गेट आउट, गोइंग getting caught down the leg side, going to play that flick very fine, but unfortunately going to straight to the wicketkeeper, who made no mistake whatsoever. So especially Zulfiqar, she's been batting so well, she'll be feeling really down in the dumps having thrown it all away.
1: ज्यादा सिक्सर्स इस टूर्नामेंट में लगे नहीं और पाकिस्तान की ओर से तो केवल ये दूसरा ही मात्र था जो शहवाल ने लगाया, इससे पहले एक सिक्सर था. और ये टूर्नामेंट ही ऐसा रहा है, इसमें पहली बारी की बैटिंग में औसत अगर आप देखें तो 120 रन से ज़्यादा ने औसतन बने हैं, जो कि बहुत आज के जो आधुनिक क्रिकेट है उसके हिसाब से काफ़ी कम कहे जाने चाहिए. गेंद शॉर्ट थी, फिर वही झांसा, फिर वही माया जाल जिसमें फंस कर गई हैं शवाल और आयशा खेलने के लिए आई हैं. फिरोजा और आयशा दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म में इस समय चल रही थी शहवाल, इस टूर्नामेंट में लगातार इन दोनों को रोककर नीचे भेजा गया, शहवाल से ओपन शुरुआत कराई गई. लेकिन जिस तरह से इस गेंद को पलटकर वही गलती करने जा रही थी जो शहवाल ने की थी, घूमकर गेंद लेग स्टंप के बाहर अच्छा बाउंस लेकर अतपतु की जा रही हैं और उसको लेग साइड में आप जब डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक सिरा लगकर विकेट कीपर पे, जिस तरह से दूसरा विकेट गिरा था श्रीलंका का, उस तरह से आप आउट हो सकते हैं. तो ये स्थिति है, ये ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ कप्तान अतपतु का, दो खिलाड़ी खो चुका है पाकिस्तान.
0: Yes, Pakistan losing wickets. Sri Lanka striking when it was required. First, of course, they had an early wicket and then in that last over, the skipper replacing Mithali Ayodhya and immediately

0: escaping rewards with the wicket of the well set Zulfikar, and that wicket I'm sure would dent Pakistan early. Pakistan's top order has been a problem right through this tournament. Here is Sugandhika once again keeping it within the stumps, left arm round the wicket, and very accurate is Sugandhika. She was the one who picked up the first wicket, and then in that last over, the well set Zulfikar trying to go for a faint tickle down the leg side, caught by the wicketkeeper. This time the ball of a fuller length driven on the offside, not for any runs. The Sri Lankan fielding right through the tournament has been good. In fact, we spoke about it earlier as well, the floodlights, or rather the round of fire as it is called, as far as the Dubai International Stadium is concerned, with the floodlights. They don't have towers. The floodlights are around the periphery of the roof of the stadium. Not very easy for fielders to judge catches, as the next ball has been played defensively, not for any runs, and Pakistan stay on 30 for 2. The sixth over in progress, 5.3 overs to be precise. And what has been also been very surprising in this tournament, as far as the Sri Lankan captain Chamari Attapattu is concerned, she's been more successful with the ball than with the bat. This one is lofted over the infield on the offside safely. Look at the skipper really showing the way. Chamari Attapattu belying her age, diving around, stopping that one. And that would mean that Pakistan are not able to get anything more than a single. In fact, the very first ball that Ayesha faced from Chamari Attapattu, there was an opportunity for the wicketkeeper to make it two in two balls, but wasn't the easiest of catches, and that was a catch which went a-begging. As Sugandhika, who has been bowling into her third over, one for 10 after that single on the onside. She's bowling her third over on the trot, which isn't very common when we come to T20 cricket. We often see bowlers getting a spell of two overs, a maximum three, and that is what Sugandhika is into her third over. She's kept things tight from one end. Here is she, once again, left arm, using the width of the crease, and this time, once again, we've seen more often batters trying to go through the offside, not able to, the slowness of the pitch defeating the intention, and that would mean that the score stays put. A dot ball to end that over, and Pakistan being put into bat are 33 for 2. Really, things not really going the way of Pakistan. Sri Lankan bowlers exerting the pressure, except for that one over we need, when Mithali went for 14 runs. The bowlers have been able to exercise, not only have been they been able to restrict the flow of runs, they have picked up wickets at regular intervals. So the first power play of 6 overs, one must say, has gone the way of Sri Lanka, with Pakistan on 33 for 2.
1: तो ये स्थिति है. पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ 28 पावर प्ले में दो खिलाड़ी खोए थे, भारत के खिलाफ 29, तीन कुल मिला के 55 पे आउट हो गए थे, और थाईलैंड के खिलाफ 32 रन बनाए थे पावर प्ले के 6 ओवर में, और तीन खिलाड़ी खोए, और आज 33 रन बनाए हैं. तो बेस्ट पावर प्ले पाकिस्तान का, लेकिन दो खिलाड़ी खोए. लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करती हैं आयशा, खेल दिया गेंद को, गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मिलेंगे. अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हैं ये भी, फिरोजा और आयशा दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं, और उनको इस नई गेंद से खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. नई गेंद का फायदा यह है कि एक ज्यादा बाउंस करती है, और उसमें आपको स्ट्रोक ज्यादा आसानी से खेलने को मिलते हैं. पिच कुछ नीची जरूर रह रही है, लेकिन उसको अच्छी तरह संभाल रही हैं दोनों बैटर्स. धन्यवाद जतिन. और ये स्थिति है यहां पर, कविशा अब तक नहीं लौटी हैं. इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद है, अतपट वो बहुत अच्छी गेंदें कर रही हैं, लगातार अपनी लेंथ और लाइन में परिवर्तन कर रही हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से लाइन बदल दी, और फिर गेंद अच्छी लेंथ पर, ये गेंद थी गुड लेंथ से थोड़ा आगे टिप्पा खा के कटकर अंदर की तरफ आ रही थी, दाएं हाथ की बैटर आयशा के लिए. और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश करने की कोशिश की, उंगली उठी, ओ पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट. ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं अत्तापत्तु कि उसमें फंस कर रह जाता है खिलाड़ी. लेग स्टंप के बाहर का निशाना साधा हुआ था, अचानक ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करने लगी, उस पर स्लैश किया, आड़े बैट से खेलने की कोशिश की, बॉटम एज लगी, और विकेट कीपर कौशनी जो एक गफलत कर चुकी हैं जब उसको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, इस बार चौकस और चौकन्नी थी, और उंगली उठी वहां पर अंपायर की. उनको कोई संकोच नहीं हुआ, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जी और शातिरा जाकिर जो बांग्लादेश के अंपायर

0: उनकी उंगली उठी और इस तरह से पाकिस्तान ने 37 के स्कोर पर सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना तीसरा विकेट खो दिया है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, ये टूर्नामेंट भी इसी तरह का, इसी तासीर का रहा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते, जिसमें क्रिकेट की भाषा में जिसको कहा जाता है यू नेवर फील यू आर इन, कभी भी आपसे गलती हो सकती है। और अत्तापत्तू का ये 16 साल का अनुभव है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं। 2009 और 10 में इन्होंने डेब्यू किया था वाइट बॉल क्रिकेट में, तब से लगातार श्रीलंका के लिए खेल रही हैं। दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट की, ये ना केवल श्रीलंका की, और इनकी बुद्धि जो है चमत्कारी है। उन्होंने पहले लेग स्टंप के बाहर लगभग दूसरा खिलाड़ी भी आउट कर लिया था, लेकिन कौशिनी विकेट के पीछे कैच नहीं पकड़ पाई थी। सराफ खेलने के लिए पहुंची हैं, दाएं हाथ की बैटर हैं और बैट लग गया, लेकिन गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, फिर पैड से टकराई और टकराने के बाद सामने की ओर गेंद चली गई। सादाब शम्स खेलने के लिए आई हैं और अब पाकिस्तान संकट के बादल पाकिस्तान टीम पे मंडरा रहे हैं। गेंद को हवा में झूलने दिया, डिप किया, चूक सकती थी वहां पे बैटर, जिस तरह से बहुत ही बुद्धिमानी से चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं अत्तापत्तू, लगभग झांसे में आ गई थी। आयशा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रही हैं, जब ड्राइव करती हैं अपनी ग्रिप को बदल लेती हैं, ये अंदाज है खेलने का उनका। और श्रीलंका क्या पछताएगा, विमुक्ता जो उनकी तेज बॉलर थी, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे मिथाली अपने बॉलिंग पर, वो मलिंगा के अंदाज में जो आपको लगातार हम बताते रहे हैं, उनका दूसरा ओवर काफ़ी महंगा, 14 रन उसमें उन्होंने दिए थे। और उससे भी बड़ी बात है कि गेंद नियंत्रित नहीं कर रख पा रही थी, काबू में नहीं थी, ऐसा लगा हर गेंद उनके हाथ से बहुत ज़्यादा सध कर नहीं आ रही थी। इस बार बहुत धीमे से खेला, गेंद को ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से, इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए रन ले लिया वहां पर फिरोजा और सादाफ ने। और इस ओवर में हालांकि विकेट भी गिरा, अत्तापत्तू को विकेट मिला, लेकिन इस समय चढ़कर खेल रही है श्रीलंका। एक ओवर की समाप्ति हुई और आपके कमेंटेटर होंगे इसके शो।
1: थैंक यू सो मच विनीत। सो श्रीलंका स्ट्राइकिंग रेगुलरली, पाकिस्तान लूजिंग देयर थर्ड विकेट एंड द कैप्टन रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, चमारी अत्तापत्तू। एंड दिस टूर्नामेंट एज आई मेंशनड अ व्हाइल अर्लियर एज वेल, इट इज विद द बॉल दैट शी हैज रियली बीन एट द इन द फोरफ्रंट। Remember, against Indonesia, she picked up 7 wickets in an innings. And really, that's the sort of bowling. Her batting has really not come to the fore in this series. She's the most experienced, the captain of Sri Lanka. And Chamudi Prabodha, there's a bowling change here with Pakistan 39 for 3 after 7 overs. And Chamudi bowling yet another left-arm spinner. One left-arm spinner replacing another. This time, once again, this time the ball may just run away. It may beat the fielder. No, it doesn't. The two fielders converging there in the third man region. And the two batters have been able to get a couple of runs there. Really, Pakistan in that first power play, all that they managed to get was 33, losing 2 wickets. And immediately after the power play was over, the first power play, the seventh over sent down by the captain, Atapatu. And look at her, she is so aggressive, really showing her teammates how to fight it out in a very well-contested semi-final here. Goes up to now, it's been Sri Lankan bowlers who've held sway, who are calling the shots. Chamudi replacing Sugandhika, one left-arm spinner replacing another. Bowling from round the wicket, from using the width of the crease, and once again the slowness of the pitch in evidence there. Playing a tad too early, uppishly, but safely towards mid-off. And that takes Firoza to 7. Sadaf is on 1. And Pakistan in the 8th over, after 7.3 overs to be precise, a 42 for 3. Being put into bat by the Sri Lankan captain, Atapatu, who won the toss and had no hesitation whatsoever in doing the insertion job. This time, once again, this one keeping it within the stumps. Good variation there from Chamudi. And what one has seen, the Sri Lankan spinners, they're not afraid to toss the ball, including Atapatu. When you really toss it above the eye line, that's when you really test the skill of the batter. And that is what the Sri Lankan bowlers have been able to do. It's a very pensive looking dugout, Pakistan, quite understandable. Here's Chamudi.

0: this time almost a full toss and driven, but not for anything more than a single, down to long off, and that would mean that Pakistan are 43 for 3. And really, as far as the Asia Cup is concerned, there's so many records which are associated with this, and all these details are being provided a minute to minute by a very efficient scorer statistician team of Yashwant Chadha and Jatin Sood, as the last ball of the over has been played defensively, not for any runs, and that ends the over. And with Pakistan really at the moment, we need the odds stacked against them, requires someone to play an inning, someone to bat through maybe until the 16th, 17th over for Pakistan to really put up a score which would challenge Sri Lanka.
1: Firoza बहुत ज़्यादा बड़ी पारियां खेल नहीं पाई हैं अब तक टूर्नामेंट में. थाईलैंड और भारत के खिलाफ दोनों ही में खाता भी नहीं खोल पाई, जतन बता रहे हैं, और हांगकांग के खिलाफ केवल 3. तो गेंद को मिडिल नहीं कर पा रही हैं, खेलना चाहती हैं सामने की ओर और गेंद जाती है पीछे थर्ड मैन की दिशा में. मोटा बाहरी सिरा लेकर कई बार गेंदें गई हैं, निशाना साधती हैं विकेट पर सामने की ओर सीधा खेलने की, जो कि एक सही अंदाज है इस पिच पे खेलने का, लेकिन उसको फिर टाइम नहीं कर पाती हैं और किनारा लेके गेंद पीछे जा रही हैं. ओ, श्रीलंका के लिए अच्छा समाचार है, कविशा देलहारी मैदान पर आ गई हैं. घायल हो गई थी एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग करने के प्रयास में, उनके उंगलियों में चोट आ गई थी और उनके बॉलिंग आर्म पर चोट आई थी, अब वो बॉलिंग करने के लिए आ रही हैं. उनकी पहली गेंद, ओट अच्छा खासा टर्न मिला, गेंद नीचे भी रह रही थी, लेकिन विद द टर्न खेल दिया गेंद को और एक रन ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने, फिरोजा और सादाफ ने. और 5.38 का इस समय औसत है, 44 रन 3 विकेट पर. पाकिस्तान टॉस हार के बैटिंग कर रहा है, ये 9वें ओवर की पहली गेंद थी. अगर आप देखें, कविशा देलहारी ने 20 विकेट लिए हैं 2026 में. चमरी अतापत्तू वो बॉलर है, कप्तान है, जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं इस साल. सुगंधा कुमारी जिनके 15 विकेट हैं. कविशा की ये गेंद, और बहुत बढ़िया गेंद कर रही हैं. कि सबसे बड़ी बात है, श्रीलंका के खिलाड़ी विविधता लाते हैं, कोई सी भी गेंद रिपीट नहीं करते हैं, 6 की 6 अलग गेंदें. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इतनी थी, गुड लेंथ गेंद से थोड़ा पहले टिप्पा खा रही थी. टप्पा खाने के बाद जिस तरह से ऑफ स्पिन होती है, उस अंदाज में गेंद अंदर की तरफ आई राइट हैंडर के लिए. इस बार फ्लाइट दिया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया, और उसमें रन अवश्य मिल जाएगा इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पे गेंद को विकेट के पीछे की ओर, बॉलर के पीछे की ओर फील्ड किया जाए. इस पिच पे गेंद को फिरकी देना बहुत जरूरी है इस पिच पर, क्योंकि जब तक आप रेवोल्यूशंस ज्यादा नहीं देंगे, जब तक आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, ड्रिफ्ट आपको नहीं मिलेगी, और वो बखूबी श्रीलंकाई हर स्पिनर कर रहा है. और इस बार स्वीप के अंदाज में घुटनों को मोड़ दिया, खेल दिया दायरे के अंदर 25 गज के, फील्डर से वो रुक नहीं पाई और गेंद चली गई लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच की स्थिति से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. ऐसे मौके रहे हर टीम के साथ, जबकि ये फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद, लेग स्टंप के बाद, पिच होने के बाद और लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. विद द टाइड गेंद की रफ्तार का ही इस्तेमाल करते हुए ही, अपने आड़े बैट से घूमते हुए, स्वीप के अंदाज में एक घुटना जमीन में झुकाते हुए उसको आगे भर बढ़ा दिया और 4 रन बटोर लिए अपने टीम के लिए. 1 रन कम रह गया है, 50 से दूर है पाकिस्तान केवल 1 रन से, 49 पे 3. ये 9वां ओवर चल रहा है, खतरनाक गेंद बैकफुट पर सरक कर चली गई थी. एक खिलाड़ी हिट आउट भी हो चुका है इस टूर्नामेंट में, लगभग स्टंप्स के करीब चली गई थी और फिर जैसे तैसे उसको निकाला था, बिल्कुल चूक गई थी, अंतिम समय में बैट लग ही तो गया, नहीं तो बोल्ड आउट हो जाती, गेंद की लंबाई कम कर दी थी. बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहे हैं पाकिस्तान खिलाड़ी कविशा के खिलाफ. शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कविशा देलहारी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है, लगातार लेंथ लाइन ट्रेजेक्ट्री स्पीड रफ्तार की परिवर्तन, फ्लाइट का परिवर्तन, रेवोल्यूशंस दे रही हैं. एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त हुआ, हालांकि विकेट उसमें नहीं मिला, लेकिन कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है. 3 लगातार जल्दी जल्दी विकेट खो देने के बाद पारी को दोबारा संभालने में लगे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन श्रीलंका है कि हावी हो रहा है और रन बनाना दूभर हो रहा है. आईएएस किशोर.
0: Thank you, Vineet. And as you very rightly said, the Sri Lankan bowlers, especially the spinners, have been all over the Pakistan batters. They're really varied. The point that you made, that they bowl almost 6 different deliveries in an over. And that is what is making the task of the Pakistani batters all that more difficult. The first ball of any over has the batter stroking it out into the extra cover region just for a single.

0: 50 up on the board for Pakistan. Firoza on 9. Sadaf on 7 on strike to Chamudi. Chamudi, who's been bowling well. She had replaced Sugandhika, and she has also been as accurate, as miserly as the next ball. Once again, tossing it up, and to the pitch of that one was Sadaf, but not able to get the ball off the square. You not only need to time it well, you need to place it well. And batting against spinners require a totally different skill set. You need to use your feet well, and maybe modern day batters not so much equipped in doing that. This time goes deep into the crease and pulls it, a short arm pull there, just for a single down to the fielder there. And Pakistan are 51 for 3. Boundaries are at a premium now, the way the Sri Lankan bowlers have been bowling. The spinners, and we've seen right through this Women's Asia Cup at the Dubai International Stadium, that the pitches have afforded a lot of turn. The next ball, once again, this time with the turn almost, that just giving the ball direction to a short third man for a single. Firoza moves into double figure. She's on 10. Sadaf is on 8. And Pakistan are 52 for 3. Almost at the halfway stage at after 9.4 overs. So from here on, it would be up to these two batters. They need to consolidate. They need to stay. Look at this. That's exemplary work by the wicketkeeper. And the bowler saw that the batter, Sadaf, was really dancing down the track, shot on the length. And as the ball spun across the bat, wicketkeeper didn't do any, immediately whipping off the bails. Quicksilver work there by the Sri Lankan wicketkeeper, accounting for the fourth batter in the Pakistan inning. She was down a mile there beneath. And really clever bowling by the left arm spinner.
1: Batters ke upar dabav ban raha tha. Dono Sadaf aur Gul theek se nahi khel pa rahi thi. Aur aise mein wo crease chhod ke bahar nikal aayi, ek bada stroke talash rahi thi. हाँ, अच्छी बात है, अगर आप स्टंप आउट होती हैं तो कम से कम एक मील दूरी से रन आउट होइए, स्टंप आउट होइए, मतलब मन पूरा बना लिया था. क्रीज छोड़ के बाहर निकल आई थी, चूंकि विकेटकीपर के पास गेंद चली गई और उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और एक और सफलता मिल गई श्रीलंका को. और एक बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय, 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन 9वें ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो ड्रिंक्स बुला ली जाती हैं. तो ड्रिंक्स मैदान पर आ गई हैं. लगभग 42 मिनट में ये 10 ओवर हुए हैं. ये याद रखने वाली बात है कि 9:15 तक भारतीय समय के अनुसार ये पहली बारी निर्धारित की गई है. और आजकल क्या है, स्टॉप वॉच चलती है तीसरे अंपायर की. 60 सेकंड में आपको दूसरा ओवर, अगला ओवर शुरू करना है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. और फिर बाद में लास्ट के ओवर्स में आपको फील्डर कम मिलेंगे. अगर टाइम पे ओवर आपने पूरे नहीं किए तो केवल 3 फील्डर आपको मिलेंगे. तो ये तमाम दुश्वारियां हैं. और अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी ICC ने लेटेस्ट जो नियम आए हैं उसमें स्टॉप वॉच बुला ली है कि 60 सेकंड के अंदर, किशोर, आपको दूसरा ओवर शुरू करना है.
0: Yes, so many new rules being introduced. Also the fact that earlier in a red ball game, in a longer duration game, if a wicket falls, it would have been stumps. Now the new rule says that the over needs to be completed. So all in all, it is basically for the paying cricket lover, those who flock the stadium to see matches. So the bodies which govern the game worldwide, be it the ICC or in Asia the ACC, always the attempt is to see that the paying public get their money's worth.
1: एक दिलचस्प बात यह है कि अब इतनी आसानी से लेग स्टंप के बाहर की वाइड नहीं मिलेगी. ड्रिंक्स मैदान पर है, खेल रुका हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में. ये एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के. क्यों? क्योंकि ICC ने नियमों में परिवर्तन करके एक निशान बना दिया है, और वो जो निशान है वो प्रोटेक्टेड एरिया, डेंजर एरिया होता है मिडल स्टंप के दोनों ओर एक फुट के आसपास का. वो जो डेंजर एरिया है उस पर निशान दोनों तरफ लगा दिया, ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर. तो पहले जो जैसे ही लेग स्टंप के बाहर गेंद होती थी तो उसको वाइड दे दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा. जब तक कि वो एक फिट बाहर नहीं है उस लाल निशान का, जो कि पिच पर बाकायदा लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान की कप्तान ड्रिंक्स मैदान से बाहर जा चुकी हैं 52 रन 4 विकेट पर टॉस हार कर, जबकि कप्तान फातिमा साना मैदान पर आई हैं और बहुत आवाज बुलंद की जा रही है पाकिस्तान की। अच्छी खासी ये ऑलराउंडर हैं और जिस तरह से ये बैटिंग करती हैं, इस सीजन में सबसे ज्यादा T20 रन उन्होंने ही बनाए हैं पाकिस्तान के लिए कि इनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर आना चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया।

या नहीं, फिरोजा 10 रन बनाकर खेल रही है, 16 गेंदों का इस्तेमाल कर लिया है और कप्तान को यह पहली गेंद। चामुड़ी जिन्होंने कि पिछले मैच में उन्होंने विकेट लिए थे, जबकि क्या ये दूसरा विकेट एक और मिल जाएगा चामुड़ी को, ये अब समय की प्रतीक्षा हम करेंगे। लेकिन तेजी के साथ ये गेंद आई थी। चामुड़ी ने पिछले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और उनको अब

0: और उनको आप ये देखिए केवल 17 बरस की हैं, नाट्यकद की ये बड़े खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता और टैलेंट इसमें नजर इनमें नजर आ रहा है। और श्रीलंका पछता रहा होगा कि उन्होंने जिस तरह से चेतना विमुक्ति को
1: देखिए, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट,

0: और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन

0: खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
1: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्यम में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक

0: आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का यह पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, कभी कभी हमारी तलाश किसी किसी खास पर आकर रुक जाती है, तो इसी खूबसूरत एहसास से गुथा हुआ था ये गीत, दिल को छू लेने वाला नगमा। हमने लिया था फिल्म जवानी दीवानी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहां कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, है ना? होती है ना? तो चलिए इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे।

0: यह अवस्थ थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है, मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल।

तो दोस्तों अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास या यूं कहें कि कसक बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आँखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अलाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं। लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

फेरा फेरा। एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही

के मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

ना पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

ऐसा ही जरा अलग किरदार उन्होंने निभाया। फिल्म थी बधाई हो।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

जहाँ गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: असल में विश्व गुणरत्न पारी की शुरुआत करती थी, लेकिन हमेशा की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, बढ़िया गेंद इस बीच लगभग डिफेंस को चीरती हुई स्टंप तक चली ही तो गई थी ये गेंद। जैसे तैसे हमेशा ने टाइम नहीं कर पाई, लेकिन बैट से टकराकर वो गेंद वापस लुढ़की जरूर है। लेकिन सादिया तरह तरह के सवाल प्रस्तुत कर रही हैं, उनके सामने प्रश्न पूछ रही हैं, बाध्य हैं बैटर के ध्यान से खेले और लगातार स्टंप्स की सीध में ये गेंदे कर रही हैं। आम बॉल इस बार और मुड़ा उसको और अच्छा साथ दिया नॉन स्ट्राइकर ने और एक रन पूरा हो गया। इस अंतिम गेंद पर भी एक सिंगल मिल गया। तो इस समय तमाम दुश्वारियां हैं श्रीलंका के सामने, रन ज्यादा बनाएंगे नहीं तो उस आस्किंग रेट बढ़ता चला जाएगा, दबाव बढ़ता चला जाएगा और कुछ आक्रामक होने का प्रयास करेंगी तो विकेट गिर जाएगा। तो पहले ही दो विकेट बहुत सस्ते में खो चुकी है श्रीलंका इस सेमीफाइनल में जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में विमेन्स T20 इंटरनेशनल का एशिया कप 2012 से पहले ये ODI फॉर्मेट में खेला जाता था। चहकती हुई श्रीलंकाई टीम चेहरा लटकाकर इस समय बैठे हुए हैं पेविलियन में, उनको उम्मीद नहीं थी, वो बड़ी प्रसन्न थी कि एक सस्ते स्कोर पर सिमटाया है पाकिस्तान को, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हैं जबकि एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है।
1: थैंक यू विनीत। फातिमा सना हु पिक्ड अप दोस टू विकेट्स रियली रॉक्ड श्रीलंका अर्ली दिस टाइम ऑफ द बैक फुट, दैट इज वेरी स्टाइलिशली स्क्वायर ड्रिवन फॉर 4 रन्स, बिट ऑफ विड्थ ऑन ऑफर देयर एंड कैशिंग इट ऑन दैट वाज वन हिमेशा हु ओपन द बैटिंग, सो टू ऑफ हर पार्टनर्स डिपार्ट, दिस टाइम गोज down deep into the crease and very very stylish exquisite square drive there from the blade of Imesha, and that would mean Sri Lanka will be looking up to Imesha and also their vice captain who batted so beautifully in that game against Bangladesh. In fact, that was the only game where Sri Lanka were stretched in the league phase. Now require 115 of 101 balls, and Fatima Sana, she is the key after that fine knock, unbeaten knock which took Pakistan to 130 with the ball, delivering, picked up two wickets. This time once again, just keeping the ball just short of the drivable length there. And all that the batter could do is just play it on the offside, not for any runs. Imesha stays on 10. And Fatima Sana, she's been bowling superbly here. And really showing fighting qualities, the Pakistan skipper. She was troubled early on while batting, the heat and humidity getting to her. She was cramping, but that didn't stop her to really take the fight to the Sri Lankans, to her opponents. And Sri Lanka, the reigning champions, having won the last edition, beating India in the final in 2024. And really this, Vinit spoke about it, how the Women's Asia Cup, for most part earlier on, was played in the 50 over format. Next one from Fatima, and this time going into deep into the crease and stroking it on the onside, and quick running as well, good running by Imesha and Hasini, and that would mean that Sri Lanka 18 for 2 into the fourth over, 3.3 overs, 113 of 99 balls is and the required run rate is 6.85. isn't that high, but the fact of the matter is one need to consider the nature of the pitch. On many occasions the ball has been stopping and coming. There are so many matches played on the pitches or at the Dubai International Stadium, so the wear and tear really taking its toll. Fatima once again, right arm over the wicket as she bowls this one to Imesha, who looks not only technically correct, very stylish as well. You don't see that combination, especially in the slam bang format of the game, T20. But Imesha knows how important it is for her to stay out there in the middle. See of the threat of Fatima Sana. That is what she is doing in the company of Hasini. And if these two can forge a partnership, no reason why Sri Lanka can't still make a match of it. Look at the ring of fielders on the offside, starting with the player at backward point. There's one at cover, one extra cover, almost nearing short mid-off. As here is with that field placing, it's Fatima Sana. This time short, and this not quite coming onto the bat, but oh, there's a misfield there on the boundary. That should have been stopped. A welcome boundary for Imesha.

0: He moves into double figure. She's on 12 now. And Sri Lanka are 22 for 2. All the 2s on the board here. This time, she's varying her length, the bowler, Fatima Sana. And this time, not quite able to time it the way she would have liked. The ball was going towards the backward square leg fans. A diving effort there, but in vain. Fatima Sana isn't very happy with that effort. She's someone who gives her more than 100%. Expects the same from her teammates as well. Nobody misfields purposefully, but that was a boundary which was gifted away. Here is Fatima Sana for the last time, the second over of hers and the fourth of the innings. And once again, just keeping the scoring down to a single. And that completes four overs. And as far as Sri Lanka concerned, they are chasing 131 for victory, and they are 23 for the loss of two wickets. So Vineet, at the moment, the Sri Lankans, especially looking up to Imesha, if she can really keep one and going, and the other stroke players can rally around her, then we may still be in for a very interesting climax to the second semi-final of the Women's Asia Cup 2026.
1: मैदान पर ड्यू है और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब भी हमने ये देखा था और भारतीय खिलाड़ी बता रहे थे कि बाद में उनको क्रॉस सीम का इस्तेमाल करना पड़ा था इस ड्यू को देखते हुए उसको पहुंचा गया है गेंद को कई बार उमे हानी ऑफ स्पिनर हैं उनको बुलाया है बॉलिंग करने के लिए और हसीनी को ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है हमेशा ने अपनी क्वालिटी अपनी क्लास दर्शा दी है क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करती हैं बॉडी से अपने शरीर से ज़्यादा दूर नहीं खेलती हैं और सीधे बल्ले का जहाँ तक हो वर्टिकल बैट का इस्तेमाल करती हैं और टाइमिंग बेहतरीन होती है और विकेट गिर गए हैं दबाव है उन पे श्रीलंका इस समय संघर्ष कर रहा है उसके बाद भी इतनी सूझबूझ वो रख पा रही हैं इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि प्लेसमेंट लाजवाब निकाल रही हैं फील्डर्स के बीच में से गेंद को प्लेस बार बार कर रही हैं देखते ही बनता है बहुत ही कुशल तकनीक वाली खिलाड़ी हैं हमेशा दोलानी 24 बरस मात्र की हैं ये श्रीलंका की टीम काफ़ी यंग है यंग टीम है हालांकि तीन खिलाड़ी हैं 35 के आसपास की बाकी सारे युवा खिलाड़ी हैं 96 गेंदों पर 108 रनों की अभी भी आवश्यकता श्रीलंका को है बड़ा समय जाया कर रही हैं क्योंकि मुनीबा जो विकेट के पीछे हैं वो मुतमईन नहीं हैं और बार बार कप्तान सना को बता रही हैं कि यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है फील्ड प्लेसमेंट में पाकिस्तान काफ़ी समय ले रहा है सादिया इकबाल की जगह उमे हानी आई हैं बॉलिंग करने के लिए स्पिनर रिप्लेसिंग स्पिनर लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है और बॉलिंग में फ़र्क है ऑफ स्पिनर हैं लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने हैं पहली गेंद और बढ़िया गेंद थी पिछले पैर पे लगी लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं हालांकि अपील जरूर की उमे हानी ने वहां पर ये पिच ऐसी है इस पर टर्न तो है ही और ज़रा सा आप गेंद को ज़्यादा फिरकी देंगे तो ग्रिप होती है और धीमी गेंद होती है तो ज़्यादा ग्रिप होती है पिछले पैर पे जाके लगी लेकिन निश्चित रूप से वो लेग स्टंप के बाहर अंपायर को ये देखना होता है कि गेंद अगर उसको बाधा नहीं पहुंचती तो कहाँ जाकर समाप्त होती वो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी अगली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला है फील्डर उस ओर दूर है लॉन्ग ओवर में और मिड विकेट के बीच में से 4 रन बेहतरीन स्ट्रोक इमिशा दुलानी के क्या कहने हैं बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर रही हैं और कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट उनकी बैटिंग में नज़र आ रहा हो इतना समय है उनको स्ट्रोक्स खेलने के लिए शी हैज सो मच टाइम टू प्ले हर स्ट्रोक्स घुटने नीचे झुकाते हुए जबकि ये चौथा चौका है इमिशा दुलानी का यशवंत भाई बता रहे हैं बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे कई स्ट्रोक्स की आवश्यकता है श्रीलंकाई दृष्टिकोण से फील्ड अगर आप देखें तो इमिशा दुलानी के लिए पॉइंट है थर्ड मैन थोड़ा स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर है एक्स्ट्रा कवर है मिड ऑफ है एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में जो कि दायरे के अंदर है एक और खिलाड़ी नज़दीक बुलाया जा रहा है वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है तो चार फील्डर तो साफ नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में हमेशा दोलानी राइट हैंडर है उनके लिए गेंद डिफ्लेक्ट होती है एक एंगल डिलीवरी को ऑन साइड में मुड़ा स्क्वायर लेग एम्पायर के सामने आमतौर पर यहाँ फील्डर नहीं देखा जाता वहाँ पर एक खिलाड़ी तैनात है उन्होंने उसको फील्ड कर लिया और सिंगल नहीं मिला अच्छा बड़ी कूल कस्टमर है हमेशा दोलानी बड़ी शांत भाव से क्रिकेट खेलती हैं पैरों की कैची बनाए इत्मीनान से प्रतीक्षा कर रही हैं अगली गेंद का 93 गेंदे 104 रन चाहिए श्रीलंका को फाइनल में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए 8 विकेट 27 रन 2 विकेट पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद

0: बिल्कुल रफ्तार नहीं थी उस गेंद की, उमे एलानी की बड़ी अच्छी गेंद थी और हानि की उस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, हालांकि दायरे के अंदर फील्डर था, शॉट फाइन पर केवल एक रन मिलेगा। और इमिशा दूसरे छोर पर आ गई हैं, अब लंबी लंबी सांसें लेके सोच रही हैं। एक खामोशी सी छाई है श्रीलंकाई खेमे में कि किस तरह से अब ये पहाड़ जैसा स्कोर नजर आने लगा है, क्योंकि दो विकेट जल्दी गिर गए। 5 रन बने हैं अब तक इस ओवर में, 19 गेंदों पर इमिशा दुलानी ने 22 रन बनाए हैं। कप्तान नत्तापत्तू का विकेट वो खो चुके हैं और उसके बाद संजना कविंदी को भी उन्होंने खो दिया है। बाउंड्री लाइन पे अत्तापट्टू खेलने गई थी और बाउंड्री लाइन पर धर लिए गई, उनको ऊंची स्ट्रोक पर लेग स्टंप में लगातार बॉलिंग कर रही थी। कप्तान सना उनकी ही गेंद पर शफल करते हुए लेग स्टंप पर पहले ही खड़ी हो गई थी, लगभग लीडिंग एज जा सकती थी इस अगली गेंद पर, स्टंप्स की सीध में की थी। बैट का सहारा बंद करना इस पिच पर बहुत खतरनाक है। उमे हानि की इस गेंद को, गेंद हालांकि हवा में उठी नहीं, बाल बाल बची, लेकिन लीडिंग एज लेकर गेंद सामने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई थी। 28 रन 131 बनाने जीतने के लिए एक और एंगल डिलीवरी, राउंड विकेट करते हुए इस गेंद को, उस डिलीवरी को उस कोण के साथ ही आगे बढ़ाते हुए दायरे के अंदर, इससे पहले विकेट के पीछे वो फील्ड हो, एक और सिंगल दौड़ लिया और इसके साथ ही 5वां ओवर समाप्त हो गया। 29 रन 2 विकेट पर श्रीलंका इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल, कौन खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा या श्रीलंका भारत के खिलाफ? बॉल बाय बॉल जारी रखेंगे इसके शो।
1: थैंक यू विनीत। यस, द बिग फाइनल कमिंग अप ऑन संडे, the day after tomorrow. India already in the final, beating Bangladesh by 40 runs last evening. Here it's a ding-dong battle, and look at the end of 5 overs, both the scores have been identical, 29 for 2. So tells a veteran scorer Yashwant Chadd, who along with our statistician Jatin Sood have been providing such interesting information from time to time. And their contribution goes a long way in making a broadcast interesting. 102 of 90 balls is what Sri Lanka required from here on. And they will look up to Imesha and Hasini. Not to forget Harshita. Remember Harshita, it was Samara Vikra who really took Sri Lanka over the line in their league game against Bangladesh. The only game they really had to fight hard to win. Will they be able to once again do an encore over here? Because a score in excess of 130 we have seen right through this edition of the Asia Women's Asia Cup has been very difficult to chase. Only 8 occasions when a team has scored more than 120 in this edition. India has done it the most times. This one on the middle and leg stump, and that's swept away. Good fielding on the boundary line will restrict the scoring to a couple of runs, and Hasini is on 3. Imesha, she holds the key. She's on 22, and the Pakistani fielders also look to be under some sort of pressure. The fielders especially, because there's a lot of pressure on them to restrict Sri Lanka, not to give any easy runs. Quite understandable, as the next ball has Hasini going onto the back foot, trying to stroke it through the covers for a run. That doesn't happen because it goes straight to the fielder there at point. And 187 balls is the equation. As here is once again, this time it's gone high. Will it go the distance? No, there's a fielder coming under it, and the catch has been taken. So Sri Lanka lose their way, lose another wicket. It's Hasini who, in an attempt to really up the scoring, up the ante, accelerate, but the slowness of the pitch, playing a stroke a tad too early. And that was generously tossed up and trying to go over the top. Really couldn't time it the way she would have liked, Vineet. And that's the end of Hasini there. Sri Lanka lose their 3rd wicket and in trouble at the moment.
0: Sadia Iqbal ka end badla tha ki Usana ne apne aap ko spell kar diya. Unke 2 over ho chuke the. Aisha ne behtareen catch pakda Sadia ki gain par. 3 run banaya 8 gendo par. Lekin captaincy bahut achhi. Pakistan सना ने बॉलिंग में चेंज करके सादिया को दूसरे स्पेल के लिए बुला लिया और वो दूसरे एंड बदलाव का फायदा मिला। और सीम की क्या बेहतरीन पोजीशन रखती हैं वो, क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी। जितनी रेवोल्यूशंस आप गेंद पर देंगे इन पिचेस में उतना आपको लाभ मिलेगा। और परेरा जो कि टीम में आज शामिल की गई थी विस्मी गुणरत्ने के स्थान पर, बहुत ज्यादा मैचेस इस टूर्नामेंट में अब तक खेले नहीं है और इन पिचेस से वो अभ्यस्त

0: नहीं है किशोर, और इसलिए परेशानी ज्यादा है उनके लिए। और पूरा टूर्नामेंट ऐसा रहा है जिसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहा है।
1: Yes, and to this crisis situation walks in the savior for Sri Lanka against Bangladesh, Harshita Samarawickra. And can Harshita win an encore over here? And really, Sadia has bowled well, has varied her length, and this time really foxing the batter to go for that stroke. And a good catch, I must say. Really holding her balance there was the fielder. And the Pakistani fans are really overjoyed, and why would they not be? So can Sri Lanka wriggle out of this hole that they find themselves in? Here is Sadia this time, and Harshita playing it defensively, the left-hander. So we have a right-hand left-hand combination here. And of course Pakistan has the off-spinner who bowled that last over, so that matchup would definitely happen whenever Harshita is going to face her, as the next ball has been played defensively. A successful over for Pakistan comes to an end, and Sri Lanka at the end of that over, at the end of the power play, are 31 for 3.
0: Sadia Iqbal diggaj khiladi hai, aur agar aap dekhen to is season mein to behtareen pradarshan kar rahi hai. Usana ke baad, kaptan ke baad, unhone sabse zyada wicket liye hain, 22 wicket unhone liye hain. Gati mein bar bar parivartan kar deti hain, slower ball karti hain usi ek hi action se. Aur power play mein agar aap dekhen to 31 run aur 3 khiladi khoye. Sabse zyada UAE ke khilaf tournament ke match mein, wo shuruaat mein hi UAE के खिलाफ श्रीलंका के मैच में 58 जतिन बता रहे हैं बनाए थे एक विकेट कर, भारत के खिलाफ 31, इंडोनेशिया के खिलाफ 31. इस बीच पलटकर पीछे की ओर मुनिवा से वो गेंद रुकेगी नहीं, साइड स्क्रीन की ओर जा रही है विकेट के पीछे, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है, और केवल दो रन ही पूरे होंगे जब तक ये गेंद की थी. अच्छी फ्लाइटेड गेंद थी, उसको रिवर्स स्वीप करना चाहती थी ग्लव से लगकर, जबकि विकेट कीपर अपने आप को बचा रही थी वहां पर. ऐसे में ही इंजुरीज हो जाती हैं, हालांकि हेलमेट पहन के खड़ी है मुनीबा वहाँ एज ए विकेट कीपर, लेकिन उनके सर के ऊपर से होकर चली गई और जाकर गेंद को उठाकर लाना पड़ा. तब तक खिलाड़ी दो रन ले चुके थे. बांग्लादेश के खिलाफ 29 बनाए थे पावर प्ले में, तो वो 58 जो यूएई के खिलाफ थे वही सर्वर ज़्यादा पावर प्ले में रन रहे हैं. जबकि कप्तान बात कर रही हैं उमे हानी से, 58, 31, 29 और फिर आज 31, 3 विकेट पर. ये जतिन की गणित कहती है पावर प्ले में श्रीलंका का जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट में. उमे हानी ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रही है ओवर द विकेट, स्टंप्स पर यह गेंद, गेंद हवा में उठ गई है, ज्यादा लंबी नहीं गई, सीधे ऊपर, विकेट कीपर जब हो तो यह कैच छूटता नहीं है, रिटर्न क्रीज के आसपास बैटिंग वाले छोर पर सीधी ऊपर, जैसे एक गुब्बारा ऊपर जाता है सीधी ऊपर चली गई गेंद. अपने आप को अवस्थित किया वहां पर मुनीबा ने, जो पिछली गेंद पर गफलत कर बैठी थी, अपने दस्तानों में उसको कैद कर लिया, और श्रीलंका ने अपना चौथा खिलाड़ी खो दिया. कुछ समझ में नहीं आया, बल्ले को घुमाया था स्वीप के अंदाज में, एक घुटना नीचे टेक दिया था, बल्ले को लाया, फिर उसको खेलने की कोशिश की, टॉप एज सीधा तन गया, तीर की तरह ऊपर गेंद चली गई, उसमें कोई लंबाई नहीं स्ट्रोक की, और विकेट कीपर ने निश्चित ही आवाज लगाई होगी क्योंकि तीन खिलाड़ी झपट रहे थे उस गेंद की ओर, रुक गए ठिठके, और विकेट कीपर ने काम पूरा किया. और इमीशा दुलानी का विकेट बहुत महंगा पड़ेगा श्रीलंका को, 21 रन बनाकर आउट हो गई इमीशा दुलानी.
1: Yes, what a crucial breakthrough. Pressure getting to the Sri Lankan batters, Vineet, no doubt whatsoever. And the wicket of the skipper, Chamari Attapudu, what a lot depended, because she's such an experienced campaigner. And the way the Pakistani captain, her opposite number, really set her up. She was bowling that mid-length leg stump line, tempting Attapudu to go for that flick shot. And she had a fielder there right at the boundary who took that catch, and that initial wicket, really, that is where that set the rot. And Sri Lanka have been losing wickets at regular intervals and now find themselves in real trouble at 33 for 4.
0: Ume Hani safalta mili hai, dekhen kya karte hain is gend par. Kavisha samna karengi unki gend ka. Oh, bahut badhiya gend, LBW ki appeal, zabardast dabav banaya ja raha hai. Bangladesh ki अंपायर हैं वहां पर बॉलर वाले छोर पर, मुंडी हिलाकर तुरंत मना कर दिया, और गति का परिवर्तन बहुत मायने रखता है. फ्लाइटेड गेंद थी, जिसपे आउट

0: हुई ईमिशा दुलानी और विकेट कीपर ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया, उनको ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा और अपने ग्लव्स में कैच कर लिया। ईमिशा का कीमती विकेट मिल गया पाकिस्तान को। प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, समझ में नहीं आ रहा, उमे हानी की गेंदों को समझ नहीं पा रही है कविशा। हर्षिता और कविशा इस समय मैदान पर हैं, हर्षिता अभी खेलने के लिए आई है, कविशा कुछ समय से हैं, लेकिन ये हर्षिता जो हैं ये उप कप्तान हैं और आज सेमीफाइनल में खड़ा है श्रीलंका वो हर्षिता की वजह से, जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ और दो साझेदारियां निभाई थी, एक तो कौशिका के साथ विकेट कीपर के साथ और शिखा के साथ जो साझेदारी उनकी हुई थी। इस बीच गेंद को पैडल स्ट्रोक खेला अंतिम समय तक, बैट को काफी आगे तक, लेकिन जिसके विकेट कीपर के एकदम करीब से गेंद पीछे फाइन लेग पर काफी फाइन गेंद गई है, बाउंड्री लाइन के करीब से गेंद को उठाकर लाना पड़ेगा, लेकिन इस समय श्रीलंका के खिलाड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो रन बन गया वही सुरक्षित, उस पर ही मुतमईन है, उसी से ही संतोष रखा है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी। ये लग रहा था कि श्रीलंका के लिए रन बनाना इतना आसान नहीं होगा इस पिच पर, चाहे बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 131 सब पहाड़ जैसा नजर आने लगा, एक बोझ सा नजर आने लगा है। दो गेंदें शेष हैं, 33 रन 33 for 4, 80 गेंदों पर 98 रनों की जरूरत है। स्पीड का वेरिएशन द स्लोअर वन लगातार स्पिनर्स कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे। अब क्या है कि दो माइंड में, दोहरे मन में हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ा स्कोर खेलें, ज्यादा ओवर शेष नहीं रह जाएंगे, दबाव बढ़ेगा तो खेलना है तो अटैकिंग स्ट्रोक, और जब गेंद पर रफ्तार ही नहीं है तो ज्यादा ऊर्जा और ताकत डालनी पड़ेगी स्ट्रोक खेलने के लिए, जो बहुत मुश्किल हो रहा है, और फिर मिसटाइम कर रहे हैं अपने स्ट्रोक को और उससे आत्मविश्वास हिल रहा है श्रीलंकाई खिलाड़ियों का। अच्छा संघर्ष कर रही है पाकिस्तान, मजबूर कर रही है इस संघर्ष के लिए।
1: Yes, what a fight back it has been from Pakistan. Full marks to the ex-skipper, Fatima Sana, and to the team. Remember, they were tottering. 4 wickets had gone down early before Fatima Sana had a 40-run partnership for the 5th wicket and an unfinished partnership for the 6th wicket as well. Took them to 130 and the captain led the way, really batting superbly, Fatima Sana. And now when the turn of them to come, Fatima Sana has once again been in the forefront, picking up 2 early wickets. And it's going to be a bowling change then. Nashra Sandhu, she comes on to bowl. Pakistan has got 3 left-arm spinners in their ranks. As here is bowling from over the wicket. Nashra, almost the block hole length that she's bowled. But this time it's been well dug out by Harshita. And we've been telling about Harshita. She opens it account. The fact that Sri Lanka find themselves in the semi-final is by no mean due to the contribution of Harshita in that must-win game against Bangladesh. It was Harshita who really took them out of trouble and saw that Sri Lanka crossed the line in that game. Will they be able to do it here? Looks difficult. 36-4 in the 8th over. 7.1 overs gone by. 95 of 77 balls by T20 standards may not look that difficult, but what one has to consider is the nature of the pitch. Look at that. This is what Vinit was talking about, how they're slowing it up, just tossing that one up and coming in so slowly that she was already into that sweep shot by the ball, by the time the ball reached the batter, and making an optimistic appeal there. No damage done, but Nashra Sandhu and all the Pakistani spinners have been taking pace off, bowling it as slow as possible. This time, slight width there, but there's a battery of fielders on the offside in that 25-yard cordon, and it's very difficult for the batters to penetrate that. Kavisha yet to open an account. Harshita is on 1, and Sri Lanka 36-4. Here is Nashra Sandhu, and this time on the middle leg stump, helped along, and got the feeling, came in with the arm, and she's just helped it along towards the fine leg region for a single. In fact, 2 runs that Kavisha got, couple of runs makes her open her account. She's on 2, Harshita is on 1, but at the moment the odds stacked against Sri Lanka. Of course, they have the batters can bail them out. Harshita has done it more than once. One saw her in that league game against Bangladesh. Can she repeat that performance? All of Sri Lanka would be hoping. This is almost a

0: Loopy full toss, flighted, generously flighted, and once again taken on the full, but not able to pierce that offside field. Good field placing, good captaincy by Fatima Sana, exerting all the pressure and seeing to it that Sri Lanka has to fight for every run. This time, once again, a variation in length, this time holding it back and pulled away. Slight misfield in the deep, but not much damage done. Pakistan's catching has also been good. They held on to their catches. Sri Lanka missed a couple of them, and that ends the over. So the match really developing into a very interesting battle. At the moment, Vineet, it does look that Pakistan hold the cards. They are having the upper hand, but cricket is a funny game, more so the T20 variety. And you know better than me that this game is very often throws up surprises.
1: Nobody knows anything in the game of cricket, Kishore. So, ab apni technique pe parivartan kar rahe hain Sri Lankai khiladi, aur wo ye prayas kar rahe hain ki gend ko late khelein aur bat pe aate hue dekhein aur bilkul antim samay pe fir stroke ka faisla karein, aur isi mein ek do single runs bane hain unke paas, nahi to run banana bahut mushkil ho raha tha. वेरिएशन, नशा संधू ने 6 विकेट लिए थे पिछले मैच में 7 रन देकर मात्र. बढ़िया बॉलर हैं, तेज बॉलर थी पिछले दिनों में, और इस बीच दोबारा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी क्या, फातिमा साना को दोबारा क्रैम्प्स हो रहे हैं. फिजियो मैदान पर हैं, खिलाड़ी पसरी हुई है मैदान पर, खेल रुका हुआ है. हर्षिता जब तक हैं, और अभी भी काफ़ी बैटिंग उनके पास मौजूद है क्योंकि दो साझेदारियाँ जतिन ने बताया. इस बीच ये गेंद उसको लॉफ्ट करने की कोशिश, दो तीन फील्डर्स वहां पर जपते हैं लेकिन केवल रन ही ले पाएंगे, कोई कैच हो नहीं पाएगा. हर्षिता ने पहले तो नीलेश शेखा के साथ एक साझेदारी 41 गेंदों पर 38 रन की छठे विकेट के लिए पिछले मैच में, और ये जो विकेट गिरे थे बाउंड्री लाइन पर अत्ता पत्तू आउट हुए थे, सातवें विकेट के लिए हर्षिता और कौशिनी विकेट कीपर के बीच में 18 गेंदों पर 33 रनों की हुई थी. श्रीलंका के खिलाड़ी साफ नजर आ रहा है जिस तरह से आउट हुए, कि ना तो इस पिच की रफ्तार, ना इसकी उछाल और वेरिएशंस को वो समझ पा रहे हैं, और जो स्ट्रोक्स खेले हैं खेलना कहीं चाहते हैं, गेंद ऊपर हवा में ज़्यादा उठ रही है, और जब कभी भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है तो स्ट्रोक्स में डिस्टेंस नहीं आ पाया है, गेंद ऊपर ज़्यादा चली गई है और वो कैच में तब्दील हो गई है. उमेश हानी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, ये भी चश्मा लगाकर क्रिकेट खेलती हैं अपना, और हालांकि बहुत बड़ा वाइजर है मुनीबा अली का विकेट कीपर का, वो भी चश्मा लगाती हैं और हेलमेट लगाकर खेल रही हैं. अब किनारा दे दिया उस गेंद को, जानबूझ के गेंद को प्लेस कर दिया थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं और एक और रन के बारे में सोच रहे थे. अब इतना जोश आ गया है पाकिस्तानी टीम में कि एक स्ट्रोक के पीछे दो दो तीन तीन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये जीत की महक आने लगी है. लेकिन श्रीलंका को कभी कम मत आंकिए, इस स्थिति से कई बार अपने आप को उबारा है उन्होंने, और हर्षिता उप कप्तान भी हैं टीम की, और ये जब बैटिंग करती हैं तो मुझे शशिकला श्रीवर्धने, वो महान खिलाड़ी श्रीलंका, बिल्कुल खेलने का अंदाज बहुत अच्छा था. इस बीच ये गेंद, अच्छी टर्न, अच्छी बाउंस, ऑफ स्टंप के बाहर बीट होते हुए विकेट कीपर की अच्छी गैदरिंग, जुड़कर खड़ी हुई थी मुबीना. और ये कमाल है इस पिच का, स्पिनर्स को कभी कभी टर्न इतना ज़्यादा मिलता है और वो टर्न जब समाप्त होता है विकेट कीपर के पास तो उसको सीने के पास सर के ऊपर लेना पड़ता है, तो बीच बीच में बाउंस भी नजर आता है इन पिचों में, और कई बार फाइन लेग पे खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं. अत्तापत्तू इस टूर्नामेंट में ज़्यादा बैटर की हैसियत से विशेष कर नहीं पाई, और इस बार पिछली गेंद से सबक सीखा, अपने आप को अलग खींच लिया गेंद के लाइन से, बिल्कुल उसी तरह की गेंद थी लेकिन इस बार बाएं हाथ के बैट्समैन के ऑफ स्टंप के और ज़्यादा बाहर थी, तो उसको देखा परखा और छोड़ दिया. हालांकि शुरू में ट्रिगर मूवमेंट जरूर बनाया था और उसके बाद हाथ कलाइयों को पीछे खींच कर अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया. 44 रन 4 विकेट पर, जीतने के लिए 131 रनों की जरूरत है. ये 9वें ओवर की अंतिम गेंद उमेश हानी की, और अंतिम समय में अपनी कलाइयों के लोच के सहारे धीरे से प्लेस भर करके एक रन ले लिया, एक रन और श्रीलंका के खाते में. 9 ओवर पूरे हुए, 45 रन 4 विकेट पर, अब 66 गेंदों पर 86 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के इस एशिया कप में.
0: यस विनीत, द गोइंग लुक्स डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका, दो एज वी आर सेइंग नथिंग कैन बी सेड इन द गेम ऑफ क्रिकेट, स्पेशली in the T20 matches.

0: किशोर बिल्कुल लेट खेल रही हैं, बिल्कुल अंतिम समय पे बैट पर आती हुई देख रही हैं गेंदों को और फिर प्लेस कर रही हैं। और मैं जो वो कह रहा था, शशिकला श्रीवर्धने पूर्व कप्तान हैं, इनके जो स्ट्रोक्स खेलने का अंदाज है वो उनसे बहुत कुछ मेल खाता है। हालांकि लेफ्ट और राइट हैंडर का फर्क है, वो राइट हैंडर थी, ये लेफ्ट हैंडर है, लेकिन देखते ही बनता है, जो देखता है वो इनको याद करता है कि श्रीलंका का ऐसा एक और खिलाड़ी था। तो वो हर्षिता है, इनमें बहुत क्षमता है, और अभी उम्र कुछ भी नहीं है और वाइस कैप्टन है और अत्तापत्तू के बाद यही कप्तान होंगी, तो इनसे बहुत उम्मीद है।
1: Yes, lot is expected of her. She, as you very rightly said, quite young, and she would definitely be taking over from Chamari Attapattu whenever she decides to hang her boots. And very promising player, very easy on the eye, as they say, to watch her bat. And she was really instrumental in bringing Sri Lanka thus far in the 2026 edition. That game against Bangladesh, they were in a bit of trouble before Harshita pulled them out, pulled the chestnuts out of the fire, so to say. And the whole of Sri Lanka, the Sri Lankan fans would be hoping that she does an encore over here and take them to the final. It looks difficult, the odds are stacked against them, but you never know with someone like Harshita. And you said about Pakistan wanting a wicket, and if they can get the wicket of Harshita, that would be a real bonus, Vineet.
0: तो ड्रिंक्स मैदान से बाहर गई हैं। वहाब रियाज मुख्य कोच हैं, हेड कोच हैं पाकिस्तान के, और लगातार हडल में जबकि खिलाड़ी पसीना पहुंच रहे हैं और पानी की बोतलों से अपने आप को वापस तरोताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जेमी सिडन्स जो कि श्रीलंका के कोच हैं, रुमेश रत्नायके की जगह उन्होंने संभाली है, तो दोनों को बहुत कुछ कहने को है और खिलाड़ी चुपचाप दोनों अपने कोचेस को सुन रहे हैं। तो यहां पर यह शतरंज की चाल शुरू होने वाली है, क्या पाकिस्तान एक विकेट और लेके दबाव बनाएगा या श्रीलंका इस खतरे के भंवर में जो फंस गई है उसमें से वो बाहर आ सके फिर तैरना शुरू कर सकेगा। तुबा हसन शायद उस मंत्रणा जो हुई उसके बाद तुबा हसन 51 मैच 33 विकेट 6/27 6 विकेट लिए उन्होंने 27 रन देकर, उनका बेहतरीन प्रदर्शन है। पहले खिलाड़ी से दायरे के अंदर रुकी नहीं, बाउंड्री लाइन के करीब उसको फील्ड किया गया लेकिन एक रन और मिल गया। तो 59 गेंदे 59 बॉल्स 77 रन, दिलचस्प मुकाबला। उमेश हानी बॉलिंग करेंगी, ऑफ स्पिनर हैं, और मैंने जैसा कि क्या पाकिस्तान बहुत समय ले रहा है फील्ड प्लेसमेंट के लिए और इससे ओवर रेट कम हो रहा है। वैसे भी पहली इनिंग्स भी लेट खत्म हुई थी, इस बीच अगली गेंद को स्वीप कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है, तेजी से दूर से आते हुए फील्डर ने स्लाइड किया, कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 रन। प्रयास अच्छा था, दूर से दौड़कर आई और इस 4 रनों से, इस चौके से हौसला बढ़ेगा श्रीलंकाई खिलाड़ियों का। लेफ्ट हैंडर ने उसको खेला था और उसको पूरी तरह से स्वीप करने का, और अंतिम समय तक ये बैट को आगे बढ़ाती रही थी, डाइव लगा के उसको रोकने का प्रयास अवश्य किया था, पसर गई थी, अपनी लंबाई का फायदा भी उठाने का कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले जो नन्हे नन्हे विज्ञापन उस बाउंड्री रोप के ऊपर है उससे जाके गेंद टकरा गई, 4 रन। 7वां चौका पारी का, हर्षिता इसके साथ ही 12, लेफ्ट हैंडर हैं, पसीने से तर बतर, 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रही है दोनों खिलाड़ियों ने, कविशा ने भी 13 गेंदें खेली हैं। 11वां ओवर है, 58 रन 4 विकेट पर, ड्राइव किया सीधे बल्ले से, सीधे बल्ले से खेलें आप इस पिच में सुरक्षित नजर आते हैं। लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया नशरा संधु ने जो कि एक बहुत ऊंचे जाते हुए शॉट पर अपने फील्डर से खफा हो रही थी कि आपने कैच पकड़ने का प्रयास नहीं किया, ऊपर उछलना चाहिए था। मैंने कहा जितना कद था फील्डर का उससे वो दुगना भी ऊपर उछल जाती तो भी उस गेंद को नहीं पकड़ सकती थी। कभी कभी बॉलर ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इस बीच एक गेंद शॉर्ट गेंद, उसको पुल करने का प्रयास किया, पैरों को फैला लिया, खेला उसको नशा संधू के पास, एक बार फिर गेंद जा रही है उनके हाथों पर लगी है और ड्यू भी मैदान पर बहुत ज्यादा है। अब ज्यादातर खिलाड़ियों के पास एक छोटा सा नैपकिन नजर आ रहा है जो उन्होंने फंसा रखा है अपने कपड़ों में, और जब गेंद उनके पास आती है अंपायर के पास एक कपड़ा मौजूद है तो अच्छी खासी ड्यू मैदान पर नजर आ रही है, और ऐसे में फिर गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बांग्लादेश में ग्राहम स्वान स्पिनर इंग्लैंड के कहा था कि इट्स अ बार ऑफ सोप, इस बीच ये गेंद को खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, बाउंड्री लाइन के गेंद जा रही है, धीमे धीमे जा रही है, दो फील्डर उस ओर

0: 60 of 49 balls. Nashra Sandhu, the left-arm spinner, once again tosses this one up and down the track, batting very confidently. Sarshita, she's so stylish, so easy on the eye, so pleasing to watch. Ends the over, and Sri Lanka slowly but surely now, Vineet, really progressing towards that target of 131.
1: एक समय था जब इन दोनों ने 12 गेंदों पे 22 रन बना लिए थे और इसी से आस्किंग रेट वो कम करती चली जा रही हैं और इसका श्रेय सारा जाता है हर्षिता को। जब वो नॉन स्ट्राइकर होती हैं तो इतने आगे तक वो पहले से ही मन बना लेती हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत शानदार है कि उस पर सिंगल हो सकता है, और जहाँ कोई और टीम होती तो एक भी रन ना लेती, वहाँ वो सिंगल्स लेके अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रही हैं। और ये जो एक बोझ हो गया है, जो रन रेट ज़्यादा हो गया है, आस्किंग रेट बढ़ गया है, उसको कम करने का प्रयास हर्षिता बखूबी कर रही हैं। इस समय वही स्ट्राइक लेंगी, अगली गेंद को पैरों को फैलाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर स्विंग कर दिया गेंद को दोनों पैरों के बीच में जगह, और उसके बाद उसको पीछे से बैट को लाकर घुमाते हुए खेल दिया, और इससे पहले कि स्क्वायर ऑफ द विकेट उसको फील किया जाए, हर्षिता अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चली गई हैं। 73 रन 4 विकेट पर, जीतने के लिए बनाने 131, 47 गेंदें 58 रन, कविशा 18 गेंदों पर 18 रन, और इस बार बैकफुट पर जाके स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, लेकिन पॉइंट पे फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। दोनों की साझेदारी अच्छी हो रही है यशवंत भाई, बहुत बढ़िया साझेदारी है, और अब 46 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड में थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट अंदर है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सब अंदर है, इस बीच ये गेंद और इसको ड्राइव किया, एक फील्डर जो दायरे के एकदम करीब आके उसको फील्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक रन लेने से नहीं रोक सका। 37 गेंदों पर 41 रन की साझेदारी अब तक हो चुकी है हर्षिता और कविशा, सोने में तोल लीजिए ऐसी साझेदारी। लगातार 7 रन पर आते आते तो 2 विकेट गिर गए थे। हर्षिता ने जो रन बनाए हैं, बैटिंग नहीं आई, यूएई के खिलाफ, इंडोनेशिया के खिलाफ 5, बांग्लादेश के खिलाफ 58, और पिछले मैच में भी उन्होंने 68 बनाया। इस बीच ये गेंद और घूम कर खेल दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, और इससे पहले के फील्ड ऑफ स्ट्रोक, ये सिंगल्स जो इस समय ले रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे और ये जीत और हार का फैसला करेंगे कि क्या होगा इस मैच में, कौन खेलेगा फाइनल्स एशिया कप 2026 का। ये 10वां फाइनल होगा, 2012 के बाद से ये T20 फॉर्मेट आ गया है, भारत 7 बार जीता है, सबसे अधिक बार, और लगातार मिडल और लेग स्टंप की गेंद को स्वीप के अंदाज में अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करते हुए, नीचे झुककर, लगभग नीचे बैठकर ये स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, ये समझ लीजिए आप, और जिससे कि ये नीची रहती हुई गेंद और जो ग्रिप हो रही हैं, और इसको को आड़े बैट से, जिस तरह से आप वर्टिकल बैट से बाउंस कवर करते हैं, जो टर्न होती है और जो धीमी टर्न होती है उसको आड़े बैट से आप कवर करते हैं, बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं दो खिलाड़ी श्रीलंका के। इस बीच इसको खेला ओवर द टॉप, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, और गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, 4 रन, बहुत सख्त जरूरत थी श्रीलंका को, अच्छा ओवर, 4 सिंगल और 1 चौका, 1 डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हो गया।
0: वेल रियली श्रीलंका, हर्षिता एंड कविशा having their task cut out when they began, they are up to the challenge, and what a fine partnership this is turning out to be. When Sri Lanka lost their fourth wicket, it did seem that the writing was on the wall, Pakistan bowlers were on top, but these two youngsters, Harshita Samarawikra, the vice captain, and really giving her ample support is Kavisha, and look at the difference now as far as the scoring rate goes. 51 of 42 balls, and with 6 wickets in hand, should not be difficult for Sri Lanka, barring the glorious uncertainties of this great game. So really, they require a wicket. Ayesha Zafar now being pressed into operation, 11 wickets in 47 games. She's best of 3 for 13, the primarily a batter. And Ayesha, can she provide the breakthrough here? Many a time captains resort to this tactic, bring on a non-regular bowler, but starts off with one short and wide. She is really fortunate that the fielder at gully was really saw to it that the ball didn't pass her, and really as far as the two batters are concerned, Harshita and Kavisha.

0: घंटी बोलिए, उंगली को देखिए, आंखें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग किशोर, कि जब कॉन्कशन टेस्ट होता है, जब आप गिर जाते हैं तो हेलमेट रगड़ खा जाता है सर से, तो कॉन्कशन टेस्ट हुआ उसमें आपका नाम क्या है, गिनती बोलिए 9 से 10 से उल्टी गिनती बोलिए, इस तरीके के सवाल किए जाते हैं जो कि हमको नज़र आ रहा है। और एक्चुअली में तो हर्षिता हैं, हर्षिता से ही पूछा जा रहा है ये, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आपको ठीक दिख रहा है, नहीं तो आप और गंभीर चोट खा सकते हैं।
1: Yeah, it's a very valid point you make, Vineet. Those set of questions, and actually, it's always the physio who goes on to the field, and those set of questions which determines if you're thinking all right. There's no effect of the concussion. That's known as the concussion test. And for now, Harshita is past that one. She's on 30. Her presence is so much required for Sri Lanka. 44 of 37 balls. Last ball of this over as Harshita fluently driving it on towards the deep mid off field, a single across to end over number 14, and Sri Lanka now on course to the target of 131, 88 for 4 Vineet.
0: Kavisha jab bowling kar rahi thi to wo bhi off spin aur leg spin kar rahi thi, aur yahan par ye is tarike ki bowling ho rahi hai jo off aur leg spin dono karne ka prayas कर रही हैं बॉलर्स, और ऊपर से ड्यू फैक्टर है, गेम गिवी है, तो बहुत लूपी डिलीवरीज, फुल टॉस डिलीवरीज आ रही हैं। आयशा जफर जिस तरह से बॉलिंग कर रही है, वो भी ऑफ और लेग स्पिन करने की कोशिश कर रही है, तो वो नियंत्रण की कमी नज़र आ रही है, और इससे श्रीलंका को थोड़ा फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन समर्पण कमाल का है जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने बैटिंग की है, अप्लाई किया है अपने आप को, वो देखते ही बनता है। उमेहानी बॉलिंग करेंगी, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। हर्षिता 31-24 गेंदों पर, कविशा 22-24 गेंदों पर, 88-4 विकेट पर 14 ओवर, 6 अंतिम ओवर्स अब किए जाएंगे। राउंड विकेट ये गेंद एज ऑफ द क्रीज से खेला, एक रन पहला रन, पहले बहुत तेज दौड़ती हैं लेकिन इस समय दूसरे की गुंजाइश नहीं है। रनिंग बिटवीन विकेट्स ने पासा पलट दिया पाकिस्तान के ऊपर, श्रीलंका ने इतनी लाजवाब, हर्षिता उसमें अग्रणी नहीं है, कविशा ने भरपूर साथ दिया है, और अब ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को मैदान से बाहर लिया जा रहा है, उनको 2 बार क्रैम्प्स के लिए उपचार दिया जा चुका है मैदान पर, और फिर अंपायर्स ने कहा आप इनको बाहर ले जाइए कुछ टाइम के लिए, और वहाँ आप इनको मदद आप इनकी करिए, नहीं तो खेल बहुत धीमा चला है जब से पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया है। फ्लाइटेड गेंद को सीधे बल्ले से खेला सामने की ओर, एक ऐसी फील्ड जमाई गई है, कवर पीछे, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा आगे की तरफ, आमतौर पर मैं तो इन एंड आउट फील्ड, जिस दायरे के अंदर ही इन और आउट फील्ड जमाई गई है, पैक्ड ऑफ साइड फील्ड, और इसीलिए लेग साइड में पलटकर प्लेस करने का प्रयास ये खिलाड़ी करते रहे हैं। 32 पे हर्षिता, कविशा 22, जीतने के लिए 131 रन बनाने हैं, यानी कि अब 34 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं। 34 बॉल्स 42 रन, 89 फॉर 4, और इस बार खेल दिया बेहतरीन स्ट्रोक, और उस ओर अगर फील्डर भी होगा तो नहीं रोक पाएगा, शॉट ऑफ द डे 4 रन्स, और खुशी की लहर दौड़ गई है श्रीलंकाई खेमे में, और उनके समर्थकों के क्या कहने मचल रहे हैं, श्रीलंका का फ्लैग लेकर एक कदम बाहर निकाला, घुटने को पीछे वाले को मोड़कर थोड़ा सा अपने आप को नीचे किया, बैट को गेंद के नीचे लाने में सफल रही, बहुत ही आकर्षक सूझबूझ भरा स्ट्रोक खेल दिया उसको 4 रनों के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रन है। ये कविशा ही थी जो इस समय बैटिंग कर रही हैं, और इस बार उन्होंने फिर स्वीप में उसको खेला था, लेकिन ऐसी स्वीप की कि कलाइयों को घुमाकर गेंद को जमीन पर रखा, जिन्होंने विनिंग हिट लगाई थी 2024 में जब भारत को हराया था एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने, तब कविशा ही ने।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, अभी आप वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा

0: अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।